सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन, मातृभूमि। वाचन किशोर सिन्हा।
1: जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जिस प्रकार मां हमें जन्म देती है, अपनी छत्र छाया में पालन पोषण करती है, वैसे ही मातृभूमि अर्थात जिस भूमि पर हम पले बढ़े, जिसके अन्न जल से हम पल्लवित पुष्पित हुए, उस मातृभूमि के हम ऋणी हैं। तभी तो जो लोग दूसरे देशों में जाकर लाखों करोड़ों की नौकरी कर लेते हैं, उनके दिलों में भी अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से अलग होने की कसक होती है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी मातृभूमि के स्नेह बंधन और आकर्षण में बंधे रहते हैं।

0: तो दिन भर दाना पानी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, लेकिन शाम को वे अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। मातृभूमि प्रेम की ये भावना हमारे हृदय को देशभक्ति से ओतप्रोत रखती है और समय आने पर अपना सब कुछ हम देश के लिए न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। जिस व्यक्ति में मातृभूमि के प्रति स्नेह का भाव है, जो अपने राष्ट्रहित को अपना धर्म नहीं समझते, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जहां हम पले बढ़े, उसके प्रति हमारा स्नेह होना स्वाभाविक है। मातृभूमि तो माता के समान है। जिस प्रकार माता से हमारा अटूट प्रेम होता है, उसी प्रकार अपने देश के प्रति हमारा प्रेम अटल होता है। इसलिए वेद में कहा गया है, नमो मातृभूमये, नमो मातृभूमये। सचमुच माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। मनुष्य ही नहीं बल्कि चरचर पशु पक्षी सभी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। मातृभूमि के प्रति स्नेह की भावना से पूर्ण व्यक्ति ही देश की उन्नति में सहायक है। जो व्यक्ति देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे सकता है, जो व्यक्ति बाल विवाह, अंधविश्वास, छुआछूत, स्वार्थ सिद्धि और भाई भतीजावाद को दूर करने का प्रयत्न करता है तथा स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री शिक्षा को समाज का आधार मानता है, वो सच्चा देशभक्त है। इंसान मातृभूमि प्रेम के कारण ही राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता से जुड़ा रहता है। यही अनेकता में एकता है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम मन, कर्म, वचन से राष्ट्रहित के लिए कार्य करें। आधुनिकता की चकाचौंध में हम दायित्वों का पालन सही तरीके से नहीं कर पाते। राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक हों अथवा कृत्रिम, सभी का उचित ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए जिससे देश के संसाधनों का दुरुपयोग हो। यदि हम सब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे तो शीघ्र ही हमारा देश सबसे समृद्ध और सबसे उन्नत राष्ट्र होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, मातृभूमि। वाचन स्वर किशोर सिन्हा का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है भिंडी की फसल की देखभाल और वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय। तो श्रोता मित्र, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।

किसान भाइयों नमस्कार। गर्मा भिंडी की फसल इस समय आपके खेत में है। बहुत से किसान भाइयों ने समय पर बुआई कर ली है और समय पर बुआई जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल की है वो लगभग एक महीने की हो चुकी होगी और आने वाले दिनों में उसमें जो है फल लगेंगे। इस समय ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने भिंडी की फसल की बुआई नहीं की है वे अभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हैं, गर्मा की भिंडी की बुआई। खास करके उसमें ध्यान ये रखना है कि तापक्रम कम होने के कारण बीजों का अंकुरण जो है वो सही ढंग से नहीं होता है। तो पहले आप भिंडी के बीजों को 24 घंटे पानी में भिगो लें और उसके बाद राख में बीजों को मिला करके किसी पत्ते में लपेट करके रख दें। जब वे अंकुरित हो जाएं तब आप खेत में उनकी बुआई करें। जिन किसान भाइयों के खेत में पहले से भिंडी की फसल लगी हुई है तो वे इस समय सिंचाई का विशेष प्रबंध रखें, क्योंकि कभी तापक्रम ज़्यादा हो जाता है, कभी तापक्रम कम होता है। तो जब तापक्रम ज़्यादा होगा तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी फसल को, और यदि अचानक तापक्रम गिर जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो उस समय पाला की भी आशंका होती है। तो उस समय भी यदि हल्की सिंचाई खेत में की जाए तो तापक्रम जो है वो नियंत्रित रहता है और इससे जो है आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। खाद तथा

0: उर्वरक आप बुआई के पहले डाल ही देते हैं। यदि भिंडी की फसल में कहीं आपको लगे कि फसल जो है पोषण न्यूनता की स्थिति दिखला रही है, यानी कि पत्तियों पर कहीं आपको कांसे रंग की जो है सिराएं दिखे या पौधा कमज़ोर हो, बढ़ नहीं रहा हो, तो उसके लिए आप किसी भी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उसमें खाद तथा उर्वरक इस समय डाल सकते हैं, लेकिन अभी आवश्यकता उतनी नहीं होगी। उसके बाद बात आती है फसल सुरक्षा की, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। तो भिंडी की फसल में एक रोग बहुत लगता है जिसका नाम है पीला सीरा मोजैक रोग। ये येलो मोजैक रोग जो होता है, पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखलाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे घरों में मोजैक किया हुआ रहता है, अनियमित आकार के धब्बे। बाद में ये धब्बे बड़े होते हैं, एक साथ मिलते हैं, पौधे की पत्तियां पीली होती हैं और सूख जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इस तरह से पौधा जो है वो सूखता है, इसका प्रभाव जो है फलों पर भी होता है, जिससे कि उत्पादन आपका कम होता है। यह एक वायरस जनित रोग है, तो जो भी रोग वायरस से होते हैं उनकी दवा नहीं बनी है, बल्कि उसके जो वाहक जीव होते हैं जैसे कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए आप खेत में इंडोसल्फान 35 EC दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से ये होगा कि खेत में कीड़े आपके नहीं आएंगे और वे अपने साथ वायरस नहीं लाएंगे और ये पीला सीरा मोजैक रोग जो है वो नहीं होगा। लेकिन जो पौधे ग्रसित हो गए हैं उन्हें खेत से उखाड़ करके दूर ले जा करके फेंक दें, क्योंकि यदि वे खेत में रहेंगे तो दूसरे पौधे भी उस रोग से आक्रांत हो सकते हैं। उसके बाद ये कीड़ा बहुत लगता है भिंडी की फसल में, जिसे तना छेदक और फल छेदक कीड़ा कहते हैं। आप कभी कभी देखते हैं कि भिंडी के फलों में छेद पाया जाता है और वहाँ पर काले रंग का पदार्थ जमा रहता है, तो ये कीड़े के कारण होता है, जो कि फल छेदक कीड़ा होता है। और ये काले रंग का पदार्थ जो होता है वो कीड़े का विष्ठा होता है। ये कीड़ा काफ़ी नुकसान करता है, धड़ों में भी छेद करता है और फल की गुणवत्ता तो इससे खराब होती ही है, फल बड़े भी नहीं हो पाते हैं। इस कीड़े को मारने के लिए आपको पहले से ही ध्यान देना होता है, खेत में कीड़े की उपस्थिति हो नहीं, इसके लिए खेत की अंतिम जुताई के समय आपको नीम की खल्ली या करंज की खल्ली का प्रयोग करना चाहिए। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो ध्यान देते रहना चाहिए और कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। दानेदार दवा जो बाज़ार में आती है, फ्यूराडान है या 4-8-10 G है, तो ये दानेदार दवा का भी आप प्रयोग करेंगे तो ये दवा काफ़ी कारगर होती है। लेकिन इस दवा के प्रयोग करने में काफ़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि दवा के प्रयोग करने के 15 दिनों के बाद ही फलों को तोड़ करके प्रयोग में लाना चाहिए।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था भिंडी की फसल की देखभाल और वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10

0: लाइता कतर बहरीन कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

देश वंदना के बाद कार्यक्रम वंदना में सुनिए भजन। सबसे पहला भजन सुनिए डॉक्टर अश्वनी भिरे देश पांडे की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।
1: एपिसोड 155 155।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुत हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्रीराम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ,

जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन, वचन, कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है बच्चों की देखभाल और माता पिता की परेशानी। कार्यक्रम में आप सुनेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
1: श्रोताओं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता पिता की जो जिम्मेदारी है काफी महती है। आज के समय में माता पिता बनना जितना सरल लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन उनका पालन पोषण, उनका सर्वांगीण विकास है। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे।
2: जी नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला स्कूल घर ही है।
1: जी,
2: तो जो भी सीखेगा वो घर के इन्वायरमेंट से सीखेगा। तो जो भी अभिभावक है वो इन्वायरमेंट वैसा बनाए पॉजिटिव कि बच्चा वो पॉजिटिव चीज़ें सीखे। तो सबसे पहले जैसे बोला जाता है कि मदर माँ का को बोला था कि पहली टीचर
1: पहली
2: माँ होती
1: शिक्षिका
2: हैं, हाँ
1: होती जी।
2: शिक्षिका होती हैं। तो हम ऐसे शब्दों का चयन करें बच्चों के सामने कि बच्चे उस अच्छे शब्दों को सीखें। कभी गलत शब्द या गलत तरीका नहीं होना चाहिए बच्चे के सामने कि हम उनको गलत ढंग से बोल दें। आज के समय में मदर फादर दोनों वर्किंग हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे समय की बहुत अभाव हो जाता है, समय का।
1: बिल्कुल,
2: तो वहाँ पे बच्चों में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। बच्चे बोलने में देरी कर रहे हैं, सोशल इंट्रैक्शन कम हो जा रहा है बच्चों का, और बच्चे सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल ये सब में
1: ज्यादा
2: चले
1: समय
2: जाते
1: लगा।
2: हैं।
1: जी
2: तो
1: जी
2: उससे
1: जी
2: दूर रखें और कोशिश करें कि अभिभावक बच्चों के साथ खेले, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी कराएं जो बहुत कम हो गया है।

0: जिसके कारण बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ा है, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे। बच्चे शारीरिक तौर पे अभी मजबूत नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो उतना खेल कूद पहले के
1: एक्टिविटी
0: ज़माने
1: उनका
0: में नहीं
1: पहले
0: कर
1: की
0: रहे
1: तरह
0: हैं,
1: नहीं है जी।
0: तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो अभिभावक हैं वही रोल मॉडल हैं बच्चे के लिए, वो पहली बार देखता है अपने फादर को या मदर को तो उसी को अपना रोल मॉडल मानता है। तो आप पहले अपने आप को उसके सामने कोई भी वैसी चीज़ें ना करें कि जो देख के बच्चा वो सीखे, तो इसलिए अभिभावक का ही रोल सबसे पहला है। दूसरा कि आजकल थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है, हमारे ज़माने में या पुराने ज़माने में जो दादा दादी नाना नानी उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, तो अभी भी अभिभावक से बोलेंगे कि उनका रोल बहुत ज़रूरी है, वो लोग भी बच्चे के पेरेंटिंग में ध्यान दें और इन्वॉल्व रहें, एक दूसरे से जुड़ कर रहें, तो उससे विकास बहुत अंतर पड़ जाता है। एक बच्चा अगर अकेले रह रहा है और एक बच्चा
1: अच्छा,
0: पूरे
1: फैमिली के
0: फैमिली के
1: साथ
0: साथ रह रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है
1: हर तरह का
0: उसके
1: उनका।
0: विकास में।
1: जी,
0: जी, दूसरा कि बच्चे को खान पान भी आप इन बच्चे को जब समझाएंगे बताएंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छा है ये बुरा है, तब बच्चे कुछ भी चीज़ को खाने में जिद नहीं करेंगे, या मार्केट के सामान को जब समझाएंगे प्यार से तब वो जिद नहीं करेंगे। आप
1: बातचीत से
0: जी
1: समस्या
0: जी
1: को उनको
0: कभी भी
1: समझाना है,
0: उनको पनिशमेंट नहीं दें,
1: पनिशमेंट के रूप में ना
0: आप
1: समझे।
0: कोशिश करें कि उनको समझाएं प्यार से, और कभी भी उनके साथ मतलब रूड बिहेवियर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मारने की ज़रूरत नहीं है,
1: जी,
0: समझाने से ही बच्चे ज़्यादा अच्छे से
1: समझ लेते हैं।
0: समझेंगे और उनका विकास भी अच्छा होगा। दूसरा कि उनके एक्टिविटी पे ध्यान रखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे में बिहेवियरल चेंज आ रहा
1: चेंजेस
0: है।
1: क्या है? जी,
0: अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा पहले ठीक था अभी थोड़ा कम एक्टिव रह रहा है, कम बात कर रहा है हमसे, कम दोस्तों से बात कर रहा है, तो
1: जी।
0: ज़रूर उसके पीछे कारण जाने अभिभावक कि कुछ अगर उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ निगेटिविटी चल रही है, तो उसको तुरंत उससे बात करके उसको
1: सॉर्ट आउट करें।
0: शॉर्ट करें सॉल्व करें, तो बच्चा धीरे धीरे अच्छा विकास होगा, अच्छा उस मानव बनेगा और समाज को अच्छा योगदान देगा।
1: योगदान बिल्कुल निश्चित रूप से, बच्चों के बारे में बच्चों की तरह बनकर उनसे
0: जी
1: उनकी समस्याओं को जाने, हल करें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें समय दें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर माता पिता के जो योगदान है उनका पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में विषय था बच्चों की देखभाल और माता पिता की परेशानी। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर विवेक कुमार से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक आप सुनेंगे सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन राग ललित। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी का प्रसारण होगा दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी आप सुन पाएंगे दिन के 10:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण समय होगा दिन के 11 बजे।

समवेत गान शिक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा।

आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम के 7:52 पर। अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10:45।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्द क्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्द क्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री

0: जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानाम् आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् अद्य अन्त्यद्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखीकरिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब

0: लगाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 5 जुलाई है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्म दिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम अब आपको बताते हैं आज भारत के किन प्रमुख व्यक्तियों का या हस्तियों का जन्मदिवस है। पीवी सिंधु, जो कि भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनका जन्म 5 जुलाई 1995 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध निवेशक एवं शेयर व्यापारी राकेश झुनझुनवाला, इनका जन्म 5 जुलाई 1960 ईस्वी को हुआ था। लालजी सिंह, जो कि भारत के नामी जैव विज्ञानी थे, इनका जन्म 5 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ था। ज्योति खरे, जो कि समकालीन कवि एवं लेखक थे, इनका जन्म 5 जुलाई 1956 ईस्वी को हुआ। प्रसिद्ध भारतीय तैराक सचिन नाग, इनका जन्मदिवस 5 जुलाई 1920 ईस्वी है। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिवस के बारे में। कार्यक्रम में आगे और भी चर्चा करेंगे। सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज का इतिहास और देखते हैं क्या छुपा है आज के इतिहास में। 5 जुलाई 1977 ईस्वी को पाकिस्तान की सैनिक क्रांति में प्रधानमंत्री भुट्टो सत्ताच्युत हुए एवं गिरफ्तार भी हुए। वहां जनरल जियाउल हक ने सत्ता संभाली। इसराइल अधिकृत जेरिको में फिलिस्तीनी स्वशासन की औपचारिक शुरुआत 5 जुलाई 1994 ईस्वी को हुई। पीट सम्प्रास ने 5वीं बार विंबलडन का एक कल खिताब जीता 5 जुलाई 1998 ईस्वी को। 5 जुलाई 1999 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा की गई। पांच जुलाई 2004 ईस्वी में ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया। 5 जुलाई 2008 ईस्वी को नेपाल की अंतरिम कैबिनेट ने संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। अब

श्रोता मित्र, इस प्यारे और खूबसूरत गीत के साथ ही हमारे हालचाल का आज का अंक अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

इसी के साथ पॉप म्यूजिक अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आप सुनिए उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन, राग ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन राग ललित। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र में

0: पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी

0: संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश

0: बना 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा। ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
1: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Udaan scheme will mark the next chapter of India's regional connectivity journey. Mr. Naidu said, the scheme launched by Prime Minister with an outlay of over 28,840 crore rupees will facilitate the development

0: Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majeed. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udaan, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना

0: लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमीकंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
2: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
2: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेश की तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा जखीरा काफी है और इस वक्त जखीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्की सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपए फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद उम्मार।
0: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुत्तला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन

0: मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफे अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी
3: फीस तो देखो
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: हाँ, फीस की टेंशन।
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
9: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
8: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
9: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
8: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: PVR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
0: इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। ये सत्र 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार

कार तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका था। मुजफ्फरपुर साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू सिंह के भाई के फॉर्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। शी समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
2: दिनांक 5 जुलाई राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में आज कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में 650 से 700 चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, नर्सिंग अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं।
3: सहानुभूति से रोगी सुरक्षा तकरु क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रभावी व्यवसायिक संचार को सशक्त बनाने के विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभावी संवाद, रोगी सुरक्षा, टीम वर्क, विश्वास एवं रोगी केंद्रित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा, व्यवसायिक उत्कृष्टता और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBMS और सोसाइटी फॉर कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर इंडिया के

0: योग से कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: समस्तीपुर के मटियौर गंगा तट पर निर्माणाधीन ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु का स्लैब गिरने से 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पटना स्थित पीएमसीएच रेफर किया गया है। पथ निर्माण विभाग ने घटनास्थल पर तकनीकी जांच और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले में जल संसाधन विभाग ने बांध सुरक्षा और तटबंध कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने प्रयुक्त होने वाले बोल्डर की पर्याप्त मात्रा में भंडारण और क्रेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थल पर उपस्थित अभियंताओं को कैंप करके कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अररिया जिले के सीमावर्ती गांव के समग्र विकास के लिए VVP2 की समीक्षा की गई। समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल संस्कृति और आजीविका बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान फर्जी आई कार्ड और BMP हवलदार के दस्तावेज बरामद किए। आरोपी की पहचान जहानाबाद निवासी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न 39वीं राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप पहली रैंकिंग प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। रुद्र प्रताप ने लगातार 8 मैच जीतकर 1 राउंड पहले ही खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के आधार पर रुद्र प्रताप को आगामी विश्व कप और एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चयनित किया गया है। रुद्र प्रताप मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं 16वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए आज राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राज्य के सभी जिला हॉकी संघों को अपने क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया का पहचान पत्र, सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ आना अनिवार्य किया है। भागलपुर में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी बाल अंडर-15 और अंडर-17 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग में इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल विद्यालय और अंडर-15 वर्ग में RHMTB उच्च विद्यालय बरारी भागलपुर की टीम ने राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता क्वालिफाई किया है। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संचालित उत्खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उत्खनन कार्य की वर्तमान स्थिति, प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बलिराजगढ़ केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए आपराधिक कानून पर बोधगया सम्मेलन में मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक गठित होंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, E20 पेट्रोल से 2 से 6% तक घट सकता है गाड़ियों का माइलेज। दैनिक भास्कर ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगस्त से बदलेगा DL नियम, लर्निंग लाइसेंस से पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी। प्रभात खबर ने क्रिकेट के बढ़ते सितारे वैभव सूर्यवंशी की भारतीय टीम में डेब्यू से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बिहार का वैभव, भारत का सूर्य। आज अखबार का शीर्षक है, पटना में धारा 163 लागू, चुनाव प्रचार और हथियारों के प्रदर्शन को सख्ती, बांकीपुर चुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। राष्ट्रीय सागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगी कार्यवाही। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण

0: के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय अंडर 7 ओपन चेस चैंपियनशिप में बिहार के रुद्र प्रताप चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सामयीन आदाब, आकाशवाणी के पटना दरभंगा मरकज से नशर होने वाले प्रोग्राम अंजुमन में आपका खैर मकदम है। आगाज़ अंजुमन से पहले आइए जान लेते हैं हमारी आज की नशरियात। पेश करेंगे हम शेर नगमा के तहत गज़ल और आप सुनेंगे हमारी आज की बात में मरकज़ी हुकूमत का अकलियतों के लिए फलाही स्कीम, फिर आप सुनेंगे सेहतनामा, गुर्दा यानी किडनी और यूरोलॉजी से जुड़े अमराज और इलाज, डॉक्टर आसिफ रजा से मोहम्मद एजाज हुसैन की गुफ्तगू और हिजब मामूल मौसीकी के तहत आप चंद गज़लों से लुत्फ़ानंदोज़ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गुलाम अली की आवाज़ के साथ।

पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। मीर तकी मीर का ये खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकज़ी हुकूमत का अकलियतों के लिए फलाही स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुल्क में हर साल ना जाने कितनी स्कीम्स नाफिज होती हैं और इस स्कीम्स का फ़ायदा तमाम आवाम के लिए होता है। उसी में से एक स्कीम है जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम्स, जिसका नाम है अकलियतों के लिए फलाही स्कीम। इस स्कीम के तहत मुल्क में रहने वाले अकलियती तबके के नौजवान तालिबा और तालिबात इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने अकलियती बिरादरियों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और बुद्ध पारसी की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमें नाफिज कर रही हैं। इनका इंतज़ाम बुनियादी तौर पर वजारत अकलियती उमूर के ज़रिए किया जाता है। अकलियतों के लिए अहम मरकज़ी स्कीमों की तफसीला

0: इस तरह हैं। वजीफ़ा और तालीमी स्कीमें। इस स्कीम का मकसद अकलियती तलबा के तालीमी अखराजात पूरे करना और उन्हें तालीम के बेहतर मौके फराहम करना है। दूसरा है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पहली से दसवीं जमात तक के शुरुआतमंद तलबा के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 11वीं 12वीं जमात अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सतह की तालीम के लिए है और मेरिट कम मेंस, इसके ज़रिए तकनीकी और पेशे वाराना कोर्सेज करने वाले होनहार तलबा के लिए ये स्कीम है। मरकजी हुकूमत का अकलियतों के लिए फलाही स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सेहतनामा। गुर्दा यानी किडनी और यूरोलॉजी से जुड़े अमराज और इलाज, डॉक्टर आसिफ रजा से मोहम्मद इजाज हुसैन की गुफ्तगु।
1: सामईन सेहतनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त इजाज हुसैन और आज हमारे मेहमान हैं मशहूर यूरोलॉजिस्ट और किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के माहिर डॉक्टर आसिफ रजा। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है।
2: आज यहाँ बुलाकर इस मौजू पर बात करने के लिए मौका दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम से फायदा हो।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि किडनी हमारे जिस्म में क्या काम करती है और किडनी से जुड़ी कौन सी आम बीमारियां होती हैं।
2: बहुत सही सवाल है आपका। किडनी के बारे में सब लोग कुछ न कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते हों, ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। किडनी का सबसे अहम काम होता है कि आपके बॉडी में ये पानी के और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रखता है। और पढ़ने के टाइम में भी वक्त में जो किडनी पढ़ना होता था तो काफी वक्त देना पड़ता था, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सुनने में तो लगता है फिल्ट्रेशन है, गंदगी को बाहर निकालता है, तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेकार चीजें उसको निकालता है और फिर आगे जाकर के उसमें से काम की चीज को फिर लेता है वापस, रीअब्सॉर्प्शन और एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब इसी का काम है। अगर किडनी आदमी की खराब हो जाए, काम उसका इम्पेयर हो जाए, तो बॉडी के बहुत सी चीज का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। पानी, इलेक्ट्रोलाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सब जानते हैं, ये एकदम ध्यान रखा जाए कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का बैलेंस करता है ये बॉडी में, और इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है।
1: तो जैसे आमतौर पे हम लोग सुनते हैं किडनी में स्टोन हो जाना, या कौन कौन सी बीमारी इसमें?
2: सबसे कॉमन जो आपने कहा बीमारियां नाक वो है स्टोन हो जाना और किडनी फेल कर जाना। तो इसके बहुत से वजूहत है, होने को और भी बीमारियां हैं, बात तो कैंसर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो सबको तो कैंसर नहीं है, अभी भी अलग बात है कि इंसिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन में ये है कि आपकी किडनी फेल कर गई, काम नहीं कर पा रही है, बॉडी में पानी भर गया, स्टोन हो गया। तो स्टोन होने से भी किडनी फेल कर सकती है और बगैर स्टोन के भी किडनी फेल कर सकती है, वैसी भी बीमारियां हैं। तो मोहतात रहना बहुत जरूरी है इंसान को अपनी किडनी के बारे में, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और एक दिन दो दिन में कुछ फेल नहीं होता है, ये वक्त देता है, अगर हम उसको वक्त पर नहीं ध्यान देंगे तो नतीजा झेलना पड़ता है।
1: एक चीज जो अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी दवा खाने की बात होती है, कई लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, लिखा होता है कि बगैर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप दवा ना खाएं, ये या तो किडनी पे अफेक्ट करेगा या फिर लीवर पे।
2: बहुत सही सवाल आपने पूछा। मेडिकेशन तो किडनी के फेल करने में कई वजूहत जो हैं, उसमें एक है कि मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल है खराब करने में। तो मेडिसिन तो आप सब जानते हैं कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है, किसी का कम किसी का बेश, ये तो डॉक्टर की सलाहियत है और डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि अपने मरीजों को दवाई से ज्यादा एजुकेशन दें, कैसे अपने किडनी को बचाएं। दवाई लिखना कोई हल नहीं है, वो तो आखिरी है, मजबूरी है। और आपने सही सवाल किया है, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो पेन किलर से है। आदमी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, जरा सा पेन नहीं हुआ कि दवा खा रहा है, सुबह शाम भूंजा की तरह पेन किलर खाता है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, वो ज्वाइंट्स पेन हुआ, नी पेन हुआ, दवा खा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो लैंड अप कर जाते हैं किडनी फेल्योर में। दूसरा है पेस्टिसाइड्स, जो खेतों में उपज के चक्कर में लोग जो डाल रहे हैं दवाइयां, ना हो कीड़े को मारने के चक्कर में इतनी दवाई पड़ जाती है कि इंसान मर रहा है। तो वहाँ पेस्टिसाइड्स वाले सामान को जरा सा पानी से धोकर साफ करके ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तो ड्रग और पेस्टिसाइड्स का बड़ा अच्छा रोल है इसमें खराब करने में किडनी को, ان کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. اسٹونس اگر دکھ گیا تو کوالیفائڈ آدمی کے پاس جا کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے, کیسے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے. بہت

0: अच्छी अच्छी मेथड्स आ गए हैं किडनी स्टोन्स के। पहले तो ऑपरेशन होता था, चीर कर निकालना पड़ता था। अभी तो ऐसी ऐसी मशीन आ गई है कि बगैर चीरना तो छोड़िए, नश्तर लगाना तो छोड़िए, सुराख से भी बचाया जा सकता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
1: इसके बारे में आप थोड़ी तफसील से कि ये लिथोट्रिप्सी है।
0: उसकी मैं पहला आदमी हूँ जिसने इसको लगाया, और ये 1996 में लगा, आज से 28 साल पहले। उस वक्त कोई नहीं जानता था, बड़ी मुश्किल होती थी समझाने में कि ऐसा भी हो सकता है बगैर किसी सुराख किए हुए, बगैर काटे हुए निकल के ऐसे बाहर चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो काटेंगे। हमारे सीनियर डॉक्टर थे कॉलेज के, उनको स्टोन हुआ, वो आए, उनको मैंने समझाया, लेकिन उनको यकीन नहीं। हमारे रूम में आए लिथोट्रिप्सी के, तो उन्होंने कहा है, दोस्त अब तो हम तुम्हारे रूम में आ गए, अब तो बता दो कि कहाँ छेद करोगे या सुराख करोगे। हमको बड़ी हंसी आई अंदर, हम कहा बस अंदर आ ही गए, सीनियर थे हमारे, अंदर आ ही गए तो आप लेट जाइए, हम कुछ बताएंगे नहीं, जो करना है सो कर ही ले। बाद में हमने कहा कि क्या बताएं, आप इतना देर बताने के बाद नहीं समझे तो आप लेट जाइए, खुद से महसूस कर लीजिए कि क्या हो रहा है। हम आज भी उसको भूलते नहीं है, बड़े अच्छे इंसान थे और बड़ी मोहब्बत से आए थे इलाज कराने। शुरू में तो लोग आते ही नहीं थे, चूंकि भरोसा ही नहीं होता था। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मतलब लोग गांव जाते थे करा करके, तो गांव में जो बैठे हुए ना उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, तो वो उस बेचारे को डराते रहते थे कि तू फंस गया, तू गलत जगह चला गया, कैसे हो सकता है। कपड़ा उठा के देखते थे कहाँ सुराख है, कहाँ से निकला, ओ तुम ठगा गए। बेचारा बड़ा परेशान होकर मेरे पास आता था, अब समझाते रहते थे क्या तकलीफ है, नहीं। काफी दिन लगा हमको लोगों को समझाने, यकीन दिलाने में कि हो सकता है, लेकिन मशीन अगर अच्छी रखी जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है।
1: इसके इन्वेंट की कहानी बड़ी
0: बहुत
1: खूबसूरत है जो
0: बहुत
1: आपने
0: इंटरेस्टिंग है। देखिए
1: जिक्र किया था।
0: लोग शायद सुन के एंजॉय करें, मैं बताता हूँ। कहानी यह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में काफी लड़ाइयां हुई, उस वक्त प्लेन्स काफी इस्तेमाल हो रहे थे, फाइटर्स बॉम्बर्स। तो हिस्ट्री ये है कि फाइटर्स जाते थे जर्मन्स के और डॉग फाइट करके आते थे, तो एक प्लेन वापस आया तो सब लोग जाते हैं रिसीव करने, जब उतरता क्या हुआ, कितना डैमेज हुआ नहीं हुआ, तो देखा तो कहीं कुछ नहीं था। पायलट उतरा, देखा कॉकपिट के पीछे एक क्रैक था, तो वो क्रैक कैसे हो गया। तो इन लोगों ने उससे बहुत तफ्तीश की कि कैसे हुआ, तुमको कोई शेल लगा नहीं, ये क्रैक कैसे हुआ। तो आखिर में उन्होंने कहा कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे चोट लगी। कि सर चोट तो नहीं लगी, मगर ये बता सकते हैं कि मेरे प्लेन के अगल बगल बाजू में आकर के शेल्स फट रहे थे, धम धम फट रहे थे। उन लोगों ने दिमाग लगाया क्या इस धमाके में ये ताकत थी कि इसने कॉकपिट को तोड़ दिया या क्रैक कर दिया। उसको उन लोगों ने अपनी डायरी में कलम बंद कर लिया। जब लड़ाई खत्म हो गई सेकंड वर्ल्ड वॉर और बैन हो गया नाजी के सब काम, हथियार बनाना और फाइटर्स बम्बर्स बनाना, तब इन लोगों ने कहा कि हम क्या करें। तो बोला अब आप इंसान के भलाइयों के लिए कुछ चीजें बनाइए अपनी जानकारी से। लिहाजा इन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस निकाला, उसमें डायरी निकली जिसमें था, और इस पर लोगों ने दिमाग लगाकर साइंटिस्ट ने इसको एक मशीन बनाई है कि अब क्यों नहीं इसको आदमी के भलाई के लिए। तो एक मशीन बनी जिसका नाम था शॉक वेव लिथोट्रिप्टर के नाम से बनाया इन्होंने, और थोड़ा कम्बरसम था उस वक्त, वो पानी में अंदर डाल के और दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड लगाकर और स्पार्क गैप से वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते थे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन बहुत कम्बरसम था, तो उस पर और रिसर्च करके इन लोगों ने इसको बहुत कम्पैक्ट बना दिया। अब तो इतनी स्मार्ट मशीन आई है, लेटिए और 1 घंटे में उठ कर चले जाइए, आप उसी दिन या दूसरे दिन अपने ऑफिस भी जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरी बात कि स्टोन एक ऐसी बीमारी है जो बार बार भी हो सकती है, रिकरेंस होता है, 100 में 100 लोगों को नहीं होता है। अगर परहेज करेंगे तो 100 में 5 लोगों को होगा, परहेज नहीं करेंगे तो 100 आदमियों को अगर इलाज किया तो उसमें 40 लोगों को होगा, नहीं भी परहेज करेंगे तो 100 के 100 को दोबारा नहीं होगा, 40 को होगा। और अगर परहेज करेंगे जो हम लोग बताते हैं, पानी ज्यादा पीना है, कुछ चीजें नहीं खानी है जिससे बनता है, तो 100 में 5 को भी बनेगा। तो क्या आप बार बार अपने जिस्म को कटवा सकते हैं? नहीं। एक कपड़ा को काट करके या फाड़ करके कितनी बार सिलेगा? तो 2 बार के बाद तीसरे बार कोई भी नहीं चाहता कि उसको मैं फिर करूं। तो वहां पर यह मशीन फिर मजबूरी होती है, और शुरू में किया जाता है तो मौका नहीं आता है। हम लोग रोज सीखते हैं अपनी ही गलतियों से, रोज काम करते हैं, रोज सीखते हैं।
1: तो ये किडनी स्टोन से किस तरह से बचा जा सकता है, कैसे हम इसका ऐसा ये करें, क्या खाए पिए, कैसे ये अपनी लाइफस्टाइल
0: हाँ,
1: कि हम इसे प्रोड्यूस ये कम से कम बने और हम इससे बचें।
0: सबसे अच्छा सवाल होता है कि आजकल स्टोन के केसेस बहुत मिलने लगे हैं। स्टोन पहले भी बनते थे, हो सकता है अभी ज्यादा बन रहे हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज इन्वेस्टिगेशंस के इतनी फैसिलिटीज है ना कि आप कहीं जाकर अल्ट्रासाउंड करा लिया, एक्सरे करा लिया और आपको मालूम हो जाता है, वरना लोग ऐसे ही पाचक और हाजमा खाते रहते हैं, गैस बना, ये हुआ, दर्द हुआ, पेट खराब हुआ, तो गैसे की दवा खाते रहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में भी यही हो जाता होता है, तो जब ज्यादा परेशान होते हैं तो जाँच करा लेते हैं, तो जाँच की फैसिलिटी की वजह से अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसका इलाज हो जाता है, तो किडनी भी बच जाती है। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, एवरीथिंग नेक्स्ट, पेशेंट की भलाई देखना जरूरी है, कौन मेथड अच्छा है। और ये साइज ऑफ स्टोन एंड साइट ऑफ स्टोन पर एंड टाइप ऑफ स्टोन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डॉक्टर के तजुर्बे की बड़ी जरूरत होती है। देयर इज नो

0: फिक्स्ड रूल, सिचुएशन के हिसाब से आपको मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दो तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं ना एक बार में निकाल के खत्म कीजिए, भाई आप कटवाइए, ऐसा सुराख करवा लीजिए, निकलवा लीजिए, और नहीं करवाना है तो लिथोट्रिप्सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL फुल फॉर्म में,
1: ये एक ऑप्शन है।
0: हाँ, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लेजर नहीं है जनाब
1: जी,
0: लेजर बिजली से बनता है।
1: अच्छा, लेजर से भी स्टोन,
0: लेजर टूटता है तो फिर लेजर में कि जाके आपको टच करना है तो किसी सुराख से आपको घुसना पड़ेगा और स्टोन के सामने जाना पड़ेगा, इसमें नहीं जाना है,
1: यानी एक होल करना होगा।
0: हाँ, ये होल करिए या नेचुरल होल से चले जाइए,
1: अच्छा
0: पेशाब करा से, लेकिन उसमें आपको अंदर जाना है, आपको इन्वेजिव हो गया वो तो वहाँ इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, ट्रॉमा का चांस बढ़ता है, लेजर में इंजुरी का चांस ज्यादा होता है, इससे इसमें इंजुरी का चांस कम होता है, इसलिए कि सब बाहर ही से हो रहा है, स्किन के बाहर से हो रहा है, किरण अंदर जा रही है, अपना काम कर रही है, और अगर आप तजुर्बेकार हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किताब में कुछ 70% देते थे, कुछ कुछ देते थे, अभी 90% तक आ गया है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं।

0: कम होता है, इसलिए कि सब बाहर ही से हो रहा है, स्किन के बाहर से हो रहा है,
1: नहीं।
0: किरण अंदर जा रही है, अपना काम कर रही है। और अगर आप तजुर्बेकार हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट
1: जी
0: आता है। किताब में कुछ 70% देते थे, कुछ कुछ देते थे, अभी 90% तक आ गया है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जहाँ रास्ता ही नहीं है आगे निकलने का, वहाँ हम तोड़ के भी क्या करेंगे, निकलेंगे नहीं, वो चेक करना जरूरी है। किसी किसी किडनी में कोई पॉकेट सा बन जाता है, या तो पिन होल एकदम ओपनिंग है, पानी निकलने का, पेशाब निकलने का कैलिक से, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया रास्ता, तो वहाँ तोड़ने में दिक्कत है। शुरू करने के पहले पेटेंसी ऑफ द कैलिसेस दैट कैन गिव वे टू द पार्टिकल्स, वो उसके कणों को निकलने का
1: रास्ता।
0: रास्ता दे, सब निकल जाता है। अक्सर लोग पूछे कितना बड़ा स्टोन टूट जाता है,
1: हाँ, ये भी एक बड़ा
0: इथोट्रिप
1: सवाल
0: से
1: होता
0: कितना
1: है।
0: बड़ा स्टोन टूट जाता है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तक तो मैं आराम से तोड़ लेता हूँ। तोड़ने का मैंने 3.5 भी तोड़ा है, मगर उसमें कई बार करना पड़ता है, कई बार आना पड़ता है। किताब भी यही बोलती है कि 1 से 2 सेंटीमीटर तो आराम से तोड़ लो, सब निकल जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर तक भी परमिशन देता है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर पेशेंट टाइम देना, धीरे धीरे निकल जाता है, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। चूंकि
1: यानी अब
0: अगर
1: दो
0: अगर
1: तीन बार करना
0: हाँ
1: पड़ता है
0: हाँ
1: उसके
0: हाँ
1: लिए।
0: हाँ स्टेप वाइज में कीजिएगा,
1: जी
0: नहीं तो आप सब तोड़ दीजिएगा तो यूरेटर बहुत पतला है ना, वो
1: हाँ,
0: ट्रैफिक जाम कर
1: निकलने
0: देगा,
1: में मुश्किल होगा।
0: ट्रैफिक जाम कर देगा, दिखेगा
1: जी
0: आपको लाइन लगा हुआ
1: हाँ जी, जाहिर सी बात है, बड़ा ये बना है, उसका मलबा ज्यादा है, तो वो
0: हाँ,
1: अगर
0: कहाँ से
1: ये
0: निकल,
1: रास्ता छोटा सा
0: वो
1: है उसको
0: पच्चीस
1: निकलने के
0: सेंटीमीटर
1: लिए।
0: का यूरेटर है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: पतला है,
1: जी
0: तो उसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़िएगा अगर उसको,
1: हाँ,
0: वन
1: सही
0: बाई वन
1: सही सही
0: तो निकलता जाएगा। तो एक्सपीरियंस काउंट्स।
1: जी। डॉक्टर साहब, एक और जो बीमारी अक्सर जो सुनने में आती है, UTI, यूरिनरी
0: बहुत
1: ट्रैक
0: अच्छा, बहुत
1: इन्फेक्शन,
0: बहुत
1: जो
0: बहुत
1: पेशाब की नली से रिलेटेड जो
0: बहुत
1: बीमारी
0: कॉमन
1: है,
0: सवाल है
1: पेशाब में
0: आपका,
1: जलन और ये होती है, उसके बारे में
0: कॉमन
1: बताएं।
0: सवाल है आपका, कॉमन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। यूटीआई कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी वजूहात खोजने पड़ते हैं। कभी कभी कोई वजह नहीं मिलता है तो बड़ा परेशानी होती है। तो डायबिटीज भी एक वजह है जिसमें बार बार यूटीआई होता है। डायबिटिक्स लोगों को ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। और इन्फेक्शन तो कॉमन चीज़ है, अगर आप पानी कम पिएंगे, नंबर 1 कॉज तो वही है, पानी कम पीजिएगा, पेशाब कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोलाई, इकोलाई बड़ा हल्ला होता है। इकोलाई जो है ये कॉमन बैक्टीरिया है GIT का, माने आपका जो आंत वाला हिस्सा है जिससे आप रफा हाजत करते हैं, और तो उसमें ये भरा रहता है। तो औरतों में खास के ये दोनों मकाम जो है, पेशाब वाला और ये रफा हाजत वाला, ये इतना नज़दीक है कि अगर आप हाइजीन ना ठीक रखिए तो अगल बगल पहुंच जाता है।
1: एक दूसरे का इफेक्ट करेगा,
0: हाँ, बगल में है ना,
1: जाहिर
0: बैक्टीरिया वहां से तो निकलता ही रहता है, जरा सा भी आपने उसमें एहतियात नहीं रखा
1: बात।
0: तो
1: जी
0: चला गया। इसलिए हाइजीन बहुत जरूरी है, पानी ज्यादा पीना जरूरी है, और डायबिटीज अगर है तो आपको और केयरफुल होना पड़ता है, उस पर काफी तंग करता है, बार बार होता है। और आखिरी चीज जो आपको बताया ना कि पानी जो लेते हैं हाजत के बाद, तो फीमेल्स में खास के बताते हैं विच डायरेक्शन शुड द वाटर गो, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, जो बिल्कुल किताब में भी नहीं लिखी हुई है लेकिन कॉमन सेंस से यूज करना चाहिए। काफी लोग परेशान आते हैं यूटीआई से, और यूटीआई को बहुत दिन छोड़ने से फिर नेफ्राइटिस होता है, फिर किडनी खराब होता है।
1: अच्छा, वो भी इफेक्ट करता है
0: यूटीआई को भी
1: किडनी
0: नहीं
1: पे।
0: छोड़ना चाहिए बहुत दिन तक,
1: जी
0: नेफ्राइटिस होगा तो फिल्टर्स को डैमेज करेगा वो। एक्चुअली जो किडनी डैमेज का मतलब होता है कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम खत्म हो गया,
1: अच्छा,
0: और जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जिस पोर्शन में है, कॉर्टिकल पार्ट में, वो अगर बहुत खत्म हो गया तो किडनी फेल।
1: एक और जो बीमारी है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की, जैसे पेशाब में रुकावट, रुक रुक के पेशाब
0: बिल्कुल सही,
1: आना,
0: बिल्कुल
1: और
0: सही।
1: ये इस बीमारी के बारे में बताया, और इसका
0: अच्छी
1: क्या
0: बात,
1: इलाज
0: अच्छी
1: है, और
0: अच्छी बात।
1: कैसे हम इसको
0: ऑब्स्ट्रक्शन तो
1: बचा
0: एक
1: सकते
0: लफ्ज आप बोल दिया, लेकिन
1: हैं।
0: कई वजूहत हैं इसके। पहला वजह तो ये होता है कि उम्र से, अगर प्रोस्टेट जो हम लोग का आप जानते हैं, सब लोग जान चुका है प्रोस्टेट कॉमन, प्रोस्टेट जैसे बाल सफेद होता है उसे प्रोस्टेट भी उम्र के साथ बढ़ता है, तो कुछ लोगों का बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कुछ लोगों का धीरे बढ़ता है, और वो जब ज्यादा बढ़ता है तो ये जहाँ पर पेशाब निकलती है, एट द रूट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के नेक पर ये आकर के, मर्दों में खास करके ये अगर बड़ा हो गया तो उसके दबाव देता है, पेशाब रोक देता है। फीमेल में प्रोस्टेट बड़ा नहीं होता है, बहुत रिमिनट्री होता है, नहीं के बराबर डेवलप नहीं करता है, और ये प्रोस्टेट एक वजह हो गया। दूसरी वजह होती है कि कभी कभी बार बार इन्फेक्शन होता है पेशाब के नली में, यूरेथ्रा में, उससे स्ट्रिक्चर बन जाता है, और कभी कोई चोट लग गई यूरेथ्रा में, गिर गए आप, जिसके आपके यूरेथ्रा में चोट लग गया, या पेनाइल पार्ट में जहाँ पे यूरेथ्रा आ रहा है, तो उससे इंजुरी होने से भी रुक जाता है। कभी कभी सीरियस इंजुरी तो ऐसी होती है कि साहब ब्लीडिंग भी होता है और पेशाब रुक जाता है, पेशाब के थैले में ऊपर से पाइप लगाना पड़ता है, तो वो इंजुरी की वजह से हो गया, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रामा की वजह से, इसको इंजुरी कह रहे हैं, प्रोस्टेट की वजह से, कॉमनली यही है। अब जैसा वजह हो उसका इलाज करना चाहिए। एक बात आपको बता दें, छोटा प्रोस्टेट, बड़ा प्रोस्टेट, बहुत हल्ला है, अगर बड़ा प्रोस्टेट भी परेशान न कर रहा है, पेशाब में रुकावट नहीं कर रहा है तो उसको छेड़ने की या काटने की जरूरत नहीं।

0: अगर छोटा प्रोस्टेट भी परेशान कर रहा है, यूरिन को अंदर रोक देता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तकलीफ होती है, तादाद बढ़ जाती है, पेशाब की रात में 5 बार 6 बार उठ रहे हैं, उसका ऑपरेशन करना चाहिए। बड़ा छोटा जरूरी नहीं है ऑपरेशन के लिए। जो तंग कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, जो रुकावट कर रहा है, उसका करना है। जो नहीं कर रहा है, लेट इट गो। जितना कम जिस्म को छोड़िएगा, उतना मरीज खुश रहेगा और डॉक्टर भी खुश रहेगा। छेड़ने से तो फिर दोनों को झेलना पड़ता है। मजबूरी में एडिक्वेट काम करना चाहिए। एडिक्वेट एक इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन व्हाट इज एडिक्वेट, दैट लीड्स अ बिग एक्सपीरियंस।
1: एक चीज जैसे अक्सर डायलिसिस के बारे में सुनते हैं, किडनी फेल हो गया किसी का, तो भाई वो डायलिसिस पे है ना, तो इसके बारे में बताए कि
0: डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल अदा कर रहा है, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई किडनी फेल्योर की। हमको तो समझ में नहीं आता है, जो हालात देखते हैं, कि किडनी फेल्योर की तादाद ज्यादा है या कैंसर की, काफी केसेस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर डायलिसिस आ गया है एक रेस्क्यू में। अक्यूट केसेस में तो डायलिसिस बहुत अच्छा काम करता है, और क्रोनिक केसेस में ये मजबूरी हो जाता है। जब फेल ही कर गया तो कोई भी अपने सगे को छोड़ना नहीं चाहता है, तो बेचारा कोशिश करता है डायलिसिस पर। काफी लोग काफी दिन तक चलते हैं। डायलिसिस भी एक ऐसी चीज है जो सालों आपको बचा कर रख सकती है, अगर आप केयरफुली अच्छी जगह करवाए, प्रॉपर जगह करवाए। क्योंकि डायलिसिस में अगर इन्फेक्शन हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो लेने के देने पड़ जाए। इसलिए अच्छी जगह अगर हो रहा है तो डायलिसिस पर सालों आदमी चलता है और अपने फैमिली को वक्त दे पाता है। एक अच्छा सिस्टम है, और अच्छी जगह करने से, ट्रेंड हाथों में करने से अच्छा रिजल्ट डायलिसिस।
1: तो डायलिसिस कराने के बाद नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं
0: स्मार्टली? तो कुछ लोग आते हैं, डायलिसिस कराया, उठ के गाड़ी ड्राइव करके चले गए।
1: अच्छा वाह।
0: और मेरे लिए तो टिप्सी में भी फायदा है, अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं, आइए इलाज कराइए, अपनी गाड़ी चला के जाइए, मोटरसाइकिल चला के जाइए।
1: कोई चीर फाड़ तो उसमें है नहीं, कुछ कट है नहीं
0: वो। और हु इज डूइंग इट एंड व्हाट इज द मशीन?
1: हाँ, ये तो
0: मशीन
1: एक अच्छा हाथ,
0: मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल केसेस, लाइक चाहे टिप्सी हो चाहे डायलिसिस हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसको पूरे एहतियात से करना चाहिए। बस हाँ, एक मैसेज
1: ये तो है कि एक्सपर्ट वो किसी अपने असिस्टेंट्स को ना दे दे, खुद वो करे एक्सपर्ट, जो कि जो जितना एक्सपर्ट रहेगा उतना ही बेहतर।
0: आपके ट्रेनर कौन है? ट्रेनर को याद है कि हमारे ट्रेनर ने ही कहा था कि आसी किसी काम को छोटा मत समझिएगा, छोटा काम आपको कभी इतना फंसा देगा कि आपको इज्जत बचाना पड़ेगा। बी केयरफुल,
1: किसी की जान अटकी होती है भाई,
0: आपकी भी फंस गई ना
1: लाइफ और आपका कैरियर।
0: मरीज अगर फंस गया तो आप भी फंस गए ना, जवाब देते रहे।
1: सही बात है,
0: तो क्यों नहीं कॉशियस रहे?
1: अच्छा, इससे बचने के लिए जैसे है ना कि गजा वगैरह हम
0: स्टोन से, बहुत अच्छा आखिरी सवाल, बहुत सही किया आपने। तो मैं आपको बहुत जिस्ट में बताता हूँ। देखिए, स्टोन बनने का सबसे सिंपल फार्मूला है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अगर एक गिलास पानी में अगर आपने 10 चम्मच नमक डाल दिया तो सब थोड़े घुलेगा, नीचे जम जाएगा। अगर एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक दिया है तो घुल जाएगा। दिस इज द सेम। बॉडी में कुछ चीजें हैं जो कि खुली हुई रहती हैं, अगर उसको आप कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो जमना शुरू हो जाएगी। जैसे पेशाबी बन रहा है, उसमें कुछ मटेरियल, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फोरेट, मोनोहाइड्रेट, यही सब कॉमन है, यूरिक एसिड, इसका अगर लेवल बढ़ जाएगा तो वो सेडिमेंट होने लगेगा, एंड दैट इज स्टोन फॉर्मेशन। तो लिहाजा सब लोग जानना चाहते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। क्या ना खाएं सब लोग बताते हैं, क्या खाएं ये बहुत कम लोग बताता है। तो मैं खास कर बताता हूँ क्या खाएं कि ना बने। आप किसी का सब खाना रोक देंगे तो बेचारा खाएगा क्या,
1: फिर जिंदा रहना है।
0: तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो ज्यादा खाने में जो प्रोटेक्टिव है स्टोन, किडनी स्टोन्स के लिए, वो है पानी ज्यादा पीना है, नारियल पानी, नींबू पानी, ये 3 पानी आपके लिए एकदम अमृत। आप पीते रहेंगे, डाइल्यूट होता रहेगा, निकलता रहेगा, जमेगा नहीं। और नींबू और नारियल पानी ये सब नहीं बनने देता है। कुछ फल है जो आपको मदद करता है, तो नींबू तो उसमें हो ही गया। सारे साइट्रस, नींबू, मौसमी, संतरा, ये सब साइट्रस फ्रूट है। इसके अलावा पाइनएप्पल बहुत अच्छा रोल करता है, और केला, गाजर, ये सब बहुत अच्छा रोल करता है। और अनाज में मोटा अनाज जो हम लोग छोड़ चुके हैं ना, जौ, मकई, बाजरा, ये नहीं बनने देता है। अभी तो मिलेट्स आ गया
1: मिलेट्स
0: है। हम
1: सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे सरकार ने भी मिलेट्स को काफी बढ़ावा दिया।
0: आप लोग भी इस पर मेहनत कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ इसमें इन्वॉल्व होने, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये नहीं बनने देता मोटा अनाज, याद रखिए। जितना फाइन अनाज खाइएगा ना, उतना परेशानी में रहिएगा। रॉ लीज, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो जौ का हो, मकई का हो, बाजरे का हो। अब दलिया काफी फायदा करता है, इसमें भूंजा हो, भूंजा हम लोग का बहुत अच्छा है, स्नैक्स है।
1: हाँ,
0: उससे हेल्दी,
1: वो बिहार का ऐसे भी एक खास वो।
0: अगर जौ, मकई, बाजरा अगर इस्तेमाल करेंगे तो काफी इंसिडेंस कम हो जाता है बनने का। रफेज, अच्छा रफेज लेना पड़ेगा। फल भी पूरा खाना चाहिए, जूस के चक्कर में ना पड़े।
1: अच्छा अच्छा, फल
0: पूरा फल खाए, जैसे पाइनएप्पल खा रहे पूरा खाया तो उसके जो रेशे है ना, वो एंटी कैंसरस भी है और स्टोन भी नहीं बनने देता, जिसको आप

0: लस्सी कहते हैं या रेशा कहते हैं, रफेज कहते हैं, तो कोशिश करें कि होल फ्रूट्स लिया करें, काफी इंसिडेंस कम हो जाता है परहेज करने से स्टोन का।
1: हाँ, एक चीज जो अक्सर है कि किडनी फेलियर में, किडनी ट्रांसप्लांट का जो हम लोग सुनते हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांट में है कि डोनेशंस का बहुत बड़ा ये होता है कि या तो अपनी फैमिली वाले दें तो सबसे बेहतर, और अगर वो ना हो तो किस तरह से लोग डोनेट करें अपने इसको, इसके बारे में बताइए, और एक मैसेज जो आवाम को
0: प्रोपोगेट करना पड़ेगा। इसमें आप लोग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ पिक्चर्स भी आई हैं हमको, नहीं करना चाहते हैं, जिसमें उसने अपने बिलेवेड वाइफ का सारा कुछ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ और सारा कुछ डोनेट किया बच्चों ने, उसको जाके देखा। तो इस तरह की चीज़ अगर हम लोग चलाएं तो कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, और कई टीम्स तैयार हैं, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस कम है, और फिक्स टाइम में जाके कैडावर से ले लेना पड़ता है।
1: डेथ हो तो उसकी कितनी देर बाद आप इसको ये कर सकते हैं?
0: 4-6 घंटे के अंदर अगर ले लिया जाए तो आइडियल होता है। इसके लिए टीम हमेशा रेडी रहती है, खबर गई नहीं कि टीम दौड़ती है।
1: अच्छा,
0: वो कुछ किया गया है, यहाँ भी किया गया है, हम लोग उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जीएमएस में भी है और एम्स में भी खोलने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को समझाना है कि भाई देखो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ऑर्गन से दुनिया में जिंदा रहेगा, तुम उससे मिलोगे, लेकिन मेरा बच्चा इसके अंदर।
1: जब बात चली है ऑर्गन डोनेशन की, तो आफ्टर डेथ भी ऑर्गन डोनेशन का काफी आजकल यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पटना में भी काम कर रहे हैं लोग,
0: आप लोग के लिए काम
1: तो जी, तो इसके बारे में बताइए कि आफ्टर डेथ जो ऑर्गन डोनेशन का ये है, तो उसका क्या ये है?
0: आफ्टर डेथ का ये है कि पहले तो एक्सीडेंटल अगर हो गया तो उसके गार्जियन से, उसके रिलेटिव से पूछना पड़ता है, और अगर कोई स्लो डेथ में जा रहा है, किसी कैंसर है कुछ है, तो खुद भी कंसर्न देता है कि मेरी आंखों से कोई देखेगा, मेरा दिल किसी के सीने में धड़केगा।
1: अभी हमारी एक जानने वाली हैं जो हाल में ही उनका डेथ हुआ है कार्डियक अरेस्ट से, तो उन्होंने पहले से ही देहदान किया हुआ था, तो IGIMS में आफ्टर डेथ उनकी बॉडी यहाँ आई है,
0: टीम तैयार।
1: जी जी जी,
0: तो इसको आप लोग प्रोपोगेट ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, और लोगों ने करना शुरू किया है। डोनेशन की बात है तो बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, PMCH में एक स्टाफ है, एनाटॉमी जहाँ बॉडी का, तो उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी डिसेक्शन के लिए, जबकि आजकल तो ज्यादा लोग स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बॉडी को डिसेक्ट करके डेड बॉडी पर पढ़ा था, और अभी भी चल रहा है कुछ जगहों में। तो डोनेशन की कुछ लोगों में जज्बा होता है कि मेरे बाद भी मेरे से लोग काम लें,
1: किसी के काम आ जाए,
0: बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, इसको प्रोपोगेट करना चाहिए, और किया जा रहा है।
1: तो डॉक्टर साहब, आज काफ़ी तफसील से किडनी और यूरोलॉजी से जुड़ी बातें हम लोगों ने की, और उम्मीद है सामईन को भी काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैं ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया।
1: तो इसी के साथ सामईन, आज का सेहतनामा इख्तिताम पज़ीर होता है। एजाज हुसैन को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।
2: Living to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. Yani Gautam Buddha ne kaha hai, jism ko achhi sehat mein rakhna ek farz hai, warna hum apne zehen ko mazboot aur shafaf nahi rakh payenge. आप सुन रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेहतनामा के तहत, गुर्दा यानी किडनी और यूरोलॉजी से जुड़े अमराज और इलाज, डॉक्टर आसिफ रजा से मोहम्मद इजाज हुसैन की गुफ्तगू में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत पंकज उदास की आवाज़ में चंद गज़लें।

चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत पंकज उधास की आवाज़ में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम भी पंकज उधास की आवाज़ में।

किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे। आप सुन रहे थे पंकज उधास की आवाज़ में ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम पंकज उधास और गुलाम अली की आवाज़ में।

इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। आप सुन रहे थे मौसीकी के तहत पंकज उधास और गुलाम अली की आवाज़ में ये कलाम। सामईन हजरात, वक्त हो गया है हमारी उर्दू प्रोग्राम अंजुमन को यहीं अख्तिताम पसीर करने का। इस मौसम बरशगाल में आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल। हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए अभिजीत, अनु मलिक और अनामिका की आवाज़ में औजार फिल्म के इस गीत को। गीत के बोल अनु मलिक ने लिखे हैं।
1: We are about to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, de-funk, de-funk, de-funk.

0: Elena.
1: Now that we have heard the song, which is supposed to be different, how different? You find out, okay? Funk, funk, funk, defunk.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए सत्यमेव जयते 2 फिल्म से जहरा एस खान और जज मानक की आवाज में गीत और संगीत तनिष्क बागची का है

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए अमित कुमार, सुदेश भोसले, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी की आवाज में। फिल्म है क्रांतिवीर, संगीत आनंद मिलिंद का है, गीतकार हैं समीर।

0: झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा।
1: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: अनुराग, कभी रात के आकाश को चुपचाप बैठकर देखा है?
0: देखा तो कई बार है, मगर हर बार नया लगता है।
1: मुझे लगता है ऊपर कोई बहुत बड़ा चित्रकार रोज नया चित्र बनाता होगा।
0: और मुझे लगता है वह चित्रकार रंगों की जगह सितारों का इस्तेमाल करता होगा।
1: हाँ, जैसे हम बचपन में स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सितारों का इस्तेमाल करते थे, तब पता है मैं सोचती थी कि सारे तारे किसी मेले की छोटी छोटी रोशनियाँ हैं।
0: और मैं समझता था बादलों के पीछे किसी ने लाखों बल्ब टांग दिए होंगे।
1: फिर धीरे धीरे किताबों ने बताया कि वे बल्ब नहीं, सूरज जैसे विशाल तारे हैं।
0: लेकिन सच कहूँ, वह दिन मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था।
1: सोचो, जो तारा हमें बिंदु जैसा दिखता था, वह कितना विराट होगा।
0: और हम पृथ्वी पर खड़े होकर उसे बस टिमटिमाता हुआ देखते रहते हैं।
1: क्या तुम्हें कभी लगा कि तारे भी हमें देखते होंगे?
0: अगर देखते होंगे तो शायद कहते होंगे, देखो कितने जिज्ञासु बच्चे रहते हैं वहाँ, जो हमारे बारे में जानने को उत्सुक है।
1: जिज्ञासा सच में सुंदर खिलौना है जो कभी पुराना नहीं होती।
0: और सवाल उसकी चाबी है, जिन्हें घुमाते ही ज्ञान का दरवाजा खुल जाता है।
1: अच्छा, एक बात बताओ, आकाश और ब्रह्मांड एक ही चीज है क्या?
0: नहीं, यही तो सबसे रोचक बात है।
1: तो वास्तविकता से अवगत होने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ।
0: जो हमें ऊपर नीला या काला फैलाव दिखाई देता है, उसे हम आकाश कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड उससे कई विशाल है। उसमें असंख्य आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, धूल, गैस और अनगिनत रहस्य समाये हैं।
1: यानी हमारी आंखें जितना देखती है, सच्चाई उससे कहीं आगे तक फैली हुई है।
0: बिल्कुल, और वैज्ञानिक आज भी उस सच्चाई का हर दिन नया पन्ना पढ़ रहे हैं।
1: कभी कभी मुझे लगता है कि ब्रह्मांड एक ऐसी किताब है जिसका अंतिम पृष्ठ अभी तक नहीं लिखा गया।
0: कितनी सुंदर बात कही तुमने।
1: यह मेरी नहीं, जिज्ञासा की बात है।
0: लेकिन जानती हो, गैलीलियो गैलीली ने जब दूरबीन से आकाश देखा, तब लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई।
1: यानी एक दूरबीन ने पूरी दुनिया की नजर बदल दी।
0: हाँ, कभी कभी एक छोटा उपकरण भी इतिहास की दिशा मोड़ देता है।
1: फिर लोगों को समझ आया होगा कि आकाश केवल कहानी नहीं, अध्ययन का विषय भी है।
0: उसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने रातों की नींद छोड़कर तारों से दोस्ती की।
1: मुझे यह दोस्ती बहुत प्यारी लगती है,
0: क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं, केवल खोजने की खुशी होती है।
1: अच्छा, अब यह बताओ, आकाश गंगा आखिर होती क्या है?
0: कल्पना करो, किसी बहुत बड़े शहर में करोड़ों घर हो।
1: हाँ, फिर?
0: वैसे ही करोड़ों नहीं, अरबों तारों का एक विशाल परिवार होता है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं।
1: तो क्या हमारा सूरज भी उसी परिवार का सदस्य है?
0: बिल्कुल, हमारा सूरज अकेला नहीं है।
1: मुझे तो लगता था सूरज सबसे खास होगा।
0: खास तो है, लेकिन हमारे लिए और ब्रह्मांड की दृष्टि से वह भी अरबों तारों में से एक तारा है।
1: यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य

0: भी हुआ और थोड़ा विनम्र भी महसूस हुआ।
1: लेकिन विज्ञान अक्सर यही सिखाता है कि जितना सीखो उतना अहंकार कम होता जाता है।
0: सचमुच ज्ञान सिर ऊंचा नहीं करता, नजर गहरी कर देता है,
1: है ना?
0: हमारी आकाशगंगा का नाम भी कितना प्यारा है।
1: हाँ, दुधिया मार्ग, जैसी उसकी चमक के कारण उसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है।
0: क्या कभी किसी ने पूरी आकाशगंगा की तस्वीर ली होगी?
1: हम उसके भीतर रहते हैं, इसलिए बाहर से उसकी तस्वीर लेना वैसा ही कठिन है जैसे घर के भीतर खड़े होकर पूरे घर की छत देखना।
0: अरे वाह, यह उदाहरण तो मुझे हमेशा याद रहेगा।
1: इसलिए विज्ञान कठिन नहीं होता, कठिन तरीके से समझाया जाए तो कठिन लगता है।
0: तभी तो अच्छे शिक्षक किताबों से पहले कल्पना का दरवाजा खोलते हैं,
1: और अच्छे विद्यार्थी उत्तर मिलने के बाद भी सवाल पूछना नहीं छोड़ते।
0: हमारी आकाशगंगा में सूरज भी शामिल है ना?
1: हाँ, सूरज भी उसी विशाल परिवार का सदस्य है।
0: तो फिर सूरज का अपना परिवार भी तो होगा ना?
1: बिल्कुल, उसी परिवार को सौरमंडल कहते हैं।
0: यह परिवार सुनने में बहुत अपनापन देता है,
1: क्योंकि प्रकृति भी रिश्तों की भाषा समझती है।
0: इस परिवार में कितने ग्रह रहते हैं?
1: कुल 8 ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं।
0: क्या सभी ग्रह एक जैसे दिखाई देते हैं?
1: नहीं, हर ग्रह की अपनी अलग पहचान है।
0: पृथ्वी की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
1: यहाँ जीवन मुस्कुराता है, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है।
0: इसीलिए यह सबसे प्यारा लगता है मुझे।
1: प्यार दूरी से नहीं, अपनापन से जन्म लेता है।
0: अच्छा, मंगल के बारे में लोग इतना क्यों बोलते रहते हैं?
1: क्योंकि वहाँ जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं।
0: और शनि सबको आकर्षित क्यों करता है?
1: उसके सुंदर वलय सभी का ध्यान खींच लेते हैं।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी कुशल चित्रकार लगती है,
1: क्योंकि उसकी हर रचना कुछ नया सिखाती रहती है।
0: लेकिन इस पूरे परिवार में मेरा सबसे प्रिय कौन है?
1: यह तो तुम ही बताओ।
0: मेरा सबसे प्यारा साथी तो चांद है।
1: लगता है सबके बचपन की यादें जाग गई।
0: हाँ, क्योंकि दादी हमेशा चंदा मामा की कहानी सुनाती थी,
1: और विज्ञान उसी चांद की नई कहानी सुनाता है।
0: दोनों कहानियाँ क्या साथ चल सकती हैं?
1: क्यों नहीं, एक कल्पना देती है दूसरी समझ।
0: अच्छा, चांद अपनी रोशनी कहाँ से लाता है?
1: उसकी अपनी रोशनी नहीं होती।
0: फिर वह इतना चमकता कैसे है?
1: वह सूरज की रोशनी लौटाकर चमकता दिखाई देता है।
0: ओह, इसलिए उसका रूप बदलता लगता है।
1: हाँ, हमें उसका प्रकाशित भाग अलग अलग दिखता है।
0: यानी चांद घटता बढ़ता नहीं है?
1: नहीं, केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा बदलता है।
0: बचपन का एक भ्रम तो आज दूर ही हो गया।
1: इसलिए विज्ञान अक्सर भ्रम हटाकर मुस्कान दे जाता है।
0: चांद की सतह कैसी होती होगी?
1: वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और चट्टानी मैदान हैं।
0: क्या सचमुच इंसान वहाँ पहुँच चुका है?
1: हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था।
0: उस पल पूरी दुनिया गर्व से भर गई होगी, है ना?
1: हाँ, विज्ञान के इतिहास का वह यादगार क्षण था।
0: क्या चांद आज भी वैज्ञानिकों को बुलाता है?
1: उसके रहस्य अभी पूरे नहीं खुले हैं।
0: मतलब चांद की कहानी अभी बाकी है,
1: और हर नई खोज नया अध्याय जोड़ती है।
0: कभी कभी चांद के पास चमकती लकीर भी दिखती है।
1: ध्यान से देखो, वह हमेशा चांद नहीं होता।
0: तो फिर वह कौन होता है?
1: कभी धूमकेतु, कभी उल्का, कभी कोई, और कभी आकाशीय मेहमान।
0: अरे वाह, आकाश तो सचमुच आश्चर्यों से भरा है।
1: और अगले रहस्य की शुरुआत यही से होती है।
0: तो अनुराग, अभी तुमने आकाशीय मेहमान कहा था ना?
1: हाँ, कुछ मेहमान समय समय पर मिलने आते हैं।
0: उनमें सबसे अनोखा कौन लगता है?
1: मुझे तो धूमकेतु सबसे दिलचस्प लगता है।
0: वही जिसकी लंबी चमकती पूंछ होती है?
1: बिल्कुल, मगर उसकी पूंछ हमेशा नहीं रहती।
0: सच? यह तो नई बात पता चली अभी।
1: सूरज के पास पहुँचते ही बर्फ पिघलने लगती है,
0: तब गैस और धूल बाहर निकलती होगी,
1: और वही चमकती पूंछ जैसे दिखाई देती है।
0: बचपन में मैं उसे टूटता तारा समझती थी।
1: ऐसा बहुत से बच्चे सोचते हैं।
0: तो टूटता तारा वास्तव में होता क्या है?
1: अधिकतर वह छोटा उल्का पिंड होता है।
0: यानी आंखें कभी कभी धोखा भी दे देती हैं।
1: इसलिए विज्ञान देखकर ही नहीं, समझकर माना जाता है।
0: अंतरिक्ष में इतनी सारी चीजें घूमती रहती हैं, है ना?
1: फिर भी वहाँ गहरा सन्नाटा रहता है।
0: यह बात हमेशा मुझे हैरान कर देती है।
1: क्योंकि वहाँ ध्वनि फैलाने के लिए हवा नहीं होती।
0: तब अंतरिक्ष यात्री बातें कैसे करते हैं?
1: वे रेडियो तरंगों से एक दूसरे तक पहुँचते रहते हैं।
0: यानी हमारा रेडियो भी विज्ञान का साथी है।
1: बिल्कुल, तभी तो आज यह यात्रा संभव हुई।
0: एक और शब्द अक्सर सुनती हूँ।
1: कौन सा शब्द?
0: प्रकाश वर्ष।
1: यह समय नहीं, दूरी मापने की इकाई है।
0: मैं तो इसे हमेशा वर्षों का हिसाब समझती थी।
1: नाम सुनकर ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है।
0: तारे इतने दूर होते हैं क्या?
1: इतने दूर क्यों?

0: की रोशनी वर्षों बाद पहुंचती है, लेकिन ब्रह्मांड ढेरी का सबसे बड़ा शिक्षक है।
1: और सबसे रहस्यमय जगह कौन सी होगी?
0: शायद ब्लैक होल।
1: उसका नाम सुनकर थोड़ा सा डर लगता है।
0: डर से ज्यादा जिज्ञासा रखो।
1: उसमें ऐसा क्या होता है?
0: उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली माना जाता है।
1: क्या प्रकाश भी बच नहीं पाता?
0: इसी कारण उसे ब्लैक होल कहा जाता है।
1: क्या यह केवल कल्पना है?
0: नहीं, वैज्ञानिक परमाणु से इसके अस्तित्व को समझते हैं हम।
1: कितने लोगों ने ऐसे रहस्य समझने की कोशिश की होगी?
0: अनेक वैज्ञानिकों ने जीवन भर शोध किया।
1: सचमुच उनकी जिज्ञासा प्रेरणा देती है।
0: और यही जिज्ञासा हमें आगे की यात्रा पर ले जाती है।
1: आगे कौन सा रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है?
0: चलो अब कल्पना और विज्ञान को साथ लेकर चलते हैं।
1: अनुराग, तुम्हें नहीं लगता कि चांद सबसे अधिक धैर्यवान साथी है?
0: बिल्कुल, वह हर रात नया रूप लेकर भी अपनी पहचान नहीं खोता।
1: कभी गोल, कभी आधा, कभी पतली सी मुस्कान जैसा दिखाई देता है।
0: और बचपन में मुझे लगता था कोई अदृश्य चित्रकार उसे रोज थोड़ा थोड़ा रंगता होगा।
1: और मैं सोचती थी शायद बादल उसके साथ लुका छिपी खेलता होगा।
0: और कल्पनाएं बचपन की सबसे रंगीन पतंग होती है।
1: फिर विज्ञान ने बताया कि चांद बदलता नहीं, हमें उसका अलग अलग प्रकाशित भाग दिखाई देता है।
0: तब समझ आया कि हर सुंदर दृश्य के पीछे प्रकृति का अपना विज्ञान।

0: सबसे शांत ग्रह कौन सा लगता है जानते हो?
1: बताओ।
0: शनि।
1: केवल उसके सुंदर वलयों की वजह से?
0: हाँ, उसे देखकर लगता है किसी कलाकार ने आकाश में एक अद्भुत चित्र बना दिया हो।
1: उसके वलय वास्तव में बर्फ, धूल और चट्टानों के असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं।
0: यानी दूर से जो एक घेरा लगता है, वह पास जाकर अनगिनत कणों का संसार बन जाता है।
1: यही तो प्रकृति का कमाल है, दूर की चीजें सरल दिखती है, पास जाकर और रोचक बन जाती है।
0: क्या तुम्हें लगता है दूसरे ग्रहों के बच्चे भी आसमान को देखकर ऐसे ही बातें करते होंगे?
1: यदि कहीं जीवन होगा तो शायद वहाँ भी कोई बच्चा यही सोच रहा होगा कि क्या हम अकेले हैं, और वह दूरी इतनी अधिक है कि सामान्य संख्याएं छोटी पड़ जाती है।
0: अनुराग, अब मुझे समझ आने लगा है कि रात का आकाश केवल अंधेरा नहीं होता।
1: हाँ, वह समय इतिहास, विज्ञान और कल्पना का एक साथ खुला हुआ पन्ना है,
0: और हम दोनों उस पन्ने को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं।
1: नहीं आकृति, हम केवल पढ़ नहीं रहे, उसे महसूस भी कर रहे हैं।
0: पता ही नहीं चला बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
1: यही तो ज्ञान की सबसे सुंदर यात्रा होती है।
0: शुरुआत आकाशगंगा से हुई थी
1: और सफर ब्रह्मांड तक पहुँच गया।
0: फिर सूरज ने अपना परिवार दिखाया
1: और पृथ्वी ने अपना महत्व समझाया।
0: चांद ने कल्पनाओं को नए रंग दिए।
1: विज्ञान ने उन कल्पनाओं को आधार भी दिया।
0: धूमकेतु ने आश्चर्य बढ़ाया।
1: प्रकाश वर्ष ने दूरियों का नया अर्थ बताया।
0: ब्लैक होल ने रहस्य से परिचय कराया
1: और वैज्ञानिकों ने खोज का साहस सिखाया।
0: अब समझ आया, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। अनुराग, एक प्रश्न मन में बार बार आता है।
1: प्रश्नों का स्वागत है, पूछो निश्चिंत होकर।
0: यदि किसी दिन एलियन सचमुच मिल जाए तो?
1: तब सबसे पहले मुस्कुरा कर उनका अभिवादन करना चाहिए।
0: भाषा अलग हुई तब क्या करेंगे?
1: मुस्कान हर भाषा से पहले समझी जाती है।
0: फिर मैं पृथ्वी का परिचय दूंगी
1: और मैं हमारे नीले ग्रह की विशेषताएं बताऊंगा।
0: क्या वे हमारी बातें समझ पाएंगे?
1: शायद नहीं, लेकिन जिज्ञासा जरूर समझेंगे।
0: जिज्ञासा सचमुच सबको जोड़ देती है।
1: विज्ञान भी तो यही करता आया है।
0: क्या अंतरिक्ष की हर खोज ज्ञान से होती है?
1: नहीं, कई खोजें दूरबीनों से शुरू हुई।
0: तभी तो आकाश रोज नया लगता है,
1: क्योंकि देखने वाली नजर बदलती रहती है।
0: मुझे एक नाम हमेशा प्रेरित करता है।
1: क्या तुम कल्पना चावला की बात कर रही हो?
0: हाँ, उन्होंने सपनों को हिम्मत से जोड़ दिया
1: और सुनीता विलियम्स ने धैर्य का महत्व समझाया। तो अब बातें बहुत हो गई, अब समय सीमा को देखते हुए हमारे जाने का वक्त हो रहा है।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
0: बाल केलकारी होगा और मजेदार।
1: मिलते हैं अगले रविवार,
0: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार। इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: हमारा नंबर है 9142432658।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
0: बाल केलकारी होगा और मजेदार,
1: मिलते हैं अगले रविवार
0: जिसमें होगी नई सोच नया विचार।
1: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मंडली कार्यक्रम में सभी प्यारे बच्चों को रेडियो दीदी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों का बाल मंडली कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आज हमारे स्टूडियो में दो छोटे बच्चे आए हुए हैं, आदित्य और अनंत। आदित्य, पहले आप अपने बारे में अपने दोस्तों को बताइए।
1: मेरा नाम आदित्य नारायण है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 11 साल है और आज मैं बाल मंडली में अपने दोस्तों के साथ बात करने आया हूँ।
0: अच्छा, बाल मंडली कार्यक्रम में आप आए हैं अपने दोस्तों से ढेर सारी बात करने, है ना? अनंत, आप भी अपने दोस्तों को अपने बारे में बताइए।
2: मेरा नाम अनंत नारायण है, मैं कक्षा 3 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
0: वाह, बहुत अच्छा। आदित्य, आप कभी वन या जंगल घूमने गए हैं?
2: हाँ।
0: कैसा लगता है जंगल और क्या क्या होता है जंगल में?
1: जंगल में शेर रहते हैं, बियर रहते हैं और अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ बहुत होते हैं।
0: हाँ, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। और वन का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? वन से हमें क्या मिलता है? हमें शुद्ध हवा मिलता
1: शुद्ध
0: है,
1: शुद्ध हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है।
0: हाँ, पेड़ जो होते हैं वन में, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम
1: सांस लेते हैं,
0: स्वच्छ हवा मिलती है ना। वन वर्षा लाने में भी मदद करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। बच्चों, वन प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। वन यानी ऐसे बड़े क्षेत्र जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य जीव रहते हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, औषधियाँ, गोंद और कई अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अनेक जंगली जानवरों और पक्षियों का घर भी वन में ही होते हैं। यदि वन ना हो तो कई जीवों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। वन मिट्टी के बहने से रोकते हैं और बाढ़, सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं। वे धरती को हरा भरा और सुंदर भी बनाते हैं। आदित्य, आपको पता है कि वन उत्सव के बारे में, जो भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है? आप अपने दोस्तों को बताइए वन उत्सव के बारे में।
1: जी दीदी, मैं आपको वन महोत्सव पर बताता हूँ। वन महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ते में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह हमें पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को यह हमें पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को वन तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पेड़

0: लाने में मदद करते हैं, मिट्टी के कटाव के रोकते हैं और जानवरों व पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। आजकल बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़ों का महत्व और भी बढ़ गया है। वन महोत्सव हमें ये संदेश देता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव सही मायने में प्रकृति का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम एक स्वस्थ और सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत ही अच्छी बातें बताई आदित्य ने कि हम एक अच्छे पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, ये एक सप्ताह तक चलने वाला वृक्षारोपण उत्सव है जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में पेड़ के प्रति प्यार जगाना, वनों की कटाई रोकना और पर्यावरण को हरा भरा बनाना। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी द्वारा की गई थी। ये महोत्सव जुलाई में ही क्यों मनाया जाता है, आपको पता है आदित्य?
0: नहीं दीदी, आप बताइए क्यों मनाया जाता है।
1: आदित्य, जुलाई का समय मानसून के आगमन का होता है ना, उस समय मानसून यानी बारिश का मौसम होता है और इस दौरान लगाए गए पौधों को बारिश का पानी मिलता है जिससे उनके जीवित रहने और तेजी से बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है ना। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, है ना, और वनों की रक्षा भी करनी चाहिए। बच्चों, हमें केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए। आप पेड़ लगाते हैं?
0: हाँ दीदी।
1: चूंकि पर्यावरण संरक्षण में पेड़ पौधे लगाना भी बहुत जरूरी है। आजकल देख ही रहे हो, वनों की कटाई हो रही है और जंगल भी कटते जा रहे हैं जिससे जानवर कई बार शहर में आ जाते हैं। तो इसलिए जितना पेड़ लगाएंगे
0: इससे हमारी धरती हरी भरी रहेगी।
1: हाँ, और यदि पेड़ कम हो जाएगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा और पर्यावरण का भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वन महोत्सव हमें ये सिखाता है कि पेड़ पौधे धरती की अमूल्य संपत्ति है। अधिक पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बना सकते हैं और यही वन महोत्सव का सबसे बड़ा महत्व है। और अब क्या सुना रहे हैं आदित्य?
0: मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती माँ को हरा बनाएं, पेड़ हमें देते हैं छाया, फल फूल देकर सुख पहुँचाया। शुद्ध हवा का ये है सोत्र, इनसे जीवन रहता ओत प्रोत, पक्षी इनमें घर बनाते, मीठे मीठे गीत सुनाते।
1: अनंत, आप अपने दोस्तों को क्या सुना रहे हैं?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुना रहा हूँ।
1: सुनाइए।
2: हथकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक दिन गोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, थितुर थितुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई बाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू तूने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगूल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। गत्ता भरता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नए किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए।
1: चांद का कुर्ता है ना, चांद का कुर्ता कैसे सिलाएगा, वो तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी गोल भी होता है, कभी छोटा भी होता है, क्योंकि दिन पे दिन वो घटता भी है और दिन पे दिन वो बढ़ता भी है। हर 15 दिन में वो पूर्णिमा में देखते होंगे ना, चांद गोल हो जाता है और अमावस्या के समय चांद भी नहीं दिखता है। तो ऐसे में उसका कुर्ता कैसे सिला सकता है, वो अपनी माँ से कह रहा है मुझे एक कुर्ता सिलवा दो, है ना आनंद?
0: जी दीदी।
1: आदित्य, आप क्या सुना रहे हैं अपने दोस्तों को?
0: आज हम सुनाने जा रहे हैं एक कविता, उसका शीर्षक है हमारा देश महान। आओ मिलकर प्रण करें, भारत की शान बढ़ाएंगे, हंसते हंसते इसकी खातिर अपने प्राण

0: खेतों में खलियानों में हम फसलें खूब उगाएंगे, सभी करेंगे मेहनत जिससे खुशहाली हम लाएंगे। सभी हाथों को मिले काम, साधन उपलब्ध कराएंगे, मिटे अंधेरा अज्ञानता का दीप शिक्षा के जलाएंगे। सत्य और अहिंसा का पथ सबको हम दिखलाएंगे, घृणा मिटाएंगे हर मन से दीप प्रेम के जलाएंगे। प्रेम भरी हर भाषा होगी, हर धर्म को शीश नवाएंगे, सब जन है भारत के अपने, अपनों में प्रीत बढ़ाएंगे।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छा। सबके साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और भारत देश का नाम रोशन करना चाहिए, है ना? और आदित्य, ये बताइए कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप किसके पास जाते हैं?
0: डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास जाते हैं तो डर तो नहीं लगता?
0: नहीं
1: नहीं ना,
0: डॉक्टर के पास तब जाते जब बीमार पड़ गए हो, तो उसलिए हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास।
1: क्योंकि डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं, है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं या चोट भी लग जाती है या कोई स्वास्थ्य समस्या होती है ना, तब डॉक्टर हमें जांच करके सही इलाज करते हैं और हमारी जांच करते हैं और बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। वे दवा देते हैं और जल्दी ठीक होने की सलाह भी देते हैं, है ना? अगर खांसी सर्दी हो गई है तो बताते हैं ना कि आप अभी ठंडा चीज मत खाइए और सही भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की बात ध्यान से माननी चाहिए। आप ध्यान से बात सुनते हैं उनकी?
0: हाँ।
1: उनकी बात सुनते हैं ना डॉक्टर की, और दवाइयाँ समय पे लेते हैं अगर तबीयत खराब होती है तो?
0: हाँ दीदी।
1: हाँ, लेनी चाहिए। और डॉक्टर से तो डरने की जरूरत ही नहीं, अक्सर बच्चे सुई लगाने से डरते हैं ना। अगर कभी डॉक्टर सुई भी लगा देते हैं तो आपकी भलाई के लिए होता है, ताकि आप जल्दी ठीक हो सके, है ना आनंद
0: जी? दीदी,
1: वैसे भी बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छा पौष्टिक भोजन करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। अभी गर्मी का भी समय है तो आप पानी पीते हैं ना अच्छे से?
0: हाँ दीदी।
1: बिल्कुल। और खेल कूद भी करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, है ना? बच्चों, आपको बता दें, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे उन डॉक्टर के सम्मान में मनाया जाता है जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखने में काम करते हैं। हमें हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स डे हमें उनके परिश्रम, सेवा और समर्पण के लिए उन्हें धन्यवाद देने का अवसर भी देता है। डॉक्टर मानवता के सच्चे सेवक हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आदित्य, आप गुड टच बैड टच के बारे में आपको पता है?
0: हाँ दीदी।
1: बताइए क्या होता है अपने दोस्तों को?
0: गुड टच और बैड टच, बच्चों को अपने सुरक्षा के लिए गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुड टच वह स्पर्श है जिससे बच्चा सुरक्षित, खुश और आरामदायक महसूस करे। उदाहरण, माता पिता का प्यार से गले लगाना, शिक्षक का शाबाशी देने के लिए पीठ थपथपाना, डॉक्टर का माता पिता प्रेजेंस में जांच करना। बैड टच वह स्पर्श है जिससे बच्चे असहज, डरा हुआ या परेशान महसूस करे। किसी के बच्चे के निजी अंगों को छूना, बच्चों को ऐसे छूना जिससे उसे डर या शर्म महसूस हो। किसी का बच्चे को ऐसे स्पर्श को छिपाने के लिए कहना। बच्चों अपने शरीर का सम्मान करें, कोई भी असहज स्पर्श होने पर तुरंत कहें। तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति, माता पिता या अभिभावक को बताएं। किसी भी बूढ़े स्पर्श को छुपाएं नहीं।
1: तो ये होता है गुड टच और बैड टच। आपने सही कहा कि गुड टच वो है जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जैसे मम्मी पापा गले लगाते हैं, है ना, दादा दादी हैं तो वो आपको सिर पे स्नेह के रूप में आपको प्यार देते हैं, तो ये सब गुड टच होता है, प्यार वाला टच होता है जिससे स्पर्श करते हैं। और जो बैड टच होता है, आपने बताया कि जो जिससे हमें असहज महसूस हो या हमारे निजी अंगों को जो छूता है वो गलत तरीके से छूता है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये बात किसी को भी मत बताना, तब भी बच्चों को तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए, है ना? और बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, यदि स्पर्श अच्छा ना लगे तो साफ शब्दों में मना कीजिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं किसी बड़े को बता दूंगा, या किसी बड़े के पास तुरंत चले जाइए और

0: अपनी बात पूरी तरह से बताइए। अपने माता पिता, शिक्षक या भाई बहन को तुरंत बताइए। चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहिए कि उस व्यक्ति से हम डर जाए कि अरे वो व्यक्ति हमें कुछ हानि ना पहुंचाए। इस डर से चुप नहीं रहिए। जो भी हो सारी बात सही सही अपने माता पिता, टीचर्स को या अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। अगर स्कूल में भी किसी तरह से आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत अपने टीचर या अपने दोस्तों को भी बताइए। और घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए इन सब चीजों से। और अपनी बात कहने के लिए शिक्षक को और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हिम्मत से सही बात, सारी बातें अपने बड़ों को बताएं। बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि वे किसी परेशानी की बात बिना डर के बता सकते हैं। हर बच्चे को समझना चाहिए कि उसका शरीर उसका अपना है, उसे सुरक्षित रहने का अधिकार है। गुड टच, बैड टच की जानकारी बच्चों को आत्मविश्वासी और सुरक्षित बनाती है ना? तो अगर आपके साथ या आपके अपने किसी दोस्तों के साथ भी अगर इस तरह का हो रहा है, अगर वो दोस्त नहीं बता पा रहा है, तो आप भी अपने दोस्त का मदद कर सकते हैं, है ना? अगर किसी दोस्त के साथ अगर इस तरह की कुछ गलत चीजें हो रही है उनके साथ।
1: जी दीदी।
0: आदित्य अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं
1: हाँ दीदी।
0: या किसी तरह से चुटकुला सुनाते हैं?
1: हाँ
0: आपको चुटकुला आता है?
1: हाँ
0: सुनाइए।
1: दीदी, मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, मैं बताता हूँ अभी। शिक्षक बताओ, ऐसे कौन सा फल है जो मीठा नहीं होता? बच्चा, मेहनत का फल। शिक्षक, वाह बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया, है ना? मेहनत का फल, जबकि वो फल नहीं है ना? और भी आपको आता है?
1: हाँ दीदी।
0: सुनाओ।
1: मम्मी, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा, मम्मी चल तो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे।
0: अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो चुटकुला, और जब भी हम किसी को सुनाते हैं तो क्या होता है?
1: वो हंसता है।
0: हंसता है और सामने वाले भी हंसते हैं ना, खुश होते हैं। वैसे भी जब हम हंसते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, तनाव भी कम होता है हंसने से। हंसी हमारे शरीर मन दोनों के लिए बेहद जरूरी है ना? लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मजाक किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, है ना? किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी कभी होते हैं ना, दोस्त लोग मिलकर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक कभी किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। हंसी मजाक वही है जो सभी को खुशी दे और किसी का अपमान ना करे। बच्चों, हंसी मजाक जीवन में खुशियां लाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की भी खुशियों को बांटते रहिए।

0: और अब क्या सुना रहे हैं आदित्य? आप
1: दोस्तों, मैं एक नई कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है नन्ना पौधा। एक बीज था, गया बहुत गहराई में बोया, उसी बीज के अंदर में था नन्ना पौधा सोया। उस पौधे के मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्नी नन्नी बूंदों ने फिर उसके ऊपर जल बरसाया। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आँखों खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आँख खोल कर नन्हे पौधे ने तबली अंगराई, एक अनोखा नई शक्ति सी उसके तन में कर आई। नींद छोड़े आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया।
0: वाह, बहुत ही अच्छा। नन्हे पौधे के बारे में अभी आदित्य ने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। और अनंत, आप क्या सुना रहे हैं अपने दोस्तों को?
2: मैं एक कविता सुना रहा हूँ दीदी, जिसका शीर्षक है कुछ काम करो।
0: वाह, बहुत अच्छा, सुनाइए।
2: कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो धन को, नर हो ना निराशा करो मन को, प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना आहो। फिर है किसका यह दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
0: हाँ, पृथ्वी पे आए हैं, जग में आए हैं, तो कुछ काम भी करना चाहिए और काम करते हुए हमें नाम भी करना चाहिए, है ना? नाम करेंगे तो पापा मम्मी का भी नाम होगा, आपका भी नाम रोशन होगा। तो जीवन में काम भी करना है और अच्छे से पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई कीजिएगा तब तो अच्छे से काम कीजिएगा।
2: हाँ दीदी,
0: बिल्कुल। तो आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से?
2: हाँ।
0: और अगर कोई दोस्त से झगड़ा होता है तो आप उसे माफ करते हैं?
2: हाँ दीदी,
0: करते हैं ना। माफी मांगना अच्छी बात है।
2: हाँ दीदी।
0: आदित्य, कभी कभी हमें अनजाने में गलती हो जाती है ना, तो आप माफी मांगते हैं?
2: हाँ दीदी।
0: कैसे, किस तरह से? अगर किसी से गलती भी होती है तो उसे आप माफ करना भी सीखना चाहिए।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। अगर किसी दोस्त से खिलौना टूट जाता है, या किसी को हम बुरा बोल देते हैं, या हम किसी की बात नहीं मानते हैं, तो ऐसी स्थिति

0: मुझे माफ कर दो कहना बहुत जरूरी होता है ना।
1: हाँ भाई,
0: माफी मांगने से सामने वालों को भी अच्छा लगता है, उसे पता चलता है कि हम अपनी गलती का भी एहसास होता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं है बच्चों, बल्कि अच्छी आदत है और बहादुरी की निशानी है। जब बच्चे अपनी गलती स्वीकारते हैं तो वे सबके प्रिय भी बन जाते हैं, है ना। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गलती जानबूझकर नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती हो जाते हैं तो बहाने भी नहीं मारना चाहिए कि हम क्यों माफी मांगे, हम थोड़ी गलती किए हैं, ऐसे बातें भी नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए और उस गलती से सीख भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉरी बोल दिए तो बस बात खत्म हो गई, या फिर हम वही गलती कर रहे हैं, या फिर हम उसे गलत बातें कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या फिर बाद में उसे सॉरी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी का मतलब होता है दिल से सॉरी कहना, और उस गलती से हमें सीख भी लेना चाहिए कि हम उसे दोबारा नहीं करें, है ना आदित्य,
1: हाँ दीदी,
0: है ना। और इससे क्या होता है, दोस्ती और रिश्ते भी मजबूत होते हैं, है ना। दोस्तों से झगड़ा होता भी है फिर दोस्ती भी हो जाती है। तो गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कीजिए और सच्चे मन से माफी मांगिए, और अपनी गलती सुधारने की कोशिश कीजिए, और भविष्य में वही गलती दोबारा ना करें। बच्चों, माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते बल्कि और अच्छे इंसान बनते हैं, है ना। और चॉकलेट खाते हैं आपको,
1: हाँ दीदी,
0: कौन सा चॉकलेट पसंद है?
1: मैं डेरी मिल्क या बॉर्नवेल खाता हूँ।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है भी, है ना। और अक्सर हम जाते हैं बाहर घूमने तो कुछ ना कुछ चॉकलेट लेते भी है
1: हाँ
0: ना।
1: दीदी,
0: और बच्चों को तो खासकर चॉकलेट खाना पसंद है। आपको खाना पसंद है अनंत?
1: हाँ दीदी,
0: आपको अच्छा लगता है चॉकलेट खाना?
1: हाँ
0: लेकिन चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए।
1: हाँ दीदी,
0: क्या होता है चॉकलेट ज्यादा खाने से?
1: दांत में कीड़े लग जाते हैं और कैविटीज भी हो जाती है, जिससे हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं
0: सड़ने भी लगते
1: या
0: हैं,
1: दांत टूट जाते हैं।
0: दांत टूट जाते हैं, दांतों में, है ना, दर्द भी रहता है अगर ज्यादा खाते हैं, और बैक्टीरिया भी जैसे आपने बोला कि हो जाता है। तो ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, और रात को अगर कुछ मीठा खाते भी है तो ब्रश करके
1: ब्रश
0: सोना
1: करने
0: चाहिए,
1: सोना
0: है
1: सोना चाहिए,
0: ना। ब्रश करने से दांतों की
1: दांत
0: सफाई भी
1: दांत
0: होती।
1: सफाई हो जाती है।
0: तो बच्चों, चॉकलेट भी कई प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट। और चॉकलेट खाने से मन खुश भी रहता है, और दोस्तों के साथ भी आप शेयर करते हैं, जैसे चॉकलेट कोई देता है अगर
1: हाँ
0: ज्यादा है तो आप शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, है
1: हाँ
0: ना। और दोस्तों के साथ खाने से एक अलग ही मजा होता है ना। सब लोग को मिल्क बांट कर खाना चाहिए, है ना। अगर
1: हाँ
0: मान ली उसके
1: दीदी,
0: पास नहीं भी है चॉकलेट, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप उसको दे भी सकते हैं,
1: हाँ
0: है ना।
1: दीदी
0: बांटने से अच्छा भी लगता है, शेयर करना चाहिए और सीखना भी चाहिए, है ना।
1: दीदी, शेयर इज केयरिंग।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, दोस्तों के साथ बांटिए, खिलाइए और खुद भी खाइए, लेकिन सीमित मात्रा में। और बच्चों, अब हो गया है अब समय यहाँ से जाने का, तो खूब खेलिए, खूब मस्ती कीजिए, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ अब गुंजन दीदी आपसे विदा चाहती है। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बाल कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: हेलो फरमाइश।
1: पुरीन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोता का स्वागत है। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका ये कॉल।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: बताया जाए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं श्वेता घोष गद्दलीबाग से बोल रही हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। कुछ अपने बारे में और बताइए।
2: मैं तो अच्छा हाउसवाइफ हूँ, लेकिन थोड़ा कल्चर फील्ड में भी थोड़ा इंटरेस्ट है।
1: जी जी,
2: तो राइटिंग का भी शौक है।
1: अच्छा जी।
2: तो एक्टिंग का भी शौक है।
1: जी बहुत खूब। रेडियो का कार्यक्रम आपको पसंद है?
2: हाँ जी, हाँ जी
1: जी। तो कुछ ऐसा बताइए, आपके अनुभव कुछ हो अगर रेडियो से संबंधित, इससे जुड़े हुए।
2: रेडियो के अनुभव तो काफी पुराना और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रेडियो का जो प्रोग्राम होता है
1: जी,
2: उससे इन्फॉर्मेशन काफी मिलती है। किसी भी फील्ड के बारे में यदि आप कुछ सुनो,
1: हाँ हाँ,
2: तो आपको इन्फॉर्मेशन काफी मिलती है।
1: जी,
2: इसलिए मुझे पसंद है।
1: क्या बात है, सही बात आपने कही कि रेडियो सूचना के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करता है, तो ये एक बड़ी बात है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, ये जानकर अच्छा लगा। बहुत सारे श्रोता इससे लाभान्वित होते हैं, कुछ नई जानकारी मिल जाती है उनको और इंटरटेनमेंट।
2: फील्ड में आप खेती से रिलेटेड आप प्रोग्राम सुनो तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी।
1: जी जी,
2: चाहे वो म्यूजिक पे हो, चाहे वो ड्रामा पे हो, किसी भी फील्ड के बारे में आप उसको लगाकर देखो सुनो तो उसमें नॉलेज ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास हो जाएगा।
1: हाँ जी, सही कहा आपने, और इसीलिए हम अपने श्रोता के हर वर्ग को पहचानते हैं और उसके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी के लिए हमारे यहाँ कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप बताइए कि आज आपने कॉल किया है तो आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए?
2: मेरी पसंद एक फिल्म है अभिमान, जिसका गाना मैं आपको बताती हूँ। ये गाना अभिमान का आय हाय तेरी बिंदिया रे, ये मुझे बहुत पसंद है।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर। ये गीत मैं आपकी पसंद पर प्ले करता हूँ।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर, आकाशवाणी पटना से बात हो रही है।
0: जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन किया है, बहुत बहुत
1: जी
0: स्वागत
1: सर,
0: करते
1: हेलो
0: हैं।
1: फरमाइश में कॉल किया मैंने।
0: जी, आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें।
1: जी सर, मैं अपने पसंद के गाने सुनना चाह रही थी आपसे,
0: जी
1: हेलो फरमाइश
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल, गाने सुनवाएंगे, ये आपका ही कार्यक्रम है और आपके इस कार्यक्रम में हम आपकी पसंद के गीत सुनवाते ही हैं, थोड़ी बातचीत हो जाए। कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ रेडियो से संबंधित कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं।
1: रेडियो से संबंधित अनुभव तो मैं यही बताना चाहूंगी सर कि ये जो है ना, इससे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि
0: क्या बात
1: हमारे नाना जी जो थे वो रेडियो सुना करते थे, और तब मैं बहुत छोटी थी, उसको देखती थी और सोचती थी कि छोटे से डिबिया से जो है वो आवाज कैसे आती है। ये
0: क्या बात
1: बहुत हैरानी
0: है
1: की बात होती थी, मुझे लगता था कि इसमें सब लोग रहते होंगे, इतने छोटे छोटे साइज के लोग होते होंगे। मुझे बाद में पता चला, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो तजुर्बा होता है, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो खैर वो तो बचपन की बात थी, लेकिन अभी ये है कि रेडियो में अभी भी सुनती हूँ, अब तो
0: जी
1: मोबाइल में आ गया तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी जानकारी मिलती है यहाँ से हमें, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का जो प्रोग्राम है हर फरमाइश, क्योंकि
0: जी
1: यहाँ हर रंग के जो गाने हैं ना वो सुनने को मिलते हैं, और हर तरह के प्रोग्राम हर लैंग्वेज में सुनने को मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और
0: जी
1: बस एक सॉन्ग है जो मेरा फेवरेट है, अगर आप उसको सुनवा देंगे तो बहुत
0: बिल्कुल
1: खुशी
0: बिल्कुल
1: होगी मुझे।
0: बिल्कुल, बताइए।
1: दिल का क्या कसूर का टाइटल सॉन्ग।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार सर।
0: जी, फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपने फोन किया है। बताइए, अपना परिचय दीजिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी, मैं सुनील कुमार जक्कनपुर से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनील कुमार जी, कहिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार हूँ सर।
0: जी,
1: जी, मैं पटना रंगकर्म से जुड़ा हुआ हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: जी, मैं अक्सर आपका रेडियो सुनता रहता हूँ। बहुत मजा आता है, बहुत सी जानकारी भी मिलती है।
0: तो रेडियो से जुड़ाव है आपका, मेरा ख्याल है बहुत
1: जी
0: पहले से सुनते होंगे, आप पुराने श्रोता हैं हमारे।
1: जी एक हमारा फिल्म यारान फिल्म से एक गाना है,
0: जी
1: मेरी पसंद की गीत है सर।
0: जी बताया जाए।
1: अगर वो सुनाए तो बहुत मेहरबानी आप।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं।
1: फिल्म याराना से ओ राम जी मेरा पिया घर आया,
0: अच्छा,
1: ये
0: पुरानी
1: माधुरी दीक्षित की फिल्म है। ये पुरानी फिल्म है सर।

0: हेलो।
1: जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
0: हाँ नमस्कार।
1: जी अपने बा हाँ जी अपने बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी हो हमारे श्रोता।
0: जी मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है,
1: जी
0: बोरिंग रोड पटना में रहते हैं हम लोग, और
1: जी
0: गाना सुनने के काफी शौकीन है हम लोग,
1: जी
0: तो नए पुराने गाने सुनते रहते हैं हम लोग। तो हमारा सिलसिला पिक्चर का एक फेवरेट सॉन्ग है, ये कहाँ आ गए हम, वो सुनना चाहेंगे हम लोग।

0: जी थोड़ी और जानकारी हो जाए। आप पटना शहर में हैं तो बताइए कब से आप हैं पटना शहर में, या पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के, और क्या-क्या शौक हैं कुछ बताइए।
1: पटना शहर में ही हमारा जन्म हुआ है
0: जी
1: और यही शुरू से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, पटना में ही। शौक
0: वेरी गुड।
1: तो बस यही है अपना, एक मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: हाँ
1: अपने घर को संभालती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ।
0: जी
1: जो
0: जी जी जी
1: बच्चे हैं मेरे, उन लोग के पीछे हमारा वक्त जाता है। मेरे हस्बैंड
0: जी
1: सीए हैं जी,
0: जी
1: तो बस अपने घर की देखभाल करती हूँ और बस अपने छोटे मोटे शौक पूरे करते रहती हूँ। कभी गुनगुना लेती हूँ, गाना सुन लेती हूँ,
0: जी
1: ये सब मेरे शौक हैं।
0: जी
1: पेंटिंग कर लेती हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए, अगर कोई गीत आपको पसंद है तो आप गुनगुना सकती हैं।
1: हाँ,
0: जी
1: वह मुझे सिलसिला पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है, ये कहाँ आ गए हम, गुनगुना के सुनाओ।
0: बहुत खूब
1: ठीक
0: जी।
1: है।

जानम मेरी चीज मुझा पिघलते वो तेरी बाहों में है जानम।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जी नमस्कार, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: हेलो जी, मेरा नाम सक्षम हुआ, मैं पटना से हूँ, बोरिंग रोड से।
0: जी पटना बोरिंग रोड से, आप अपने बारे में कुछ बताएं सत्यम जी, क्या करते हैं?
1: हाँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, तो शुरुआत से यहीं रहता हूँ।
0: जी वेरी
1: और
0: गुड।
1: कुछ हॉबीज हैं मेरे, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ और पेंटिंग करता हूँ, और स्कूल लेवल पर मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ।
0: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई अपने बारे में। वेरी गुड, स्कूल से आप क्रिकेट खेलते हैं?
1: हाँ
0: जी बहुत बढ़िया, तो कहाँ कहाँ खेल चुके हैं आप अभी?
1: सन माइकल से गांधी मैदान में और जेपी सेतु के पास ग्राउंड है, वहां पे खेलता हूँ।
0: अच्छा जी, वेरी गुड। तो आप क्या करते हैं बेसिकली, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं?
1: मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ।
0: अच्छा, ऑलराउंडर है, क्या बात है, बहुत खूब। तो आप अपने खेल में रुचि को बनाए रखिए और हमारे कार्यक्रम से भी जुड़े रहिए, सुनते रहिए। वैसे आप खेल में रुचि रखते हैं तो हम आपको बताएं, खेल गतिविधियों से संबंधित हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उसका नाम है खेल परिक्रमा। तो उस कार्यक्रम को भी अगर आप सुनेंगे शाम को 5:30 बजे प्रत्येक बुधवार को, आधे घंटे का कार्यक्रम है, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में प्रश्नों का एक अंक वहाँ पर शामिल किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सही उत्तर देने पर आपका नाम भी लिया जाता है। तो अगर आप,
1: जी, मैं जरूर देखूंगा।
0: हाँ आप सुनेंगे उसको। चलिए, आज आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, बताइए क्या पसंद है आपकी, कौन सा गाना आपको सुनवाया जाए?
1: मैं पल दो पल का शायर जो

0: जी नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार,
0: जी बताइए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं रश्मि बोल रही हूँ कंकरबाग से। धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं टीचर हूँ और थोड़ा बहुत पैक करती हूँ, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ। और आज देखिए फोन किया, लग गया और आपसे बात हो रही है।
0: जी कार्यक्रम अच्छा लगता है कि नहीं ये बताइए।
1: हाँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा सुनती हूँ इस कार्यक्रम को, और भी ये आकाशवाणी के जो भी कार्यक्रम है उसे मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है।
0: जी, बहुत
1: आपके
0: अच्छा।
1: बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं।
0: ये कार्यक्रम की खूबसूरती है कि हम इसमें आपकी पसंद पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप क्या पसंद करते हैं, ना करते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा होती है तो हमें अच्छा लगता है। कार्यक्रम में श्रोता विभिन्न तरह के आते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र उनके हैं जिनमें वो काम करते हैं और उनकी रुचि रहती है, तो ये मज़ेदार होता है सबसे बातचीत करना। चलिए, आपको
1: जी,
0: अच्छा लगा इस कार्यक्रम में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है श्रोता से बात करके। कार्यक्रम बनाने में मज़ा भी आता है, तो
1: हाँ,
0: आप बताइए, रेडियो में अगर आपने कोई रुचि रखी है तो बताइए, आपका पसंदीदा कौन सा कार्यक्रम है?
1: मुझे युवानी बहुत अच्छा लगता है, वो युवाओं को संबोधित जो प्रोग्राम है
0: जी
1: उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सुनने में भी अच्छा है। जो एंकर लोग हैं वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और
0: जी
1: जो वहाँ आकाशवाणी के जो क्षेत्रीय कार्यक्रम सब है, चौपाल है, मगीचा जो प्रोग्राम है, आरती है, ये सब भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में।
0: चलिए, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी आपने रखी है और सुनते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और हमसे
1: जी,
0: आप बातचीत कर रही हैं तो ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है तो आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए, क्या पसंद है आपकी?
1: सोनू निगम की आवाज में वास्तव फिल्म का जो गाना है मेरी
0: अच्छा,
1: दुनिया है, वो
0: मेरी
1: मेरा
0: दुनिया।
1: सबसे पसंदीदा गाना है, तो आप उसे सुना सकते हैं, तो प्लीज सुनाइएगा।
0: जी अगर आप गुनगुना सकते हैं तो गुनगुना दीजिए।
1: मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, मेरी जान में तेरी जान है और साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी नमस्कार।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं पटना से बोल रहा हूँ
0: जी बहुत
1: और मेरा नाम अभिषेक हुआ।
0: जी अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में
1: जी धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी। कहिए क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा चल रहा है आपका?
1: बस ठीक ठाक ही चल रहा है सर, और आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ।
0: जी
1: गाने बहुत अच्छे लगते हैं और गाने से शौक भी है, इसलिए
0: हाँ जी
1: आज सोचा कि मैं फोन कर लूं। आपकी
0: जी
1: आवाज बहुत प्यारी लगती है,
0: जी धन्यवाद इस तारीफ के
1: बहुत
0: लिए
1: सुकून मिलता है। कैसे हैं आप?
0: जी। बढ़िया, बहुत अच्छे। आप
1: जब
0: कार्यक्रम के बारे में बताइए, कार्यक्रम कैसा लग रहा है? मेरी आवाज़ तो आपको पसंद आई
1: आवाज अच्छी हो कार्यक्रम में तो कार्यक्रम तो ऐसे ही अच्छा लगेगा।
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई का। और ये कार्यक्रम इसलिए
1: शुक्रिया।
0: बन पाता है अच्छा कि आप श्रोता जो हैं मुझसे बात करते हैं, अपनी रुचि बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरी खुशी दुगुनी हो जाती है।

0: जाती है तो कार्यक्रम अच्छा बनता है।
1: नहीं, और ये हम लोगों का, श्रोताओं का, और विशेष तौर पे मेरा सौभाग्य है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं आपके केंद्र से।
0: जी, रेडियो का को कोई बहुत बेहतरीन अनुभव अगर आपको हो, कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ कुछ मामला हो या कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहें तो बता सकते हैं।
1: नहीं, ऐसे कार्यक्रम तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं, ऐसी
0: जी
1: कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि गानों से शौक रखता हूँ, गाना सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये हेलो फरमाइश जो आपका कार्यक्रम है इसको बहुत चाव से मैं सुनता हूँ।
0: जी
1: कार्यक्रमों को भी मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि
0: जी जी
1: कार्यक्रम अच्छे ही लगते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं कार्यक्रम।
0: जी ये बात ही है कि हम जो है आकाशवाणी से सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी परोसते हैं, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी हमारे हर वर्ग के श्रोता हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की सूचनाएं और उसके बाद फिर उनका मनोरंजन। आपने ये बातें हमसे शेयर की, बहुत अच्छा लगा। गानों का ये कार्यक्रम तो है, तो अब गाना बता दिया जाए कि आप क्या सुनेंगे?
1: आज देखिए, मैं अभी
0: आप गुनगुनाइए।
1: जीवन से भरी

0: नमस्कार संजय किशोर जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: हम आकाश कुमार जी, यह जिला तो मोतिहारी पड़ता है जी और मधुबन ब्लॉक से बोल रहे हैं जी।
1: जी क्या करते हैं वैसे आप?
0: ऐसे तो अभी बारिश का महीना है तो सर अभी तो घरे पर आ रहे हैं।
1: अच्छा,
0: गाना संजय किशोर जी हमको गाना सुना दीजिए, मन मन की बहका रे बहका आधी रात को।

0: हेलो
1: कौन बोला?
0: फरमाइश
1: हेलो, प्रणाम
0: जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सर।
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कॉल कर रहे हैं सर, बिहार लखीसराय जिला चानन ग्राम इटौन, अजय पंडित सर।
0: जी पंडित जी, क्या करते हैं?
1: मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, चाह वाला।
0: अच्छा, बस वही और कुछ भी?
1: और कुछ नहीं सर, हम नेत्रहीन हैं,
0: तो बना लेते हैं।
1: बना लेते हैं चाह पीने वाला सर, दिया चुगरी छोटा वाला सामान जो होता है बनाते हैं।
0: अच्छा, उसमें दिक्कत नहीं होती आपको बनाने में?
1: अब दिक्कत होता है सर, तो चार गो बाल बच्चा है तो उसको क्या करें। हम फिलहाल में इधर हो गए नेत्रहीन, पहले ठीक थे सर।
0: अच्छा,
1: रेडियो तो मिट्टी का काम करते हैं सर, तो सवेरे हम चालू करते हैं 5:45 बजे रेडियो, तो बंद एक केवरा करते हैं, वो है मैंने 3:25 में,
0: अच्छा, तो दिन भर
1: तीन
0: सुन।
1: पच्चीस में बंद कर, दिन भर चालू रहता है सर।
0: जी,
1: और उसके बाद फिर शाम को अपना 7:30 बजे वाला समाचार सुन लिए। क्या बाल बच्चा पढ़ाई करता है तो रेडियो उतना हम शाम को नहीं ध्यान देते हैं, समझे
0: बढ़िया।
1: सर। शाम को खाली समाचार 7:30 बजे वाला सुन लेते हैं, उसके बाद फिर फिल्मी गाना वही 10 बजे वाला जो होता है तो वो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। हाँ, लेकिन दिन में हमारा सारा दिन रेडियो चालू रहता है सर।
0: चलिए ठीक है, सुनते रहिए कार्यक्रम, अपना मनोरंजन करते रहिए। नहीं
1: गाना
0: ठीक,
1: सुना दीजिएगा सर।
0: हाँ बिल्कुल, बताइए।
1: ये है गीता का ज्ञान वाला ना है सर।

0: आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0612-222-2550। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-222-2550। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार है रेणुका सिन्हा और मंजय प्रसाद कश्यप। पहले सुनिए रेणुका सिन्हा से शिव भजन।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे रेणुका सिन्हा और मंजय प्रसाद कश्यप।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वैज्ञानिकी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विज्ञान जगत के पाक्षिक कार्यक्रम वैज्ञानिकी में, जिसे हम लेकर आते हैं माह के पहले तीसरे और पांचवें रविवार दोपहर के 12:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान की रोचक, उपयोगी और नवीन जानकारियों से हम रूबरू होंगे। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह हमें तर्क, खोज तथा नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है। आइए इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं मॉनसून, मौसम विज्ञान और बदलता जलवायु स्वरूप विषय से। मॉनसून मुख्य रूप से मौसमी हवाओं का एक चक्र है, जो गर्मी और ठंड के बीच भूमि और महासागरों के तापमान में

0: रविवार दोपहर के 12:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान की रोचक, उपयोगी और नवीन जानकारियों से हम रूबरू होंगे। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यह हमें तर्क, खोज तथा नवाचार की दिशा में प्रेरित करता है। आइए इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं मॉनसून, मौसम विज्ञान और बदलता जलवायु स्वरूप विषय से। मॉनसून मुख्य रूप से मौसमी हवाओं का एक चक्र है जो गर्मी और ठंड के बीच भूमि और महासागरों के तापमान में अंतर के कारण दिशा बदलता है। वहीं बदलता जलवायु स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने और वैश्विक तापमान में वृद्धि का परिणाम है जो पिछले 30 से 100 वर्षों में मौसम के दीर्घकालिक औसत में आए बदलाव को दर्शाता है। वर्तमान में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून का पारंपरिक पैटर्न काफी अनिश्चित और खतरनाक हो गया है, जिनमें अतिवृष्ट और अनावृष्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसूनी हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कम समय में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके विपरीत लंबी अवधि तक सूखा भी पड़ता है। वर्षा के दिनों में कमी। अगर हम कुल बारिश के दिनों की बात करें तो इनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन उसी बारिश का अधिकांश हिस्सा कुछ ही दिनों में गिर जाता है। अनियमित शुरुआत और वापसी। मॉनसून के आने और जाने की तय तारीखें, जैसे कि माना जाता है कि जून से सितंबर बारिश का मौसम होता है, लेकिन अब ये अनिश्चित हो गई हैं। क्षेत्रीय बदलाव। भारत के कुछ हिस्सों जैसे उत्तर पूर्व में बारिश कम हो रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से अधिक बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक आज आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इन बादलों का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम हैं, जिनमें कुछ प्रमुख तकनीकें हैं, जैसे कि डॉपलर वेदर रडार। ये तूफानों, बादलों की स्थिति और बारिश की तीव्रता का रियल टाइम ट्रैक रखने में मदद करते हैं। वहीं उपग्रह अंतरिक्ष से समुद्र की सतह के तापमान और हवाओं की गति पे नजर रखने में मदद मिलती है। मौसम मॉडल। मौसम के तत्वों, जिनमें तापमान, दबाव, आर्द्रता शामिल हैं, के दीर्घकालिक डेटा का विश्लेषण करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाते हैं। तो अभी हमने जाना मॉनसून, मौसम विज्ञान और बदलता जलवायु स्वरूप के बारे में। अब हम बात करते हैं विज्ञान जगत में नई खोजें, नई तकनीकें और हमारा जीवन विषय पर। श्रोताओं, विज्ञान और नई तकनीक ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ये नई खोजें और आविष्कार न केवल हमारे काम को आसान बनाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और संचार जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाकर हमारा जीवन स्तर भी सुधार रहे हैं। अगर बात स्वास्थ्य और चिकित्सा जगत की करें तो जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गंभीर बीमारियों का जल्द पता लगाना व सटीक इलाज संभव हो पाया है। इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ी है और इंसानों की औसत उम्र में काफी इजाफा हुआ है। वहीं कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में सेंसर, ड्रोन और उपग्रहों की मदद से सटीक खेती की जा रही है। कम पानी और कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा दोनों मजबूत हो रही है। संचार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम घर बैठे कहीं भी कभी भी वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। शिक्षा और व्यापार में दूरियां खत्म हो गई हैं। वहीं ऊर्जा और पर्यावरण की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन के साथ इस कदर जुड़ चुकी है कि इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना असंभव सा लगता है। हमारे विकसित भारत 2047 के लिए अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी हो रहा है। इसके बारे में जानते हैं सिविल इंजीनियर शशि रंजन से।
1: विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास सबसे मजबूत और मुख्य आधार है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में

आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा, जल संसाधन, डिजिटल नेटवर्क और स्मार्ट शहर आर्थिक विकास की आधारशिला है। भारत सरकार ने भी विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में अवसंरचना विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी है। इस सपने को सच करने के लिए केवल ईंट और कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना काफ़ी नहीं है, इसके लिए निर्माण के तरीकों में आमूलचूल बदलाव और अत्याधुनिक तकनीकों यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश अनिवार्य है। आधुनिक तकनीकें न केवल निर्माण की गति को बढ़ाती हैं, बल्कि ढांचों को अधिक टिकाऊ, स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाती हैं। निर्माण में इस्तेमाल हो रही मुख्य आधुनिक तकनीकें जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के जरिए किसी भी प्रोजेक्ट जैसे पुल, टनल या इमारत का निर्माण शुरू होने से पहले किसी परियोजना का एक सटीक 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इससे डिजाइनिंग की गलतियां पहले ही पकड़ में आ जाती हैं और डिजाइन त्रुटियों में कमी, निर्माण में लागत में कमी, परियोजना का पूर्ण समय पर पूर्ण होना, बेहतर निर्णय क्षमता और बजट व समय में भारी बचत होती है। ड्रोन बड़े प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्रेसवे या रेलवे कॉरिडोर की मैपिंग, साइट सर्वे और काम की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन आधुनिक सर्वेक्षण एवं निगरानी का प्रभावी साधन बन चुके हैं। इसका उपयोग भूमि सर्वेक्षण, प्रगति की निगरानी, पुलों एवं ऊंची संरचनाओं का निरीक्षण, निर्माण सामग्री का आकलन में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब के जरिए एक भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। IoT विभिन्न उपकरणों और सेंसरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है। ये चीज़ें इंटरनेट के जरिए आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान करती हैं। इससे रोजमर्रा के उपकरणों को बिना इंसानी दखल के दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे सड़कों और पुलों में IoT सेंसर लगाए जा रहे हैं जो उनके स्ट्रक्चरल हेल्थ की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुल में कोई दरार या कमजोरी आती है तो सेंसर तुरंत अथॉरिटी को अलर्ट भेज देता है और इसके जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्माण उद्योग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना रही है। इसके उपयोग से जोखिम विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, संसाधनों का बेहतर उपयोग, मशीनों की भविष्यवाणी आधारित मरम्मत के लिए किया जा सकता है और इससे उत्पादकता में वृद्धि और परियोजना विलंबन में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक भौगोलिक डाटा के संग्रहण एवं विश्लेषण में सहायक है। इसके उपयोग से सड़क एवं रेल मार्ग योजना, भूमि अधिग्रहण, स्मार्ट सिटी विकास, पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है और बेहतर योजना निर्माण, सटीक स्थान चयन, परियोजना जोखिम में कमी का लाभ उठाया जा सकता है। देखें कि एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें प्री फैब्रिकेटेड प्री कास्ट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के तकनीक से पुलों के पिलर, गर्डर या मकानों के हिस्सों को साइट से दूर एक नियंत्रित फैक्ट्री में तैयार करते हैं और निर्माण स्थान पर लाकर सिर्फ असेंबल कर दिया जाता है। जैसे वंदे भारत के ट्रैक और नए मेट्रो प्रोजेक्ट में इस तकनीक से महीनों का काम हफ्तों में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा 3D कंक्रीट प्रिंटिंग, भारत में अब तकनीक के जरिए घरों का निर्माण शुरू हो चुका है। यह तकनीक कचरे को कम करती है, श्रम पर निर्भरता घटाती है, बेहद जटिल डिजाइनों को भी कुछ ही दिनों में तैयार कर देती है। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग निर्माण क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला रही है। इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन शहरी क्षेत्र में बिना ऊपर की यातायात को व्यवस्था को प्रभावित किए जमीन के नीचे तेजी से मेट्रो और सबवे टनल बनाने के लिए उन्नत और स्वचालित कंप्यूटर TBM का उपयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक और वेस्ट का उपयोग कचरा प्रबंधन को बुनियादी ढांचे से जोड़ते हुए सड़कों के निर्माण में सिंगल यूज प्लास्टिक, स्टील के कचरे जैसे स्टील स्लैग, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सड़कों को वाटरप्रूफ, अधिक

0: टिकाऊ और किफ़ायती भी बनाते हैं। ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में भी ऐसी तकनीकें अपनाई जा रही हैं जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के नेशनल ग्रिड में ट्रांसफ़र और स्टोर कर सकते हैं। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां देश का पूरा नक्शा और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जैसे गैस पाइपलाइन, फॉरेस्ट लैंड, रेलवे ट्रैक एक जगह पे मौजूद हैं। तकनीक के इस इस्तेमाल से प्रोजेक्ट की मंजूरी में लगने वाला समय महीनों से घटकर कुछ दिन में ही रह गया है। डिजिटल परियोजना प्रबंधन में प्रमुख सॉफ्टवेयर जैसे प्राइमावेरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ईआरपी सिस्टम, क्लाउड प्लेटफॉर्म के उपयोग से प्रोजेक्ट में बेहतर समन्वयन, लागत नियंत्रण, कार्य प्रगति की निगरानी की जा सकती है। अतः हमने देखा कि जहां पारंपरिक तरीकों से बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सालों लग जाते थे, वहीं इन आधुनिक तकनीकों की मदद से निर्माण स्तर की रफ्तार 3 गुना से 5 गुना तक बढ़ गई है, जो भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में आधुनिक तकनीकों पर आधारित अधोसंरचना निर्माण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। BIM, AI, IoT, GIS, ड्रोन, रोबोटिक्स, 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तथा स्मार्ट निर्माण सामग्री जैसी तकनीकें निर्माण क्षेत्र को अधिक दक्ष, सुरक्षित, टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल बना रही हैं। यदि भारत में इन आधुनिक तकनीकों का व्यापक रूप से अपनाया जाता है, तो वर्ष 2047 तक विश्व स्तरीय अधोसंरचना के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मजबूत अधोसंरचना ही विकसित भारत की सुदृढ़ नींव है और नई तकनीक का उपयोग करके विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: और अब एक जरूरी जानकारी। नशा मुक्ति भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना, उनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशे के शिकार लोगों के लिए उपचार व पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। यह अभियान त्रिआयामी यानी मांग में कमी, आपूर्ति नियंत्रण और चिकित्सा उपचार रणनीति पर काम करता है। इसमें स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, महिला मंडलों और युवाओं को मास्टर स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित करके जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। आप घर बैठे भी नशा मुक्त भारत अभियान ई प्रतिज्ञा के माध्यम से नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी शपथ ले सकते हैं। आप अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नशा मुक्ति मित्र पंजीकरण के माध्यम से स्वयं सेवक भी बन सकते हैं। यदि आपको या आपके किसी परिचित को नशे की लत से बाहर आने के लिए परामर्श या उपचार की आवश्यकता है, तो आप नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर 1-4446, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, 1-4446 पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिशन लाइफ, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली के लिए जागरूकता के बारे में। ये एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन लाइफ के तहत 7 मुख्य विषय और 75 पर्यावरण अनुकूल आदतें शामिल हैं, जो दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है। जैसे ऊर्जा की बचत, घर और कार्यालय में पारंपरिक बल्बों की जगह LED बल्ब ट्यूबलाइट का उपयोग करके, या फिर एयर कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री पर सेट करके, कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइट और कंप्यूटर बंद करके। पानी की बचत भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश करते समय या अपने दैनिक क्रियाकलाप करते समय नल को खुले ना छोड़ें, तथा घर में टपकते नलों और पाइपों की तुरंत मरम्मत करवाकर, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को ना कहकर, खरीदारी करते समय हमेशा जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें, पानी के लिए स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें, ई कचड़े का कम उपयोग और सही निपटान।

पुराने गैजेट्स को फेंकने के बजाय उन्हें ठीक कराकर दोबारा इस्तेमाल करें। फाइलों को पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की बजाय क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित रखें। टिकाऊ खाद्य प्रणाली अपनाना। अपने क्षेत्र में आसानी से मिलने वाले मौसमी फल और सब्जियों को आहार में शामिल करें, साथ ही बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाजों को अपनाएं। अपशिष्ट कचरा कम करें। गीले और सूखे कचड़े को हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालें। रसोई के कचड़े जिनमें छिलके, पत्तियां, इनसे घर पर ही जैविक खाद बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली। निजी वाहनों के बजाय साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और घर के बगीचे में ताजी सब्जियां उगाएं। तो इन छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन, छोटे छोटे विषयों में जागरूकता पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली के लिए बेहद आवश्यक है। तो इन्हें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और अब विज्ञान रत्न में हम जानेंगे निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला एक दूरदर्शी सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक थे, जिनके कार्यों ने आधुनिक दुनिया को बिजली उत्पादन, वायरलेस तकनीक और मोटर प्रणालियों की नींव दी। आपके सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में प्रत्यावर्ती धारा, टेस्ला कॉइल और रेडियो तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा वे रेडियो के शुरुआती विकास और वायरलेस तकनीक की अवधारणा के लिए भी जाने जाते हैं। आपका जन्म 10 जुलाई 1856 को हुआ। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में जन्मे और पले बढ़े टेस्ला ने 1870 के दशक में इंजीनियरिंग और भौतिकी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री प्राप्त नहीं की। इसके बाद 1880 के दशक की शुरुआत में आपने टेलीफोन और कॉन्टिनेंटल एडिसन में नए विद्युत ऊर्जा उद्योग में काम करते हुए व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। आप 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां आपको वहां की नागरिकता मिल गई। न्यूयॉर्क शहर में एडिसन मशीन वर्कर्स में कुछ समय काम करने के बाद आपने खुद का व्यवसाय शुरू किया। अपने विचारों को वित्त पोषित करने के लिए साझेदारों की मदद से टेस्ला से न्यूयॉर्क में प्रयोगशालाएं और कंपनियां स्थापित की, ताकि विभिन्न प्रकार के विद्युत और यांत्रिक उपकरण विकसित किए जा सके। 1910 और 1920 के दशक में कई आविष्कारों पर आपने प्रयोग किए, जिनमें आपको अलग अलग स्तर की सफलताएं मिली। अक्सर गुग्लियेमो मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन 1897 में टेस्ला ने वायरलेस ट्रांसमिशन के अपने प्रयोगों के आधार पर रेडियो ट्रांसमिशन तकनीक का पेटेंट हासिल किया था। टेस्ला की इंडक्शन मोटर आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मोटरों में से एक है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर काम करती है और आज भी कई घरेलू उपकरणों और औद्योगिक मशीनों में इसका प्रयोग होता है। टेस्ला ने फिलामेंट के बिना प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली बिजली का उपयोग किया। उन्होंने नियॉन लाइटों के शुरुआती डिजाइन और प्रदर्शन किए, जो आज भी विज्ञापन और सजावट के काम आती है। 1898 में आपने रेडियो तरंगों द्वारा संचालित दुनिया का पहला रिमोट कंट्रोल उपकरण पेश किया। यह रोबोटिक्स और आधुनिक रिमोट तकनीक की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। आपने बिना ब्लेड वाली टेस्ला टर्बाइन का भी आविष्कार किया, जो अत्यधिक कुशल थी। आपके द्वारा किए गए इन आविष्कारों ने विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करेंगे अशोक सेन की, जिनका जन्म 15 जुलाई 1956 को हुआ। अशोक सेन एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्हें स्टिंग थ्योरी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। वर्तमान में वे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस बैंगलोर में प्रोफेसर हैं। स्टिंग थ्योरी के माध्यम से आपने यह साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि सभी स्टिंग थ्योरीज असल में एक ही मूल सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं। वर्ष 2012 में भौतिकी के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक प्रतिष्ठित फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से आपको सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डिराक मेडल भी आपको मिल चुका है। और अब हम जानेंगे ग्रटफ्रिड लाइबनीज के बारे में। आप 17वीं सदी के

0: एक महान जर्मन बहुज्ञ थे जिन्हें स्वतंत्र रूप से कैलकुलस के आविष्कार और बाइनरी अंकगणित के विकास के लिए जाना जाता है। आपने आइजक न्यूटन से अलग कैलकुलस की खोज की थी, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार मानी जाने वाली बाइनरी प्रणाली जिसमें शून्य और एक का इस्तेमाल होता है के सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। विज्ञान और गणित के अलावा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी आपका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। आप तर्कशास्त्र, भौतिकी और राजनीति के भी विशेषज्ञ थे। श्रोताओं, आपको हम ग्रेटफ्रिड विलहेम लीबनीज के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। लीबनीज और आइजक न्यूटन दोनों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अवकल और समाकल गणित का आविष्कार किया था। इसे लेकर दोनों महान वैज्ञानिकों के बीच भारी विवाद भी हुआ था। आज के समय के सभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण जो कि शून्य और एक पर चलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कारक लीबनीज ही थे। ज्ञान की लगभग हर शाखा जिनमें दर्शन, गणित, भौतिकी, कानून, इतिहास, भाषा, विज्ञान, सभी में ये लगभग महारत रखते थे और विलक्षण प्रतिभा वाले वैज्ञानिक थे। जब लीबनीज केवल 6 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता अपनी पीछे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी छोड़ गए थे। एक छोटे बच्चे ने केवल 8 वर्ष की उम्र में बिना किसी शिक्षक की मदद के खुद ही लैटिन भाषा सीख ली थी और 12 साल की उम्र तक वे ग्रीक भी समझने लगे थे। लीबनीज ने एक ऐसे मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था जो केवल जोड़ और घटाव ही नहीं बल्कि गुणा, भाग और वर्गमूल भी निकाल सकता था। उनका प्रसिद्ध दार्शनिक विचार था कि हमारा यह ब्रह्मांड तमाम संभावित दुनियाओं में से सबसे बेहतरीन दुनिया है। और अब साइंस अपडेट, आइए जानते हैं विज्ञान जगत में हो रहे नवीनतम शोधों और आविष्कारों के बारे में।
1: भारत ने परमाणु ताप पर आधारित दुनिया की पहली हाइड्रोजन सुविधा शुरू की है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कहा है कि भारत ने परमाणु प्रक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा कालपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR में स्थित है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र का उपयोग किया जाता है। यह फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त होने वाली गर्मी का इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का लक्ष्य बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाना है। और अब बात करते हैं 10वीं की एक छात्रा की शानदार उड़ान के संबंध में। छत्तीसगढ़ की छात्रा का अंतरिक्ष मिशन शक्ति सैट के लिए चयन किया गया है। इस मिशन में 108 देशों के छात्र शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उपग्रह बनाने के लिए दिल्ली में सभी छात्र एकत्र होंगे। मिशन शक्ति सैट का एक वैश्विक स्टेम पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह तकनीक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश में हर साल मानसून के दौरान डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने क्लाइमेट नाम का एक नया मॉडल विकसित किया है। यह डेंगू फैलने के जोखिम को पहले ही बता सकता है जिससे समय रहते रोकथाम किए जा सकें। यह मॉडल कई कारकों का एक साथ विश्लेषण करता है। इसमें रोजाना का तापमान, वर्षा, नमी, भूमि उपयोग, आबादी का घनत्व, बस्तियों की स्थिति और मच्छरों के लिए अनुकूल वातावरण जैसे आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में डेंगू फैलने का जोखिम बढ़ रहा है। दरअसल डेंगू मुख्य रूप से एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। तापमान बढ़ने पर ये मच्छर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये मॉडल सभी हालात का आकलन करके डेंगू के खतरे से आगाह करता है। अक्सर डेंगू के मामले की रिपोर्ट आने में देरी होती है और कई बार सभी मामले दर्ज भी नहीं हो पाते। क्लाइमेड ऐसे क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर सकता है जहां संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ रही हो। इसके अनुमान से स्वास्थ्य विभाग समय रहते पहले ही फॉगिंग, मच्छर नियंत्रण, निगरानी और जागरूकता अभियान शुरू कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जल्द ही इस मॉडल का उपयोग देश के अनेक राज्यों, जिला शैक्षणिक परिसर या किसी भी स्थानीय क्षेत्र में किया जा सकता है जहां आवश्यक मौसम और अन्य संबंधित आंकड़े उपलब्ध हों। इससे डेंगू की रोकथाम के लिए अधिक सटीक और वैज्ञानिक रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है।

अंत में सवाल हमारे जवाब आपके। तो आज के दो सवाल पूछने से पहले हम आपको बताएंगे पिछले अंक में पूछे गए दोनों प्रश्नों के सही जवाब। हमारा पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते हैं? और इसका सही उत्तर है, प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। और दूसरा प्रश्न था, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रोताओं, विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। और अब आज के दो प्रश्न बहुत ही ध्यान से सुने, नोट भी कर लें। हमारा पहला प्रश्न, ग्रटफ्रिड लाइबनीज की मुख्य खोज क्या है? सवाल फिर से दोहरा रही हूँ, ग्रटफ्रिड लाइबनीज की मुख्य खोज क्या है? और आज का दूसरा प्रश्न है, अशोक सेन अपनी कौन सी थ्योरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोहरा रही हूँ सवाल को, अशोक सेन अपनी कौन सी थ्योरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? श्रोताओं, इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब आप चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या फिर हमारे ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। तो आप नोट करें पत्राचार का पता। हमारा पता है, कार्यक्रम वैज्ञानिकी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, पटना 800001। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और चलने से पहले एक आवश्यक जानकारी, श्रोताओं किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस

0: पूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी, डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: केऊ नाम धरी,
1: केऊ नाम धरी,
2: डाकिबी तुमको,
1: डाकिबी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे देखाओ ताहारे।
2: आलोक तुमको,
1: आलोक तुमको,
2: नपारे देखाई,
1: नपारे देखाई,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
1: तुमे जे देखाओ ताहारे।
2: तुमे जे बेढ़ी चो,
1: तुमे जे बेढ़ी चो, कोटि विश्वर,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
1: सबुरी भीतरे बाहरे।
2: तुमे जे बेढ़ी चो,
1: तुमे जे बेढ़ी चो,
2: कोटि विश्वर,
1: कोटि विश्वर,

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है संगम। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत का शंकर जयकिशन।

लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को फिल्म का नाम है राम और श्याम। गीतकार है शकील वधायनी, संगीतकार नौशाद।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है और आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में

0: महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान का पूरा जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित था। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले दिन कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन देही 2025 1 जुलाई से कामयाबी के साथ नाफिज हो गया है। वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुद से इस मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज़्यादा की मुद्दत सर्फ हो गई थी, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे मुल्क में महज एक दिन में नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि विकसित भारत के विज़न को तेज़ी से आगे

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से।

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे

0: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिने दिने वो मारे ढाला पे है, पानी में घूड़ा ढेला।
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
6: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
7: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना लेने चला। सावन में
5: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर

0: शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़ा, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म मिलन में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार और मन्ना डे को, फिल्म का नाम है शोले। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

लीजिए सुनिए मुकेश को, फिल्म का नाम है धर्म करम। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी के पसंद पर सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म शिकार।

जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहू बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचनगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मन चाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किन की फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
2: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
3: कौन रानी रावती?
2: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
2: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की साथ पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज की साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
2: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज,

0: अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
1: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
2: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
1: परंतु देवी,
2: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
1: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
2: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठड़ी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गए और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुनिए। मैं नाक को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय पूछा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझा देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा?
5: मर गया महाराज, मर गया। मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर के सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे माफी कर लो, मुझे दबोच लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: मेरा तो अन्न करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाथ मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
2: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
2: देव की कैसी आ गया,
5: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
2: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा जड़ी हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा दे।

0: David e Jesse Labbia.
1: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन?
1: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
1: ओह,
2: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
3: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो। सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीप भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
0: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
2: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
1: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रो उठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
1: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रो उठ गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती हैं। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
1: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न में भी कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकुला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरन चले जा रहा है। आ आ, उसे भगाने चल
0: चले।
5: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।

0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
1: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
1: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
1: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ। ये
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये कैसा है? बकुलावलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
4: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुलावली का, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
8: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे प्रश्न देता?
8: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
9: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
10: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर

धर्मराज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न हाथी

विदिशापति महाराज अग्नि में प्रवर्वनुत।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की सात पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आगे देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊ का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
2: हाँ वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
5: जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है।

0: दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया आप भी तो।
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
0: अरे शेर क्या हुआ, क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
3: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
0: वही हुआ ना जिसका भय था, डाकुओं ने खेल दिया है।
1: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लहूलुहान होकर इधर आ रहे हैं, आए डाकुओं ने भैया को अकेले ही खेल लिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़ो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी यह इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।
5: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
4: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
5: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनु ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
1: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
5: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं।

0: कल जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
1: जयसेन
2: आज्ञा दे।
1: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, वे कोई विघ्न न डाले।
2: देवी की कैसी आज्ञा।
1: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
3: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
4: श्रोताओं, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: श्रोताओ नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट? तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलेन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग लग जाता है
2: कि एक

0: तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8, 10, 12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज, जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे, तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं, तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो, वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और

0: उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे। हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: ओ
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी कामा कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम? हाँ, तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी।
1: जनाना रोल
0: हाँ,
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है, अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज तक
0: बहुत
1: उसकी
0: ज्यादा।
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ,
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस, ऑफ कोर्स। हुकूमत है, तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये
1: बिल्कुल।
0: काफी सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो पूरा
0: हाँ हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो? तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों? तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग,
1: हाँ
0: राइट,
1: वो,
0: डीबीडीएन या काला नाग, ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर।

0: नाग हूं मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ,
1: अच्छा
0: और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप रे
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि एक विलेनिश रोल
0: रोल
1: होता है
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है।
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने
1: उस दौर की एक और
0: की।
1: फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
0: ओ
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट।
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट।
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में,
0: में
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही। और उस
1: बहुत ही
0: समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था,
1: कोर्स
0: कलाकार
1: बिल्कुल
0: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसे जा रहे हो, आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
0: एग्जैक्टली
1: बच्चन के सामने
0: सामने।
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो
0: तरह से।
1: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ।
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो।

0: सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अब मैं जितनी
1: अच्छा
0: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो करेक्ट
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से,
1: अच्छा
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो, वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग-अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे,
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे। पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।

0: लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे,
1: सख्त मनाही.
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है, वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है.

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंजलि।
1: और मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी। नमस्ते पटना, आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खूबसूरत और हसीन सफर में।
0: सच में शिवांगी, आज मैं दोपहर में स्टूडियो आ रही थी ना, बाप रे बाप, सूरज दादा इतने गुस्से में थे, इतनी कड़क धूप थी कि क्या बताऊं।
1: ओहो अंजलि, बिल्कुल दोपहर की धूप सच में बहुत ही इरिटेटिंग होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप सब ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब एकदम मजे में होंगे। वैसे इस कड़कड़ाती गर्मी में हमारी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, खुद को हाइड्रेट रखना मत भूलिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा शिवांगी, ढेर सारा पानी, आम पन्ना और नींबू पानी पीते रहिए। और देखिए ना, अच्छी बात तो ये है कि अब जब हमारा ये कार्यक्रम हमारे दोस्तों तक पहुंच रहा है तो शाम सुहाना हो गया है। सूरज दादा अब धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहे हैं और धूप भी थोड़ी राहत दे रही है।
1: हाँ, और खिड़की के बाहर देखो तो कितनी कूल हवा चल रही है। दोस्तों, भले ही गर्मी बहुत है पर इस ठंडी हवा को देखकर लग रहा है कि शायद आज रात या फिर कल थोड़ी बारिश की उम्मीद हम सब रख सकते हैं।
0: आहा, बारिश का नाम लेते ही दिल कितना खुश हो जाता है ना शिवांगी।
1: बिल्कुल
0: वैसे आज मौसम की इस प्यारी सी गपशप के साथ साथ ये वाणी की पोटली में हमारे दोस्तों के लिए और क्या-क्या खास है, इसका भी जरा हिंट दे दीजिए।
1: दोस्तों, आज के इस कड़क और एनर्जेटिक सफर में सबसे पहले

0: पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बेहद प्यारी प्रेरक पंक्ति, यानी एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट जो आपकी शाम को एक नई एनर्जी से भर देगा।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम आपको सैर कराएंगे अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत ड्री फेस्टिवल की, और साथ ही बात करेंगे नेशनल वर्कोहोलिक्स डे के बारे में, यानी उन लोगों की का दिन जो काम के आगे सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे कि हमारी शिवांगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साहित्य और कविता के दीवाने, उनके लिए हमारी खास पेशकश सुरंजली में आज हम एक खूबसूरत कविता पाठ भी शामिल करने जा रहे हैं जो सीधे आपके दिल को छुएगा। साथ ही युवाओं के लिए जॉब अपडेट्स और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी कतार में हैं।
1: वाओ, यानी आज की शाम पूरी तरह से पैक्ड है मनोरंजन, कविता और ज्ञान से। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, अपने रेडियो सेट से बिल्कुल चिपक के रहिएगा।
0: चलिए बिना देर किए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस बेहद मजेदार गाने के साथ।

0: शाम पूरी तरह से पैक्ड है मनोरंजन, कविता और ज्ञान से। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, अपने रेडियो सेट से बिल्कुल चिपक के रहिएगा।
1: चलिए बिना देर किए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस बेहद मजेदार गाने के साथ,
0: जो कि है फिल्म जबड़िया जोड़ी से।
2: लचके जब कमरिया हसारा।

0: अनिवार्य है।
1: उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है दोस्तों, विश्वास और शक्ति दोनों साथ होने चाहिए। अक्सर हमारे युवा दोस्त खुद पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन उस भरोसे को पूरा करने के लिए जो मेहनत और ईमानदारी चाहिए होती है, उसमें थोड़े ढीले पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा शिवांगी। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं ये काम कर सकता हूँ काफी नहीं है। उसके लिए अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा फोकस उस काम में झोंक देना पड़ता है। जब आपका अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत एक साथ मिलती है, तभी सफलता मिलती है।
1: यू आर सो राइट अंजलि। लाइफ में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना हो दोस्तों, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई बड़ा फैसला लेना हो, अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसमें जुड़ जाते हैं, तो हमें अपना मुकाम जरूर हासिल होता है। इसी थॉट के साथ
0: अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कजरा रे।

0: इस मजेदार से गाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे आज के सेगमेंट प्रेरक पंक्ति की,
1: यानी वो थॉट जो हमारी शाम को एक नई पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। दोस्तों अंजलि, आज हमारे युवाओं के लिए किसका थॉट लेकर आई हैं आप?
0: शिवांगी, आज हमारे पास भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बेहद दमदार विचार है जो हमारे हर युवा दोस्त को बहुत पसंद आएगा।
1: सरदार पटेल जी, उनका नाम सुनते ही माइंड में एक अलग ही इमेज बन जाती है जो होता है डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ की। तो क्या कहा था उन्होंने?
0: सरदार पटेल जी ने कहा था कि शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के

0: आप सुन रहे थे लंदन ड्रीम फिल्म से ये गाना। इस गाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज आपको सीधे ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के सैर पर।
1: अरे वाह अंजलि, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनते ही वहाँ के पहाड़, खूबसूरत मौसम और हरी भरी वादियाँ आंखों के सामने आ जाती हैं। सच में आज तो मजा ही आ जाएगा।
0: मौसम तो बढ़िया है ही शिवांगी, लेकिन आज यानी 5 जुलाई को वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा और खास त्योहार भी है।
1: अच्छा, ऐसा कौन सा त्योहार है आज, जरा हमारे साथ साथ श्रोताओं को भी बताइए।
0: दोस्तों आज वहाँ मनाया जा रहा है ड्री फेस्टिवल। क्या आप में से किसी ने इसके बारे में पहले सुना है?
1: ओहो, ड्री फेस्टिवल, अंजलि यानी वो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे प्रसिद्ध और सुंदर जीरो वैली है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है ना?
0: बिल्कुल सही कहा शिवांगी, और इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि इसे वहाँ की अपातानी जनजाति के लोग मनाते हैं। ये जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरे भारत में जानी जाती है।
1: अच्छा अंजलि, हमारे जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें भारत की संस्कृतियों में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये एक कृषि उत्सव यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है।
0: हाँ शिवांगी, इसका पूरा संबंध खेती बाड़ी से है। असल में जब खेतों में धान के पौधे लगा दिए जाते हैं तब लोग ये त्योहार मनाते हैं। इसके पीछे बेहद खूबसूरत सोच ये है कि लोग प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसलों की को कीट पतंगों, बीमारियों और अकाल से बचाया जा सके।
1: कितनी खूबसूरत सोच है ना दोस्तों, यानी सीधे सीधे प्रकृति का शुक्रिया अदा करना और उससे आशीर्वाद मांगना। वैसे अंजलि, इस त्योहार में पूजा किसकी होती है?
0: शिवांगी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस उत्सव के दौरान मुख्य रूप से 4 देवताओं की पूजा होती है, तामू, मेदी, नियोला और कलो। ये चारों देवता फसलों की रक्षा करते हैं और समाज में सुख शांति लाते हैं।
1: वाओ दोस्तों, गौर फरमाइएगा, तामू, मेदी, न्यूलो और कलो, इन नामों को आप सब भी डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत काम के फैक्ट्स हैं। और अंजलि, पूजा पाठ के बाद तो वहाँ का माहौल और भी रंगीन हो जाता होगा।
0: अरे बिल्कुल शिवांगी, इस दिन सभी लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनते हैं। वहाँ की महिलाएं एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक ग्रुप डांस करती हैं, जैसे हम कहते हैं ना डामिंडा कहा जाता है उसे।
1: ओह वाओ,
0: और इस डांस के जरिए वो अपनी खुशियां जाहिर करती हैं।
1: डामिंडा डांस, वाह, इसका म्यूजिक और इसकी वाइब सोच कर ही मन खुश हो गया। और सुना है खाने पीने का भी बड़ा खास इंतजाम होता है, जरा वो भी बताइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, त्योहार हो और पकवान ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इस दिन मेहमानों को बड़े प्यार से घर के बने चावल की वाइन यानी राइस बियर और बहुत सारे स्थानीय व्यंजन परोसे जाते हैं।
1: क्या बात है दोस्तों, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट की ये कल्चरल डाइवर्सिटी वाकई लाजवाब है। इंसान और प्रकृति का ऐसा तालमेल हमें बहुत कुछ सिखाता है।
0: बिल्कुल सही कहा शिवांगी। तो दोस्तों ये थी अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत ड्री फेस्टिवल। एक छोटी सी झलक में हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे।
1: और अब हम त्योहार और खुशियों की इतनी सारी बातें की हैं, तो चलिए आपको सुनाते हैं एक मजेदार ट्रैक।

0: जिसे कहते हैं नेशनल वर्कोहॉलिक डे।
1: वर्कोहॉलिक्स। दोस्तों, क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हैं? शिवांगी, एक काम कीजिए, आप हमारे लिसनर्स को बताइए, आसान शब्दों में इस शब्द का मतलब क्या होता है?
0: बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसे कुछ लोगों को खाना का बहुत शौक होता है तो उन्हें हम फूडी कहते हैं, वैसे ही जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम करने की धुन सवार होती है, जो 2400 घंटे बस काम के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें हम वर्कोहॉलिक कहते हैं।
1: यानी जो अपनी पर्सनल लाइफ, भूख प्यास सब भूल कर बस काम में डूबे रहते हैं। वैसे दोस्तों, आज का ये दिन ऐसे लोगों को काम से रोकने के लिए नहीं, लाइफ में एक बैलेंस यानी संतुलन बनाने की याद दिलाने के लिए है।
0: बिल्कुल सही कहा अंजलि। आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में हर युवा बस भाग रहा है, टारगेट पूरा करना है या फिर करियर बनाना है, और इसी चक्कर में लोग देर रात तक काम करते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और साथ ही फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है।
1: हाँ शिवांगी, और कई बार तो लोग इसे बड़े गर्व से कहते हैं कि आई एम अ वर्कोहॉलिक, लेकिन दोस्तों, जरूरत से ज्यादा काम कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का स्ट्रेस है।
0: यू आर राइट अंजलि, काम करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अपने सपनों के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन खुद को बर्नआउट कर देना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए इस दिन की शुरुआत की गई थी ताकि लोग थोड़ा रुके, एक गहरी सांस लें और सोचें कि क्या वे अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हैं।
1: तो दोस्तों, आज के दिन का पर्पस यानी उद्देश्य ही यही है कि वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताए और अपने दोस्तों से मिले या फिर बस आराम करें।
0: तो दोस्तों, जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आप भी अब भी अपने ऑफिस का काम लेकर घर आते हैं तो याद रखिए, ये गलत बात है। संडे को भी आप खुद के साथ वक्त बिताइए या फिर अपने परिवार के साथ।
1: सही बात है शिवांगी, और क्योंकि काम तो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, लेकिन ये खूबसूरत पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अपनी हॉबीज के लिए समय निकालें और संगीत को सुनिए या फिर थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आज इस खास दिन पर हम सब ये वादा करते हैं कि मेहनत तो पूरी करेंगे, लेकिन अपनी सेहत और अपनी खुशियों की कीमत पर बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल, क्या बात है। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ अब समय हो चला है हमें हमारे अगले ट्रैक का।

0: आप सुन रहे थे बंटी बबली फिल्म से ये गाना। इस मजेदार गाने के बाद अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो आज के समय में हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल अंजलि, और आज यानी 5 जुलाई को एक बहुत ही अनोखा दिन मनाया जाता है।

निशान हे फ्रंटियर पे तेरे आया है जवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान। ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं अंजलि। दोस्तों अब बारी है हमारे संडे स्पेशल सेगमेंट यानी स्वरांजलि का।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त शिवांगी। आप सभी को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने। संडे का दिन हो, युवानी का मंच हो और सुरांजलि का साथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल शिवांगी, और आज का ये सेगमेंट बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे इस संगीतमय और साहित्यिक सफर में गूंजेगी एक बेहद ही खूबसूरत कविता।
1: अंजलि, कविता का नाम सुनते ही दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। आज हमारे श्रोता किस युवा कवि की रचना का लुत्फ उठाने वाले हैं, जरा हमें बताइए।
0: शिवांगी, आज हमारे इस मंच पे गूंजेगी युवा कवि स्वर्ग सुमन कुमार की कलम से निकले वो शब्द जो सीधे दिल को छू लेते हैं।
1: क्या बात है! तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, थोड़े सुकून से बैठिए और महसूस कीजिए शब्दों के इस जादू को। चलिए शुरू करते हैं कवि स्वर्ग सुमन कुमार का ये बेहद ही खूबसूरत कविता पाठ।
2: नमस्कार आप सभी श्रोताओं का, मैं स्वर्ग सुमन कुमार आज आकाशवाणी पटना से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्वरांजलि के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम के तहत मैं अपनी कविता हुंकार पढ़ूंगा और यह जो काव्य पाठ होगा, दोस्तों मैं पहले इस कविता का जो शीर्षक है हुंकार, उस शीर्षक को लेकर के मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। यह कविता मुख्यतः युवाओं को समर्पित है। मैं खुद एक युवा हूं और जैसा कि आप सभी श्रोताओं को यह विदित है कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा मतलब ना ही उम्र का वैसा कोई पैमाना। युवाओं की परिभाषा यूं तो सभी लोगों ने अलग-अलग स्तर पे दी है, लेकिन जो उम्र के स्तर पे जो परिभाषा दी गई है उससे इतर जो हमारी परिभाषा होगी वह अलग होगी। इस कविता के माध्यम से मैं बताऊंगा कि युवा कौन है, युवा मन कैसा होना चाहिए, युवा जो है सो किस किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकता है, क्या उसके अंदर में जो सो शक्ति समाहित है, उन तमाम चीजों को लेकर के आज यह कविता मेरी आपके सामने प्रस्तुत होगी। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के पास में आधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, एआई हो सकता है, चीन के पास में नवीन टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम भारतवासी के पास में युवा शक्ति है और युवाओं के पास में वह शक्ति है जो हजारों टेक्नोलॉजी, हजारों एआई बना सकते हैं और निजात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे पास में समृद्धि युवा की समृद्धि है और हमें बस उस युवा को एक डायरेक्शन दिखाना, एक दिशा दिखाने की जरूरत है जिससे कि वह युवा अपने लक्ष्य की तरफ और अपने देश की उन्नति की तरफ आगे बढ़ सके।

तो कुछ इन्हीं भावों को लेकर के मेरी कविता समर्पित है हुंकार। मैं कविता काव्य पाठ शुरू करने से पहले छोटी सी चार पंक्ति अपने द्वारा रचित में पढ़ूंगा कि कब कहता हूँ कि मुझे खैरात दे दीजिए, कब कहता हूँ कि मुझे खैरात दे दीजिए, मेरी हर कोशिशें आप देख लीजिए, हम मुफ्त में नहीं मांगते सुबह की रोशनी, हम मुफ्त में नहीं मांगते सुबह की रोशनी, बस मुझे मेरी रातों का हिसाब दे दीजिए, बस मुझे मेरी रातों का हिसाब दे दीजिए। वास्तव में दोस्तों, हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे कि हम कह सकें कि हाँ, हमारी जो सामर्थ्य शक्ति थी, मैंने उसका पूर्ण स्वरूप को जो है सो सिद्ध किया और दिखाया और सिद्धि को प्राप्त किया। सामर्थ्य शक्ति से सिद्धि की जो यात्रा है वह युवा की यात्रा है। मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा। बीत गए सोने के पल, अब जागो यारों सुबह हुई, बीत गए सोने के पल, अब जागो यारों सुबह हुई, इस कर्म वेदी की बलि वेदी से ज्वाला फिर से प्रकट हुई, इस कर्म वेदी की बलि वेदी से ज्वाला फिर से प्रकट हुई, बहुत हुआ आलाप रुदन। मैं कहता हूँ कि बहुत आलाप रुदन हो चुका है, बहुत हमने जो है सो रो लिए, हमने समय पे आंसू बहा लिए, इतिहास गढ़ने का समय था, फिर भी हमने जो है सो अपने अतीत को देख करके कि हम पीछे नहीं कर पाए और वर्तमान को भी हमने खराब कर लिए, इसी भी मैं कहता हूँ कि बहुत हुआ आलाप रुदन। गत समय भाग्य पर पछताना, बीती क्षोभ निराशाओं में आत्मग्लानि से भर जाना, माना विकट समय है ये, माना विकट समय है ये, तुम उलझे हो प्रतिकूल हुए, सूझ रहा ना पथ तुझको, हर पथ अंधियारे से है पटे, हर पथ अंधियारे से है पटे। आज वास्तव में विकट समय है, कुछ कोई पथ न सूझ रहा हो, युवा हताश हैं, युवा परेशान हैं, युवा मन जो है छोटी छोटी बातों में अपने आप को परेशान मानता है, अपने आप को हताश मानता है, तो ये चीज़ें जो है स्वास्थ्य युवा में देखने को मिलती है। लेकिन अगली जो पंक्ति मेरी कविता की है वह किस रूप में युवा को जागृत करती है कि हताशा है, ये वास्तविकता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हताशा से निकलने की जो यात्रा है वह अगली पंक्ति है कि सिंचित है खूनों से पथ, सिंचित है खूनों से पथ, गए कितने वीर सिपाही के, जो बैठ उजाले को झांके, यह राह नहीं उस राही के, यह राह नहीं उस राही के, उठो एक हुंकार लिए, उठो एक हुंकार लिए, हर मंडल तब गुंजित होगा, कहाँ शांत रश्मे हो तुम, यहाँ भुजा में बल भरना होगा, यहाँ भुजा में बल भरना होगा, अभिमन्यु साजो तेज लिए। मैं कहता हूँ कि हताशा है लेकिन यहाँ पे भुजा में बल भरने की जरूरत है, और अगली पंक्ति है कि अभिमन्यु साजो तेज लिए, क्योंकि हमारी जो धरती है दोस्तों वह गीता की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, हमने जीत और हार से पहले ज्ञान को जाना है, हमने जीत हार की परिपाटी तो दूसरी है, हमने पहले ज्ञान को जाना है, पहले ज्ञान की प्राप्ति की है, और जीत हार तो एक अलग पहलू है, हमने ज्ञान की भूमि से हमने पहले ज्ञान की प्राप्ति की है। तो मैं कहता हूँ कि अभिमन्यु सा जो तेज लिए, रण में रक्त बहाता है, जीत हार की परिपाटी से वह ऊपर उठ जाता है, वह ऊपर उठ जाता है, यत्न करो ऐ धीर पुरुष, यत्न करो ऐ धीर पुरुष, कायर भी बस जी लेते हैं, जो कर्म पथ पर खप जाता है वही वीर कहलाता है, जो कर्म पथ पर खप जाता है वही वीर कहलाता है, काल जयी इतिहास तेरा। मैं कहता हूं कि जो इतिहास है हम युवा का वह कालजयी इतिहास रहा है, हमारे यहाँ ज्ञान से लेकर के और विज्ञान तक हर क्षेत्र में जो है हमने उन्नति प्राप्त की, और हमारा इतिहास इस रूप में रहा है कि विवेकानंद जैसे ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने जो है धर्म की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा पूरे विश्व तक पहुंचाई है, हमारे यहाँ बलिदानी में भगत सिंह जैसे वीर हुए जिन्होंने आत्म बलिदान को दे करके और युवा के सामने यह पेश की कि अगर हम युवा अपने आत्मीय शक्ति को पहचान ले तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, सारी सामर्थ्य मेरे भीतर में है। तो मैं अगली पंक्ति में कहता हूँ, कालजयी इतिहास तेरा, कालजयी इतिहास तेरा, जिसके रज से तुम जन्म लिए, यह धरती शस्त्र शास्त्र की है, जिसने अशोक और बुद्ध दिए, यह धरती शस्त्र शास्त्र की है, जिसने अशोक और बुद्ध दिए, उठो समय झकझोर रहा। मैं कहता हूं कि अब उठने की जरूरत है, हम बहुत सो लिए, बहुत आलाप रुदन हो गया, उठो समय झकझोर रहा और लिखो स्वयं अपनी गाथा, क्या कोई तुझको रोकेगा, अरे क्या कोई तुझको रोकेगा, तुझे राह बनाने है आता, तुझे राह बनाने है आता, तुझे राह बनाने है आता। वास्तव में दोस्तों, आज हमें उठने की जरूरत है।

0: आज हमें फिर से नवीन जीवनी शक्ति को अपने भीतर भरने की जरूरत है। और नवीन शक्ति को जब हम अपने भीतर में आत्मसात करते हैं तो एक नवीन ऊर्जा हमारे नवीन भविष्य को गढ़ता है। कुछ इसी भाव को लेकर के हमारी कविता समर्पित थी आप लोगों के लिए, हुंकार। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको यह कविता अच्छी लगी होगी और आप अपना मत जरूर प्रकट करें। और मैं एक और चलते चलते मैं एक चार पंक्ति जो मेरे द्वारा ही स्वरचित है, मैं कहता हूँ कि औरों ने माना होगा, मैं कहता हूं कि औरों ने माना होगा सरोवर को दरिया। चार पंक्ति मेरी है कि औरों ने माना होगा सरोवर को दरिया, हमने तो समंदर भी हथेली से पिया है। औरों ने माना होगा समंदर को दरिया, हमने तो समंदर भी हथेली से पिया है। हमारे यहाँ अगस्त ऋषि जैसे महान ऋषि हुए जिन्होंने समंदर को अपने हाथों से पी लिया था, तो ऐसे ऋषि हमारे यहाँ हो चुके हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि औरों ने माना होगा सरोवर को दरिया, हमने तो समंदर भी हाथों से पिया है। हमारे हौसलों को मत टटोलना है दुनिया वालों, हमारे हौसलों को मत टटोलना है दुनिया वालों, हमने तो हाथों से पर्वत काट कर उसमें राह किया है। हमने तो हाथों से पर्वत काटकर उसमें राह किया है। दोस्तों आज ये कविता डेडिकेटेड था दशरथ मांझी को, जैसा कि आप समझ चुके होंगे। और वास्तव में युवा मन यही है। युवा की परिभाषा एक उम्र में हम दे सकते हैं, लेकिन युवा मन की परिभाषा दोस्तों आज तक नहीं बनी जो दी जाए। मैंने अपनी कविता हुंकार पढ़ी और उस हुंकार में मैंने युवा मन को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की कि युवा कोई उम्र से बंधा हुआ नहीं है। जो युवा मन अंदर से जो है वह गर्वित हो, आत्मगर्वित हो, वही युवा मन है। वीर कुंवर सिंह वह 80 वर्ष पश्चात उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों के छक्का छुड़ा दिए, तो वह युवा मन जिसने 80 की उम्र में भी अंग्रेजों को दिखा दिया कि हमारी जीवनी शक्ति, सामर्थ्य शक्ति, हमारे अंदर आत्मबल शक्ति कितनी है। तो जो व्यक्ति आत्मबल से भरा हो, दशरथ मांझी जैसे लोग जो कि हमारे बिहार से आते हैं और पूरे विश्व में उनका डंका बजा, तो ऐसे लोग जिन्होंने पूरे विश्व को जो है सो सिखाया है कि युवा मन कौन है, युवा मन क्या है। मैं कहता हूँ इसलिए कि हमारा जो मन है वह आत्मविश्वास से अगर भरा रहे वही युवा मन है। चाहे उम्र की कोई भी सीमा हो, चाहे उम्र कोई भी हो, नंबर कुछ भी हो, लेकिन जो मन से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ मन है वही युवा मन है। मैं यही कहता हूँ और आपको काव्य पाठ मैंने समर्पित की है। और आज के अंक में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।
1: इस कविता ने तो जैसे समाई बांध दिया हो दोस्तों, लेकिन युवानी का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अच्छी बातों के साथ अच्छे गानों का होना भी उतना ही जरूरी है।
2: सही कहा शिवांगी, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुरु के इस सफर के बाद अब वक्त हो चला है हमारे अगले और बेहद जरूरी सेगमेंट का, यानी जॉब अपडेट्स।
1: कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
0: दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL अप्रेंटिसशिप के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट www.bfsissc.com से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दूसरी वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की, जिसके लिए 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है।
0: इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गाना।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज एक ऐसी खबर आई है जिससे हमारा पूरा कला जगत और पूरा देश जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल अंजलि, आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की वो महान आवाज नहीं रही जिसने पूरी दुनिया में भारत की लोक कला का परचम लहराया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई जी की।
0: उनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। वे भारत की एक बेहद लोकप्रिय लोक कलाकार थीं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नाट्य नृत्य पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई।
1: महाभारत के प्रसंगों को अपनी जीवन कला से जन-जन तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अंजलि, क्या आप जानती हैं कि तीजन बाई जी की कभी स्कूल नहीं गई थी? उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था दोस्तों। वे सिर्फ अपना सिग्नेचर करना जानती थी, लेकिन उन्हें पूरी महाभारत जुबानी याद थी। उन्होंने मात्र 13

0: वर्ष की आयु में अपना पहला सार्वजनिक मंच प्रदर्शन किया था।
1: वाकई अद्भुत। और वे पंडवानी की कपालिक शैली की कलाकार थीं, जिसमें कलाकार खड़े होकर हाथ में तंबूरा लेकर अभिनय और नृत्य करते हुए पूरी कहानी सुनाते हैं। इस दौर में इस शैली को केवल पुरुष का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मंच पर उनका तंबूरा कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का धनुष बन जाता था।
0: बिल्कुल, उनकी इस अद्भुत कला के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया, 2003 में पद्म भूषण और फिर साल 2019 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, उनकी कला, उनकी आवाज और उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी।
0: आकाशवाणी परिवार की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि, शत शत
1: शत
0: नमन।
1: नमन।
0: दोस्तों, तिजन बाई जी की इन यादों के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सफर की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, धुरंधर फिल्म से इस गाने के साथ अब वक्त हो चला है हमसे हमारा आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये संडे स्पेशल सफर आपको पसंद आया होगा। और चलते चलते दिल को छू लेने वाली दो लाइनें आपके नाम। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ अपनों जैसा इस दुनिया में अनमोल नहीं होता।
1: क्या बात है अंजलि, खूब बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। दोस्तों, कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आपके फीडबैक और सजेशंस का हमें बेहद इंतजार रहता है। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी पता है feedbackairpatna@gmail.com।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपका हर एक फीडबैक, हर एक सजेशन हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए आपके सभी मेल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब आप इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त अंजलि और अपनी शिवांगी को, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इसी के साथ अब तब तक के लिए स्वस्थ
1: स्वस्थ
0: रहिए,
1: रहिए,
0: मुस्कुराते
1: मुस्कुराते
0: रहिए
1: रहिए
0: और
1: और
0: सुनते
1: सुनते
0: रहिए
1: रहिए आकाशवाणी
0: आकाशवाणी पटना।
1: पटना।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आज भारतीमे एकटा कथा सुनब, हम एसगरी छी। कथा सुनौती प्रेमलता मिश्र प्रेम, संगहि गजेन्द्र महाराजसँ किछु गीत सुनब, मुदा आउ ताहि सबसँ पहिने किछु गप कऽ लै छी। श्रोता, बोन वा जंगल, धरती धरती पर रहनिहार समुदायक लेल आ अर्थव्यवस्थाक लेल अमूल्य निधि थिक। वन जलवायु के संतुलित रखैत अछि, जल चक्र के बनौने रखैत अछि, प्राकृतिक आपदा सँ बचबैत अछि, जैव विविधता के पोषण दैत अछि। कहबाक मतलब ई जे समस्त जीव जंतु जंगले पर निर्भर करैत अछि। मुदा श्रोता, बदलैत समयक संग मनुखक उपभोगवादी प्रवृत्ति आ बढ़ैत जनसंख्या के कारण सँ जंगलक एतबा दोहन भऽ गेल अछि जे संपूर्ण धरती परक जीव के लेल खतरा बढ़ि गेल अछि। तापमान बढ़बाक क्रम आ पीबय वाला जलक अलावे समस्त पर्यावरण पर संकट सँ बचबाक मुख्य उपाय थिक वन आ जंगल। ई तखन संभव होयत जखन बेसी से बेसी गाछ लगाएल जाएत, माने वृक्षारोपण होयत। श्रोता, अपन देश में वन क्षेत्र बढ़य आ भविष्य में आबय वाला पीढ़ी के एकर लाभ भेटित रहे, एहि कारण से वृक्षारोपण वाला एकटा महोत्सव सब वर्ष 1 जुलाई से लऽ कऽ 7 जुलाई धरि मनाओल जाइत अछि। एकर नाम थिक वन महोत्सव। एहि महोत्सव के मुख्य उद्देश्य थिक वृक्षारोपण के बढ़ावा देब। ई महोत्सव सामाजिक जिम्मेवारीक भावना बढ़बैत अछि, संगहि पर्यावरणक देखभालक लेल लोक के सेहो प्रोत्साहित करैत अछि। श्रोता, आप गप करब दू गोट महापुरुषक, बाबू जगजीवन राम आ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीक। ई दुनू व्यक्तित्व स्वतंत्र भारतक प्रभावशाली नेता छलाह जे देशक निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देलनि। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनक जन्म 6 जुलाई 1901 कऽ भेलनि, एकटा शिक्षाविद, बैरिस्टर आ भारतीय जनसंघक संचालक संस्थापक छलाह। स्वतंत्र भारतक पहिल उद्योग आ आपूर्ति मंत्री छलाह। वैचारिक मतभेदक कारणे ओ इस्तीफा दऽ देने छलाह आ वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघक स्थापना कयलनि। कलकत्ता विश्वविद्यालयक सबसे युवा कुलपति रहल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी

हिंदू महासभाक नेतृत्व कयने छलाह। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देवावला अनुच्छेद 370 के विरोधी छलाह। बिना परमिट के वर्ष 1953 में कश्मीर जयबाक क्रम में हिनका पकड़ लेल गेल छलनि आ 23 जून 1953 में रहस्यमय परिस्थिति में हिनक मृत्यु भऽ गेल छलनि। श्रोता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नारा देने छलाह, एक देश में दू विधान दू प्रधान,

0: श्रोताई छलित गजेंद्र महाराज सुना रहा छलित लोक भजन कार्यक्रम में इनका सा आर गीत सुना। आओ एखन सुनी कथा प्रेमलता मिश्र प्रेम से। कथा के शीर्षक थी हम एसगरे छी।
1: अहाँ एसगरे छी? हाँ हम एसगरे छी। एसगरे किएक छी? ई कोन पूछबाक गप भेल? हम कहलहुँ ने हम एसगर छी। एसगर रहबाक कारण तऽ किछु भऽ सकैत अछि। अहाँ तऽ हद कऽ देलहुँ, अनेरे बातके बढ़ौने जा रहल छी। कोनो हमही टा एसगर छी? बहुतो गोटे एसगर छथि। ओना सत्य जे पूछी तऽ सब एसगरे अछि। सभक पाछा कोनो ने कोनो कारण होइते छैक। जँ कारण कोनो छैक तऽ कारण जानि कऽ अहाँ की करबैक? आइ तैयो कनेक बुझतियैक ने? अहाँ तऽ एकदमे सँ हमर पाछा पड़ि गेल छी। अहाँ केहन फजूल प्रश्नसँ तऽ हम तबाह भऽ गेल छी। देखू ने, काल्हिए नमिता फोन केने छलीह, मौसी अहाँ कतऽ छी? हमरा तामसो उठल, कनेक जोरसँ कहि देलियनि। आँ ये हम कतऽ रहब? एखन तऽ अपन घरमे छी, भोरुका पहर छैक तैँ अखबार पढ़ैत छी। कहू अहाँ कोना मोन पड़लहुँ? मौसी हम एसगर भऽ गेल छी से

अपने नहीं रहला। आहा, से तो नहीं बुझल छल। अच्छा आर सब कहू, बच्चा सब कत अछि? मौसी, तीनू बच्चाक विवाह दान भ गेलैक। सब अपन अपन परिवारक संगे नीके ना अछि। जेठका गुजरात में अपन व्यवसाय ठाड़ कल्लक, नीक आमदनी छै। माँ झील पुणे में रहित अछि, ओकरो बैंक में नौकरी छैक, एकटा दू बरखक नेना छैक। छोटका दुबई चलि गेल, सबसँ नीक आमदनी ओकरे छैक। मुदा की कहू, अपने मोने ओम्हरके छौड़ीसँ बियाह कऽ लेलक। लिअ तऽ ई कोन अन्हेर भेलैक, प्रसन्न अछि ने? तखन किएक उदास छी? सब प्रसन्न तऽ अहूँ प्रसन्न रहू। नहि मौसी, हम एकदम एसगर भऽ गेल छी। गाममे छलहुँ तऽ मोन नहि लगैत छल, केओ गप्पो करयवला नहि छल। सङ्गमे एकटा 10 वर्षक धनकी बालीक बेटी रूपालीके सङ्ग लऽ पटना आबि गेल छी। कतेक खुशामद केलियै, भरोस देलियै, हम एहि रूपालीके खूब पढ़ेबै आ नीके ना रहलहुँ तऽ एकर विवाहो हम ही करा देबै। धनकी बालीके बड़ मनोरथ छलैक जे ओकर बेटी टाउनमे जा कऽ पढ़तै। ओ हमरा पर भरोस सेहो कयलक, तखने ने आबऽ देलकै। छोट सन एकटा 2 कोठरीके मकान भेट गेल अछि, ओकरे सङ्ग रहि रहल छी। लगेमे एकटा नीक सरकारी इसकुल छै, ओहिमे ओकरा नाम लिखा देलियैए। हे, देखै छियै छौड़ीके मोन लागि गेलैए। अहाँके फोन नम्बर कतहुसँ भगवती उपरा देलनि तऽ जानमे जान आबि गेल। देखू ने, नम्बरो लागि गेल तऽ अहाँसँ गप भऽ रहल अछि। आब एक दिन घरे अबै छी तऽ सङ्ग बैसि कऽ भरि पेट गप करब। हँ हँ, आउ ने, कतेक दिन मुँहो देखना भऽ गेल, मुदा जँ आयब तऽ फोन कऽ लेब। ओना तऽ बेसी कतहु जाइ अबैत नहि छी, मुदा तैयो कोनो एहन बेगरता भऽ जायत तऽ बहरा पड़िते अछि। हँ, जँ आयब तऽ रूपालीके सेहो सङ्ग नेने अयबै, कनेक हमहूँ तऽ देखबै। मौसी, हम कखनहु ओकरा एको क्षण एसगर नहि छोड़ैत छियै, वएह तऽ हमर पंथक पाकड़ भेल अछि। तैँ तऽ कहल गेल छै जे अपने संताने नहि नितराय, नहि जानि ककरासँ कखन सुख भेटत से कहब कठिन। आब कने स्नानो अबेरे भेल जा रहल अछि, देखू कोनहुना एसगरुआसँ जान छूटल। लगैए फेर किनको फोन आबि रहल अछि। की आबो अहाँ एसगरे छी? अहाँ के छी, अनेरे बीचमे आबि कऽ हमर एकांत भंग करैत छी? काकी, गोर लगै छी, नीके रहू। के छी, चिन्हलहुँ नहि? हम ज्योति। कोन ज्योति? मनोज दासक बेटी, अहीँके मोहल्लामे रहैत छलहुँ। अहाँके घर तऽ हमर मम्मी पापा खूब आन जान छलनि, पापाके बदली भऽ गेलनि तऽ हमसभ भागलपुर आबि गेलहुँ। काकी, बिसरि गेलहुँ, कनिके टा रही तऽ हमरा बबली आ गुड्डीके हाथमे गुड़क डेब धरा कोना फुसलाके कंछेदियासँ कान छेदा देने रही अहाँ। ओहि दिन खूब कानल रही हमसभ। मम्मी कहलक, चुप भऽ जो, घाव सुखा जेतौ तऽ गहना कीन देबौ, गहना पहिरके खूब सुन्दर भऽ जेबै। ज्योति, मुदा एतेक वर्षक बाद कोना मोन पड़लहुँ हम? अच्छा कहू, एखन कतऽ छी? काकी, एखन तऽ हम पुणेमे छी, तहिया तऽ कुमारिये छलहुँ जखन अहाँ सभक मोहल्लामे छलहुँ। भागलपुरमे आगूक पढ़ाइ करैत रही, तखने पापा बियाह करा देलनि। परिवार तऽ नीक भेटल, पति सेहो LIC मे अधिकारी छलाह। 3 वर्ष भेल अपने अचानक विदा भऽ गेला, आब हम एकदम एसगर छी। आँ, ई की कहलहुँ, एतबा दिनक बाद गप भेल तऽ एहने समाचार सुना देलहुँ। कतेक दिन पर गप भऽ रहल अछि? काकी, 36 वर्ष भऽ गेल, मुदा हम अहाँके कखनहु नहि बिसरल रही। एखनो कहाँ बिसरल छलहुँ? काकी, अहाँ हड़बड़ायल तऽ नहि ने छी? नहि नहि, कहू ने। हमर बेटाक विवाह भऽ गेल, हुनका रहिते ई काज सम्पन्न भऽ गेल, कनिया आ परिवार नीक भेटल। आब असल काज कन्यादान रहि गेल अछि। हमर बेटी मनीषा BED कऽ चुकल अछि, ओकर इच्छा शुरुएसँ शिक्षिका बनबाक छैक, प्रयासमे लागल अछि। ई तऽ नीक बात, महिलाके हेतु सबसँ नीक नौकरी अछि। कतौ नीक जगह नीक इसकुलमे सेलेक्शन भऽ जाइक से आशीर्वाद दियौ। मुदा काकी, बियाहो आब आवश्यक छैक। अहाँक नजरिमे जँ कोनो नीक परिवार नीक लड़काक जानकारी भेटै तऽ हमरा एहि नम्बरपर खबरि करब। हँ हँ, मनीषाके

0: एकटा फोटो आ ओकर बायोडाटाक संग हमरा पठा दे। अच्छा, अहाँक सासुर कतय अछि?
1: बलाट
0: बलाट तऽ नीक गाम अछि काकी, बच्चा सब आब गाम जाइत कहाँ छैक? कोनो काज कर्तव्यता भेल तऽ हमरा एसगरे जाय पड़ैत अछि। की करबैक, सब ठाम एहने समस्या छैक। बच्चा सब दिन शहरमे रहि गेल तऽ गाममे ओ माहौल ओकरा नहि भेटैत छै, मुदा तैयो गामक नाम तऽ लोक पुछबे करैत छै। काकी, एकटा बात तऽ कहब बिसरि गेलहुँ। हँ हँ कहू ने। हमर गायत्री पिसीसँ अहाँ किछु लगौने छलहुँ ने? हँ हँ गायत्री दाईसँ तऽ हम जोड़ी लागल छल हमरा। किएक, गायत्री दाई आइकाल्हि कतऽ छथि, कोना रहैत छथि? ओ तऽ आब हमरा कहियो मोनो नहि पाड़ै छथि। आब ओ नहि रहली, पीसा एसगरे ओतेटा मकानमे रहैत छथि, सङ्गमे एकटा टहलू छनि, तकरे भरोसे जीवि रहल छथि। टहलू मुदा नीक भेट गेल छनि, अपन संतान जतेक ध्यान नहि राखि सकै छै ताहिसँ बाढ़ि कऽ हुनक सेवामे लागल रहैत छनि। से की, अपन धियापुता सब कतऽ छनि? एकटा बेटा कृष्णकान्त कनाडामे रहि रहल छथिन, जेठ बेटी चण्डीगढ़ आ छोटकी कोलकातामे। छोटकी बेटी जमाय बहुत जिद कयलथिन, चलू हमरे सभक सम रहू, मुदा किन्नहुन मानबा लेल तैयार नहि। बूढ़ा एकदमे भसिया गेल छथिन, अपन तीनू टा फ्लैट तीनू संतानक नामे लिख देलखिन। कहै छथिन हम कतहु नहि जायब, बहुत कष्टसँ ई मकान बनौलहुँ, से के भोगत? हम जा धरि जीअब एहि घरमे रहब, एहि घरमे मरब। कृष्णकान्तक सङ्ग विदेशी धरती पढ़क, एक घोंट पानियो हमरा लेल बिख अछि बिख। जमाके देखबैत कहलथिन, देखै छी अपन एहि अलमारीमे एक बोतल गंगाजल रखने छी, सिंटुआके देखा देने छी, जखन हमर बेसी मोन खराब हैत तऽ अपने हाथे गंगाजल पिया दिहें। अपन संतानक सुख हमरा नहि लिखल अछि। पड़ोसी एकटा मित्र छथि जोगा बाबू, ओ कखनो काल भेंट करऽ अबै छथि, सङ्गे सङ्ग चाह पीबैत छी आ कनि अखबार पढ़ैत छी, बस एतबे टा हमर संसार अछि। हुनको बुझा देलियनि अछि जे हमरा अस्पतालमे नहि लऽ जायब, हम अपन एहि घरमे मरब, हमर अंतिम इच्छा इएह अछि। सबसँ मोह भंग भऽ गेल। की आबो एसगरे छी? अहाँ के छी, बेर बेर हमरा एकांतमे आबि हमर शान्तिके भंग करैत छी? हम कहाँ केओ छी, कतहुसँ नहि आयल छी, हम अहीँके स्वप्न छी, अहाँ अनेरे जे सपनामे हेरायल रहैत छी सैह छी हम। अनेरे अहाँके मोन बौआइत रहैत अछि, सब एसगर अछि, तैँ अहूँ एसगर छी, हम अहीँ छी।
2: हम एसगरे छी। श्रोता, ई छल कथा, सुना रहल छलिए प्रेमलता मिश्र प्रेम। धन्यवाद दियनि हिनका। आ आओ हमरा लोकनि गजेंद्र महाराजसँ सुनी ई शिव भजन।

श्रोता ई छल से भजन जे सुना रहल छलथि गजेंद्र महाराज। श्रोता देखू एखन जे मौसम जे बदलि रहल अछि तऽ एहिमे एखन गर्मियो पड़ि रहल छै आ कतौ कतौ वर्षा होइ छै। कनि मनि वर्षा भेल ओहिसँ तापमानमे आर बढ़ोतरी। कुल मिलाकऽ देखल जाय तऽ ई स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर दैत अछि। एहिमे जरूरी छै सावधान रहके। दूटा चीज में जो सावधानी बनायल जाए तो स्वस्थ रहल जा सके छे। ओई में खान पीन पर ध्यान देव आ संगे स्वच्छता पर ध्यान देव। स्वच्छता अपन घर के सफाई, अगल बगल के सफाई, बरसात आवे वाला छे घर के अगल बगल में कचरा लागल रहते ओहि पर पानि पड़त ओ सड़ते ओहिसे बीमारी पसरत। तैं लए कऽ सफाई जरूरी छे आ खान पीन में सेहो ध्यान देब जरूरी छै। टटका बनल सामान सब खाय, बाहर के बनल चीज वस्तु से दूरी बना कर राखी। तो ई सब किछु एहन प्रयास छै जे केला से स्वस्थ रहल जा सकैया। आओ अब हमरा लोकनि गजेंद्र महाराज से सुनी ई बरसाती गीत।

श्रोताई छलथि गजेंद्र महाराज सुना रहल छलथि बरसाती गीत। हिनका आजुक सब गीत के लेल धन्यवाद दियन। आ श्रोता आजुक भारती में बस एतबे, अगला कार्यक्रम में फिर भेंट गांठ हेतै, गपशप हेतै। ताधरि पवन के विदा दियो, नमस्कार।

श्रोता, आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:10 पर। छह बजकर 20 मिनट पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का समय है शाम 6:30 और 7 बजे हम चर्चा करेंगे खेती गृहस्थी की। शाम 7:30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

7:52 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा।

حال. हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का वक्त है 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू समाचार खबरें, रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे। रात्रि 10:45 पर आप सुनेंगे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहले बने कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गई बा। मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह मिशन के अंतर्गत राज्यन खातिर 25,000 करोड़ रूपया के सहायता राशि जारी कैलन। उ कहलन कि मनरेगा के लागू होखे में 3 साल से बेसी के समय लागल रहे, जबकि विकसित भारत जी राम जी के पूरा देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिहल गई बा। श्री चौहान कहलन कि विकसित भारत के विजन के तेजी से आगे बढ़ावे खातिर ए अधिनियम के तहत अगला 5 साल में 2,86,000 पंचायतन में 7.5 लाख करोड़ रूपया से बेसी के निवेश कल जाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जयंती पर उंगरा के श्रद्धांजलि अर्पित कैलन। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी कहलन कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिले रहलन। प्रधानमंत्री कहलन कि रामविलास पासवान के जनसेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति उनकरा समर्पण खातिर हमेशा याद कैल जाय। गृह मंत्री अमित शाह कहलन कि रामविलास पासवान के पूरा जीवन गरीब के कल्याण खातिर समर्पित रहे। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहले बणन कि स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्ग के हिमायती रहलन और सब वर्ग के विकास खातिर प्रतिबद्ध रहलन। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुई। इस सत्र 24 जुलाई तक आयोजित कैल जाय। मानसून सत्र के पहला दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश कैल जाय। अगला कार्य दिवस में यह पर सामान्य वाद विवाद

0: बाद होई और मतदान के बाद एकरा मंजूरी देहल जाए। ए बीच संसद के मानसून सत्र भी 20 जुलाई से शुरू होई और 13 अगस्त तक चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहलन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र बुलावे के सरकार के प्रस्ताव के मंजूरी दे देले बड़ी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री रिजिजू कहलन कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा सब पर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय लेवे पर ध्यान दिहल जाए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिला के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के बढ़ावे वाला परियोजना के शुभारंभ कैलन। ए दौरान उ मिल परिसर के घूम के उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीन सब के निरीक्षण भी कैलन। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर अपन उम्मीदवार घोषित कैले बिया। पार्टी के कोर कमेटी के बैठक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती श्री किशोर के नाम के घोषणा कैलन। पार्टी उम्मीदवार घोषित भैला के बाद प्रशांत किशोर पत्रकारों से बातचीत में कहलन कि पार्टी जे जिम्मेदारी तय कैले बिया ओकर हम सम्मान करतनी। बांकीपुर उपचुनाव खातिर बिहान अधिसूचना जारी हुई। मतदान 30 जुलाई के हुई जबकि मतगणना 3 अगस्त के कैल जाये। मालूम रहे कि यह सीट पर उपचुनाव भाजपा विधायक नितिन नवीन के इस्तीफा के वजह से हो रहा बा। प्रदेश में मानसून के सक्रियता से आज पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण पूर्णिया किशनगंज सहरसा सुपौल और भोजपुर समेत कईगो जिला में हल्का से मध्यम बरखा बरसल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान पश्चिमी चंपारण के बगहा में सबसे बेसी 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कैल गई। मौसम के अनुसार अनुमान में कहल गई बा कि बिहार राज्य के औरंगाबाद भभुआ और रोहतास जिला में 1-2 जगह भारी बरखा होके के संभावना बा। इन्हें बरखा होखला से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के कमी आयल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। राष्ट्रीय जनता दल के 30वां स्थापना दिवस आज पूरा प्रदेश में मनावल जा रहा बा। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत और वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहलन। ए अवसर पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपन संदेश में कहलन कि पार्टी के स्थापना गरीब शोषित और अकलियत सबके अधिकार के लड़ाई के उद्देश्य से कैल गई रहे। वो पार्टी के एकजुटता पर जोर देवे वाला कार्यकर्ता लोगन से जनहित के मुद्दा पर संघर्ष करे के अपील कैलन। श्री यादव ये अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता लोगन से के संघर्ष और समर्पण के सराहना कैलन। एक साथ है आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत। कुमार शानू और अलका याग्निक को आइए सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम में। इस गाने को लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: फिल्म जोश है, अभी आपने ये गाना सुना अभिजीत की आवाज़ में, और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते, कोंकणे, गोवायां, मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिलावर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्येन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायामुक्तं यत्

0: राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड चेत्य तेषु राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन साकमेव आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब च चंडीगढ़ क्षेत्रेषु विकीर्णरूपेण वृष्टेः संभावना प्रकटिता। विभागेनाद्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल माहे, मराठवाड़ा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु सहैव उत्तर आंतरिक कर्नाटक तेलंगाना क्षेत्रं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानं विहितम्। राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट सत्रम् अस्य मासस्य विंशतिः दिनांकतः आरप्स्यते, यत च अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभमाणा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक सम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य षट् दिनांकतः जुलाई मासस्य अष्ट दिनांकं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति, तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढ़ संबंधाः, आर्थिक सहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचार भिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिक सहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले सम्पूर्णस्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्त्यस्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। होर्मुज जल डमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

चौपाल सुनिहार लोगिन के संगीता के प्रणाम। कहीं सभे का हाल चाल बा। देखी मौसम के मिजाज देखत रही ना, आज जैसे बरखा बुनी जोन बा एकदम थोड़ी का देर खाती ही, लेकिन बरसल है भाई। धीरे धीरे यही तरह रफ्तार पकड़े तो तनी मौसम में बदलाव आए और गर्मी से राहत मिले। देखिए हम कहल चाहब कि भाई ये हर एक मौसम के अपन जोन मिजाज बा वो होखेला और हमने के वही तरह से ढले के होखेला। ऐसा में अपन खान पान के भी हमने के बहुत ही ध्यान देवे के जरूरत बा कि मौसम के अनुसार हमने के कौन सा खान पान होखे के चाहिए ताकि हमने के स्वस्थ रह सके। चली गपशप तो होत रहेला, एगो औरी हम बात पर जोन बा एक विषय बा जरा पर हम बात रुआ सभे से कहल चाहब कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जे बा ये हरेक साल जे बा दुनिया भर में सहकारिता जोन बा ओकर कहल जा सकता कि योगदान और समर्पण मान्यता देवे खाती

उनकर महत्व के बढ़ावा देवे खातिर मनावल जाला। एकरा मनाए के जोन मुख्य उद्देश्य बा वो बा जे कि जागरूकता के बढ़ावल, अर्थव्यवस्था अउरी विकास में सहकारिता उद्यमी के भूमिका के उजागर कई, और सहयोग अउरी समानता, लोग में एकता, आर्थिक दक्षता जेकरा के कहल जा सकता, सामाजिक न्याय अउरी विश्व शांति के जोन बा आदर्श के बढ़ावा जोन बा ना उ देवल बा। साझेदारी मजबूत कई, जैसे कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार सहित अन्य हित कर जेबाना, साथ सहकारिता आंदोलन के साझेदारी के मजबूत कई। साथ ही साथ देखिए दिवस के शुरुआत के भी हम उकरा पर प्रकाश डालल चाहब कि शुरुआत हर साल जेबा जुलाई के पहला शनिवार के मनावल जाला, और एकर शुरुआत पहला हाली जेबा ना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA द्वारा कैल गई रहे। 1995 में संयुक्त राष्ट्र UN ने एकरा के आधिकारिक जोन बाना एकरा के मान्यता जोन बा ई मिलल रहे। सहकारिता आंदोलन के जनक हमनी के जेकरा के जानी लाजा रॉबर्ट ओवेन जोन बानी यहाँ के मानल जाला, वेल्स में यहाँ के रहत रहनी, और सहकारिता दिवस के हम तो ये भी कहब कि भाई कोनो दिवस होके अगर हमनी के ओह दिवस के मना रहल बनी, और ख़ास करके ओकरा पर मतलब मजबूती से ओकरा पर ध्यान जोन बा आकर्षित कर रहल बनी, तो कहीं ना कहीं ओह दिवस के महत्व के ओकरा के समझावल, जानल और रुआ सबे के आगाह कैल भी बा। तो देखिए 2026 के थीम भी बा शांतिपूर्ण विश्व खातिर सहकारिता। सही बात बा भाई, शांति तो हर जगह जरूरी बा ना, चाहे घर होके, परिवार होके, देश होके, समाज होके, आसपास होके, तो भाई एकर थीम भी यही बा। और सहकारिता समिति आत्मनिर्भरता, स्वयं जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, निष्पक्षता और एकजुटता के मूल्य पर आधारित होके के चाहिए। और सहकारी समिति के हम तो कहब कि सहाय ईमानदारी जुर्माना पर जो ईमानदारी के साथ जो निभावल जा सके, तो सही बात बाकी एकदम निष्पक्ष होए के चाहिए। और सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरा के देखभाल जोन एक नैतिक मूल्य होला, हर देखब कि मनुष्य के अंदर जेबा एक अपन विश्वास और नैतिक मूल्य होला, वो बहुत जरूरी बा। जबले एक नैतिक कह सकते नहीं कि मूल्य के तले हमनी के तो कहीं ना कहीं प्रभावित रही ला उसे, और एक नैतिक दबाव भी होला कि भाई हमनी के कह सकते नहीं कि बड़ा सुंदर से हमनी के विकास होला, व्यक्तित्व के कह सकते नहीं कि विकास होला। भाई नैतिकता रहा और का कहता, नैतिकता यही कहता कि भाई हई चीज़ गलत बा, हई चीज़ सही बा, तो सही का करे के बा ई बताई। तो नैतिक मूल्य जे बाना कहीं ना कहीं अगर ओकरा में कहीं कह सकते नहीं कि अभी के जे समय बा ओकरा में कमी आ रहल बा, तो निश्चित तौर पे नैतिकता हर जगह जरूरी बा। तो चलिए गप सप तो हम करत ही रहिला, लेकिन भाई तनी मनोरंजन के भी बात होए के चाहिए। तो आज चली हमने के सुनल जाओ एगो गीत, आज के कलाकार बनी श्याम सुंदर पासवान। तो सुनी सभी यहाँ से शिव भजन।

वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर गीत। भोला बाबा के ब्याह के गीत हमने के सुनत रहनी। गौरी के माई के अंतर आत्मा के आवाज रुआ सुननी ना, एकदम देख के उनकर वेशभूषा से घबरा गईली और कहली कि भाई ऐसन बउराहा बर से हम अपन बेटी के जोन बा ब्याह ना करब। लेकिन चली, बड़ा ही सुंदर वर्ण। और हमार विचार बा कि एगो औरी हमने के यहाँ से गीत सुनल जाओ श्याम सुंदर पासवान जी से, तो सुनी सभे यहाँ से गौरी गीत।

0: बहुत ही सुंदर गीत सुननी जा, राधा जी के लहंगा पटोर चली। गीत गमनई तो होत रही, लेकिन अभी समय हो गई बा हमनी के प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल, तो आई सुनल जाओ।
1: प्रायोजक है श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से आप सबों के बीच आ गया। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम ममता का आंचल, आकाशवाणी पर हर हफ्ते या सप्ताह आने वाला वो कार्यक्रम जो उन सवालों की बात करता है जिन्हें अक्सर घर के चार दीवारी के अंदर भी नहीं पूछा जाता। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक पहलू पर नहीं बल्कि पूरी बात करेंगे। मान लीजिए आप ये विषय पहली बार सुन रहे हैं, ना कोई जानकारी ना कोई पूर्वाग्रह। आज हम शुरू से समझेंगे निसंतानता क्या है, क्यों होती है और विज्ञान इसका समाधान कैसे देता है, यानी IVF क्या है असल में। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, MRCOG लंदन, और श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी पटना की प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञ। इनको हम नमस्कार करते हैं। और उससे पहले डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम शेयर करते हैं कि कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा सीधे सीधे। नंबर है 9162562266, 9162562266। ये नंबर है और ये ममता का आंचल कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो कि पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ में है। आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि हमने कहा, बहुत बहुत नमस्कार आज के एपिसोड में।
3: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं।
2: डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, निसंतानता क्या है?
3: निसंतानता जानना बहुत जरूरी है उस दंपति के लिए जो इसे जूझ रहे हैं।
2: जी,
3: निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को,
2: हाँ,
3: जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं बिना किसी गर्भ निरोधक के,
2: हाँ,
3: और उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है।
2: हुँ.
3: तो वैसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता

0: से जूझ रहे हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर कोई दंपति जहाँ की महिला का उम्र 35 ईयर्स से ज्यादा है, तो वहाँ हम लोग एक साल रुकने के लिए नहीं बोलते, बोलते हैं 6 महीना तक ही कोशिश करें। और अगर अब अभी तक बच्चा नहीं ठहरा तो जरूरी है अब इलाज का, और उन्हें इलाज कराना चाहिए। अभी तो आप किसी भी प्राथमिक कहीं भी इलाज करा सकते हैं जानने के लिए क्या कारण है।
1: जी।
0: और अगर अगले एक साल में आपको बच्चा ठहर जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रयास करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए बच्चा नहीं ठहर रहा है तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, ताकि वो आपकी बीमारी का बेहतर निदान कर सके।
1: एक बात पूछना चाहते हैं डॉक्टर श्रद्धा, कि क्या निसंतानता कोई श्राप या अभिशाप है?
0: नहीं, निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है। कोई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पिछले जन्म का पाप है, ऐसा कुछ नहीं। निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है, यानी कि मेडिकल कंडीशन है। जिस तरह से डायबिटीज एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, उसी तरह से इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है, और इसका इलाज संभव है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता का कारण जो होता है उसमें अक्सर लोग महिला को दोष देते हैं।
1: लेकिन डॉक्टर, एक सवाल और है कि जब ये बात है तो हमारे समाज में पहला सवाल अक्सर महिला से ही क्यों पूछा जाता है, क्या कमी है तुम में, ऐसा क्यों?
0: ये बहुत दुखद है और बहुत बड़ी गलत फहमी है समाज में कि अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रहा है तो दोष हमेशा महिलाओं में दिया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 1/3 कॉज निसंतानता के लिए, सिर्फ 1/3
1: जी
0: जो कारण होता है उसके लिए महिला जिम्मेदार होती है।
1: हाँ हाँ।
0: बाकी जो 1/3 कॉज है उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं, और रेस्ट 1/3 जो कॉज है वो अनएक्सप्लेन्ड है, यानी कि हो सकता है महिला हो सकता है पुरुष हो सकता है दोनों हो। अगर कुल मिला के बोले तो निसंतानता जो कारण है वो दंपति का कारण होता है, वो सिर्फ किसी महिला के कारण नहीं होता है। तो समाज का उंगली उठाना सिर्फ औरत के लिए गलत है, और उंगली तो किसी पे नहीं उठाना चाहिए। आप अगर उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उंगली तो मत उठाइए।
1: एक बात यहाँ हमने कहा था लिसनर्स कि आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, नई बातें, नई पहलू और सारी चीजों पर खुल के बात आज के एपिसोड में होगा। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप बात कर लें श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी डॉक्टर श्रद्धा के नंबर पर, नंबर है 9162562266, 9162562266। एक बात और कहना चाहेंगे, पैसा अर्थ हाँ बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे जीवन में, हम समझ सकते हैं, मैं भी जूझता हूँ इससे, लेकिन निदान कहीं ना कहीं होता है। वैसे माता पिता के लिए श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने भी निदान निकाला है जिनके पास पैसे की समस्या है। अब आप इलाज कराएं आराम से, बेझिझक अपना समझकर, और टुकड़ों में पैसा दें, यानी EMI पर पैसा देने की व्यवस्था श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ने की है। 24 महीने में आप पेमेंट कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हमारा सादर निवेदन है, आग्रह है कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, और अगर जो बच्चा नहीं है, अगर शादी के 2-3-4 साल हो गए तो IVF पद्धति, या हम IVF भी नहीं गए, आप सीधे सीधे ये नंबर है ना 9162562266 डॉक्टर श्रद्धा का नंबर है, इस पर बात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर श्रद्धा, कारण क्या है, शरीर, उम्र या जीवन शैली क्या है?
0: निसंतानता का कारण कुछ एक कहना मुश्किल है
1: जी।
0: हो सकता है पुरुष में दिक्कत हो सकता है महिला में दिक्कत हो सकता है जीवन शैली में दिक्कत हो।
1: जी, जी।
0: अगर हम महिला से ही पहले बात अगर शुरू करें
1: हाँ।
0: तो हो सकता है कि उसके अंडाशय में अंडा नहीं बन रहा हो।
1: हाँ।
0: एक बड़ा कारण जो बहुत कॉमन होता जा रहा है PCOS या PMOS।
1: हाँ।
0: ये वो कंडीशन है जिसमें शरीर, महिला के शरीर में हार्मोन यानी कि कुछ केमिकल का संतुलन बिगड़ जाता है।
1: हाँ।
0: उसके कारण उन्हें अंडा नहीं बन पाता है, और एक महिला में अंडा बनना बहुत जरूरी होता है अगर उसे बच्चा चाहिए तो।
1: जी जी।
0: तो हो सकता है अंडा बनने में दिक्कत हो।
1: हाँ।
0: हो सकता है महिला का जो नली

0: जहाँ की अंडा और शुक्राणु आके मिलता है, हो सकता है वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस हो सकता है फाइब्रॉइड हो
1: जी।
0: ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक महिला को बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है।
1: और पुरुषों की बात करें तो
0: हाँ, अगर पुरुष में बात करें तो हो सकता है कि पुरुष की शुक्राणु में कमी हो, शुक्राणु की संख्या ठीक हो लेकिन उसकी चाल गड़बड़ हो
1: हाँ।
0: या फिर शुक्राणु की बनावट गड़बड़ हो
1: जी।
0: और भी दिक्कत हो सकते हैं, तो पुरुष भी कारण होते हैं निसंतानता के। बात करें जीवन शैली की, तो जीवन शैली आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी।
0: क्योंकि लोग अब ज्यादा जंक फूड्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, घर का खाना कम पसंद करते हैं, लोग मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, उसके कारण जो कहा जाता है 7 से 8 घंटा सोना है वो लोग ठीक से नींद पूरा नहीं कर पा रहे। नींद भी उतना ही जरूरी होता है निसंतानता के इलाज में। हो सकता है धूम्रपान, ये सब के कारण भी नींद कम आता है, ये सब भी हो सकता है। तो अगर आप जीवन शैली भी ठीक कर लेते हैं और अगर यही कारण है निसंतानता का, तो सिर्फ जीवन शैली ठीक करने से भी बच्चे ठहर जाते हैं।
1: और उम्र की बात करें तो उसका क्या रोल है इसके अंदर में?
0: देखिए, उम्र तो सबसे जरूरी, अगर निसंतानता के इलाज में हम लोग एक चीज की, कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे जरूरी बात क्या है, तो मैं हाँ। बोलूंगी उम्र
1: हाँ।
0: हम बार बार रेडियो में आते हैं निसंतानता इनफर्टिलिटी के लिए अवेयरनेस इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उम्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे दंपति जिनको बच्चा चाहिए वो ये जान लें कि जैसे जैसे उम्र निकलता है
1: हाँ।
0: उस दंपति का प्रजनन शक्ति क्षमता जो होता है वो घटता जाता
1: जी।
0: है, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद और अंडा के घटने के बाद इलाज जटिल होता जाता है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, अब सीधे से चलते हैं आईवीएफ की बात करते हैं। हम लोग आईवीएफ पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान है और बहुत सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो असल में आईवीएफ क्या है, पूरी प्रक्रिया हाँ जरा आसानी से और सरल शब्दों में जल्दी जल्दी बता दीजिए।
0: बिल्कुल, निसंतान दंपति को ये भी जानना चाहिए, अगर आपको दवाई से बच्चा नहीं ठहरा
1: हाँ,
0: शादी के बहुत सारे साल हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा, तो आईवीएफ आपके लिए एक बहुत ही सफल पद्धति है जिससे बच्चा ठहर सकता है
1: जी।
0: और इसका सक्सेस रेट डिपेंडिंग कि उस दंपति को क्या दिक्कत है 50 से 60% भी हो सकता है
1: हाँ।
0: तो आईवीएफ में हम करते क्या है, पहले मैं बता देती हूँ,
1: पहले मैं बता देता हूँ आपका नंबर, अगर कहीं कोई समस्या हो ये बातें सुनने के बाद या कुछ संशय हो तो 9162562266 9162562266 पर डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिएगा। हाँ आगे
0: देखिए, आईवीएफ में सबसे पहले तो कुछ जांच करते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो यूजुअली मासिक के दूसरे दिन से शुरू होता है
1: जी।
0: औरत को 10 से 12 दिन सुई पड़ता है और उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है और इस प्रोसेस में कहीं भी किसी को दर्द नहीं होता है
1: जी।
0: और जब अंडे निकाल के उसको पुरुष के शुक्राणु से यानी कि उसके पति के शुक्राणु से मिला के भ्रूण बनाया जाता है। निसंतानता में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि भ्रूण नहीं बनता है, तो आईवीएफ इस चीज को बाईपास करता है, यानी कि भ्रूण हम लोग अपने आईवीएफ लैब में बनाते हैं और वो उसी तरह से स्वच्छ होता है जिस तरह से माँ का गर्भ स्वच्छ
1: जी,
0: होता
1: जी।
0: है। और उसके बाद जब भ्रूण बन जाता है
1: हाँ।
0: तो माँ के गर्भ में जब लाइनिंग परत बन जाती हाँ। है बच्चेदानी की, तो माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है और यही बच्चा 5 दिन का बच्चा डाला जाता है और 9 महीने तक ये माँ के गर्भ में रहता है।
1: एक बात बताइए, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, भ्रांति भी है, क्या आईवीएफ से उत्पन्न बच्चा जो है ना वो नॉर्मल बच्चे की तरह होता है?
0: बिल्कुल, आईवीएफ से जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इतिहास गवाह है इसके लिए। मैं बोलूं तो पिछला 50 साल से हम लोग देख रहे हैं
1: जी जी।
0: कि बहुत सारे बच्चे आईवीएफ से हुए हैं।
1: वो बात बताइए ना जो पहली हुई आईवीएफ
0: हाँ, बिल्कुल
1: हाँ।
0: और विश्व की पहली जो आईवीएफ लड़की जो लुईस ब्राउन आज करीब 50 साल की हो रही है
1: जी जी।
0: वो बिल्कुल सामान्य है बाकी महिलाओं की तरह और उनको अपना बच्चा खुद से हो चुका है,
1: नॉर्मल वे में
0: हुआ, उनको कोई आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कितने सारे बिजनेसमैन बहुत सक्सेसफुल इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो सारे आईवीएफ बच्चे हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार्स उनके बच्चे आईवीएफ से हैं। लेकिन ये तो चकाचौंध वाली बात हुई, लेकिन सामान्य लोग के भी बच्चे आईवीएफ से

0: और बिल्कुल वो सामान्य बच्चे की तरह हैं, इनफैक्ट वो लोग थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। आईवीएफ के बच्चे ये भी देखा गया कि वो सामान्य बच्चे से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
1: तो दो बच्चे भी एक साथ होने के चांसेस होते हैं?
0: बिल्कुल, आईवीएफ में करीब 25-50% चांस होता है कि जुड़वा भी हो सकता।
1: तो एक भ्रांति थी जिसका हमने आपसे समाधान ले लिया है। अच्छा, ये कहा जाता है डॉक्टर श्रद्धा कि ये सिर्फ बड़े शहरों के अमीर लोगों के लिए आईवीएफ है, क्या कहना चाहिएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, आईवीएफ अब बिहार में आपके पटना शहर में और भी कहीं कई जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आप जहां भी इलाज करा रहे हैं क्या वो सरकारी एआरटी नियम का पालन करता है, यानी कि मान्यता प्राप्त केंद्र में आप अपना इलाज कराएं, और ये सबों के लिए अब अवेलेबल है।
1: तो डॉक्टर श्रद्धा, आज सचमुच आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही अलग था, और आज जिन्होंने भी ये सुना होगा बहुत सारी भ्रांतियां आपकी दूर हुई होंगी। बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, बीमारी है ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर आईवीएफ है ना, और डॉक्टर श्रद्धा तो है ही है। आप फोन कर सकते हैं जानकारियों के लिए, 9162562266 ये नंबर है, 9162562266, ये आराम से बोलते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए कि आप नंबर को फॉलो कीजिए और फिर अपने नीचे अपने बच्चों तक उसको आगे बढ़ाइए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, लेकिन चलने से पहले एक बात और बता दें कि श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी में पैसा आ रहे नहीं आता है, ईएमआई पर आप 24 महीने में इलाज करवा कर भी पैसा दे सकते हैं। फिलहाल ढेर सारी बातें होंगी, आप हमें फोन कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, जिससे हमें आसानी होगी कि आपकी क्या समस्या है उसका समाधान हम डॉक्टर श्रद्धा से ममता का आंचल कार्यक्रम में निकलवा सकें। तो चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा, निकलते हैं, कहते हैं नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा आईवीएफ, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
3: अभी हमने के सुनत रहनी जा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। तो चलिए अब चौपाल कार्यक्रम के बाद बात होके खेती गृहस्थी के, और खेती गृहस्थी में सबसे पहले जुनबा हमने के आज सुनब जा प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार, तो आई सुनल जाओ।
2: प्रायोजक है गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: गरौल वालों कैसे हैं? आस पड़ोस के लोगों आपसे भी पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका राजेश और बहुत ही सही हूँ। कार्यक्रम रोजगार लेकर एक बार फिर से हम आ गए हैं। जी हाँ, आपको पता है कि आपके गोरौल के संस्कार नगर में एसएस प्रोफेशनल और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना श्री राज ग्रुप ने की है, और वहाँ बीसी और बीबीए की पढ़ाई और बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। बार बार कहता है राजेश की टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होती है। ये कार्यक्रम रोजगार हम लेकर आ रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। सारी व्यवस्थाएं उम्दा हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट अगर बायोलॉजी के साथ किया है आप सबों ने, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप अपने घर में ही अपने करियर की शुरुआत करें, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें और आगे बढ़ जाएं, बड़े शहरों के खर्चे से भी बच जाएं और अपने घर पर ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई लिखाई करें। खासकर के कोविड के बाद जब से हेल्थ सेक्टर सामने आया, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लोगों ने, कर्मियों ने हमें बचाया, उस स्थिति में आज भी रोजगार की कमी नहीं है। एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप बीसीए और बीबीए करके आगे बढ़ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी इन पांचों कोर्सेज के लिए आप इस नंबर पर लें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888।
1: गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम कितना अच्छा, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां से डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, श्रीराज ग्रुप का ही इंस्टीट्यूट है, और उसके

0: मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। पिछले एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी, आगे जैसा कि हमने बताया हाँ कि ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे। डॉक्टर साहब क्या हुआ उस एपिसोड के बाद? पहले तो आपका स्वागत है आज के एपिसोड में।
1: स्वागत है भाई। और बच्चों ने बहुत जिज्ञासा दिखाई और बहुत अच्छे से इसको को रिलेट किया और लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ वहाँ आकर करके और इंक्वायरी भी लिए, बहुत अच्छा लगा। और जो हमने कहा है वो उम्मीदों पर खड़ा उतरे हैं और उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे हम। जैसा कि पहले ही आप लोग जो सब लोग जानते हैं कि श्री राज ग्रुप जो है वह निश्चित रूप से सफल, सरल और सरल सरल चिकित्सा उपलब्ध कराता है, उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान को संचालित करता है।
0: जी, जी।
1: तो हमारा आज भी वही है। लोग सब बड़े बड़े बातें करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े उसको रिजल्ट देते हैं, यही हमारी विशेषता है।
0: एक सवाल आया था डॉक्टर साहब जिसका जवाब हम चाहते हैं आप दे दें, है ना। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के लिए जहां प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि जो गोरौल में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है और आपने चर्चा की कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल खुलने वाला है या पटना में श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल इस ग्रुप का है, यहाँ प्रैक्टिकल या फिर आप पीएससी से एसोसिएट करेंगे उनको, तो जानना चाहते हैं कि क्या इस संस्थान के साथ हॉस्पिटल का होना आवश्यक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है और धरातल पर है, सिर्फ कागज पर नहीं। एक बात ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को निश्चित रूप से अपना अस्पताल होना जरूरी रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके अपना अस्पताल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत जो बेसिक चीजें होती है वो जानकारी नहीं मिल पाती है। तो बेसिक चीजों की जानकारी होने के लिए सबसे पहले अपना अस्पताल होना चाहिए और एडवांस के लिए एडवांस हॉस्पिटल की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज के लिए अपना अस्पताल अगर नहीं रहेगा संस्थान के पास तो बेसिक चीजें कैसे सीख पाएंगे। और खुद अभी एक मैं डॉक्टर के होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर पारा मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र को अगर विकसित करना है तो उसको बेसिक चीजों को डे टू डे से ही, डे फर्स्ट डे से ही उसको ज्ञान दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि हर जगह एडवांस चीजें की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं कहीं थोड़ी छोटी बेसिक चीजें भी बहुत बड़ा कारगर होता है मरीज को ठीक करने में। तो बेसिक चीज को बताना जरूरी रहती है। फंडामेंटल जितना भी जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, फंडामेंटल जितने भी प्रक्रियाएं होती है जो नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, उसको मैं हम लोग सब लोग सबको उसको बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अपना अस्पताल होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, अगर रेगुलर क्लासेज और रेगुलर प्रैक्टिकल अगर चलता है
0: जी,
1: तब बच्चों में उत्साह भी बढ़ता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है और पढ़ने की ललक भी बढ़ती है। तो यह हमारा मूल मंत्र ही रहा है कि हम बच्चों को उन्नत शिक्षा के साथ साथ बेहतर प्रैक्टिकल और बेहतर क्लासेज देने का हमेशा काम कार्य करते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा पूंजी है।
0: सबसे बड़ा पूंजी है। आपकी जिज्ञासा शांत हो गई, इसलिए दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हेल्थ से संबंधित कहीं भी अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसका अपना अस्पताल होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लासरूम स्टडी के बाद अगर सामने प्रैक्टिकल आपको मिल जाए ना, तो आप में कंसेप्ट क्लियर बहुत जल्दी हो जाता है और आप उसका लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि फील्ड में जाकर के तो आपको प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें ही आपको जाननी होंगी।
1: लगातार हम दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं गोरौल में। अब जाकर करके कंस्ट्रक्शन लगभग हमारे अनुकूल हुआ है और तब से हमने इसको शुरुआत किया है। तो दोनों तरफ फैकल्टी के कोर्सेज, जैसे बीबीए बीसीए का और उसके बाद पैरामेडिकल और नर्सिंग का, ये शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसका अभी भी हमारे अनुकूल थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जिसको हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे।
0: जी, जी।
1: तो उन बच्चों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, कि हम बहुत जल्द उसको पूरे कर लेंगे और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएंगे। सुनहरा भविष्य पैरामेडिकल के साथ, नर्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पैरामेडिकल को और नर्सिंग का क्षेत्र को ऑप्ट कीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा मांग वाली क्षेत्र है और सबसे सहज और सुलभ आपको मुकाम तक ले जाता है। नौकरी का लिए सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो बच्चों के लिए अभी के क्षेत्र में

0: नर्सिंग का क्षेत्र है।
1: यही सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दें, ये जो संस्थान सुन रहे हैं गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार में आप सुनते थे ना एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, उसी ग्रुप का और सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है श्री राज ग्रुप, जो कि पटना में बुधवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस, श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बातचीत करनी चाहिए, गार्जियंस आपके लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, माता पिता बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो 9162413233 डॉक्टर साहब का एक नंबर ये है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155555 हाँ 8888 यानी 9 1 4 2 5 और 4 2 8। और ये संस्थान है जो है अपना गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोरौल स्टेशन से जैसे ही उतरिएगा पीएससी के तरफ बढ़िएगा तो संस्कार नगर है, अगर आप गोरौल स्टेशन से आ रहे हैं तो दाएं बाएं तरफ आपको ये संस्थान पड़ेगा। डॉक्टर साहब रोजगार से संबंधित बातें कुछ लोगों ने पूछी है, शंका व्यक्त किया है कि क्या यहाँ गोरौल जैसे छोटे जगह से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या बीबीए का कुछ भी, तो क्या रोजगार मिलने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी, यानी कि संस्थान गांव का है तो।
0: हाँ अच्छा देखिए एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है और बच्चों भी आपको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसकी मान्यता होती है और मान्यता सरकार देती है। हमारा जो काम होता है कॉलेज का जो काम होता है सरकार के करिकुलम को पूरा करना, सरकार के कोर्स को जो सिलेबस है उसको पूरा करना, और सरकार का काम होता है परीक्षा लेना और सर्टिफिकेट देना, और बच्चों तुम्हारा काम है पढ़ करके पास करना, पढ़ाई करके पास करना, ये तो आपका काम है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा कि नहीं, अगर हमारा सिलेबस जितना है उसे हम पूरा कराते हैं, अगर तुम क्लास कर लिया हाँ। तो तुमको पास होने से कोई नहीं रोकेगा, एक बात है। दूसरी बात, तुम जो है वो रिकॉग्नाइज संस्थान में एडमिशन लिए हो तो तुम्हारा परीक्षा सरकार लेगी और सरकार सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए भी उसमें सरकार उसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कहाँ का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये लिखा था है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त, और उसके बाद ये लिखा रहता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहता है। तो यह सब लोग को पता है कि बिहार स्वास्थ्य जब खुद सर्टिफिकेट देगी तो इसमें ई फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए निश्चिंत होकर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं,
1: एडमिशन ले सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया राजेश तो हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और उसमें अगर हेल्थ में आपने पढ़ाई कर ली है ना तो स्वरोजगार, सरकारी क्षेत्र में रोजगार या फिर प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, वैसे संस्थान से पढ़ाई की अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जहां क्लासरूम के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी आपको प्रॉपर सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब का नंबर हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9162413233 और 9155558888 और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नाम याद रखिए गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्री राज ट्रस्ट ग्रुप का ये संस्थान है, श्री राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का सिस्टर कंसर्न है जो गोरौल में खोला गया, जिस कैंपस में एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बीसी और बीबीए के लिए है उसी कैंपस में है ये, उसी कैंपस में है ये, और आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। बहरहाल एक सवाल डॉक्टर साहब, कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, पैसे की उस तरीके से बहुत नहीं है, बहुलता नहीं है, क्या जो मिलेगा 4 लाख रुपया उसी में हमारा ये तीनों कोर्स अगर हम कोई भी करना चाहें तो हो जाएगा क्या?
0: देखिए दो कोर्स में है, इसमें बिहार सरकार ने दी है स्टूडेंट क्रेडिट का, उसमें से है जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है। एएनएम को डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत रखा है, तो उसमें बिहार सरकार अनुदान नहीं देती है। हाँ उसमें स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप तीनों में मिलता है, उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं जीएनएम और बीएससी में, लेकिन बाकी एएनएम जो है वो सिर्फ स्कॉलरशिप मिलता है। जीएनएम में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और उसके बाद स्कॉलरशिप दोनों मिलते, बीएससी में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप दोनों मिलते हैं
1: जी।
0: तो इस तरह से

0: यही व्यवस्था सरकार ने बनाई है और तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमको भी चलना होता है।
1: हमको भी चलना होता है, लेकिन हम चल के आ गए गुरौल आपके पास, तो गुरौल में आ गए हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम सारे कोर्सेज को, और पहले से बीबीए और बीसीए है, एसएस प्रोफेशनल में कैंपस एक है, आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब आए और जानकारियां देकर चले गए। जी हाँ, अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब आते हैं, समय निकाल कर और जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तभी संपूर्ण समाज का विकास होगा, और ऐसे में डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी और गुड़ौल में, हाँ, उन्होंने पांच जी हाँ प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है इसी सत्र से, बीसीए, बीबीए और हेल्थ के सेक्टर में बीएससी, एएनएम, जीएनएम, जी हाँ बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है और जीएनएम है। आपके लिए सहूलियत, गुड़ौल के आसपास जितना भी इलाका है, वैशाली का, मुजफ्फरपुर का या इधर छपरा की तरफ का, सारे लोग आ सकते हैं, पटना के लोग भी जा सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा कैंपस, बहुत ही अच्छी फैकल्टी, सारी चीजें हैं, और पढ़ाई वैसी करनी चाहिए ना जो अर्थोपार्जन कर सके। नंबर नोट करें, ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 9155558888, 9155558888। हम तो यही चाहते हैं, हम बोले तो आपका राजेश यही चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। थैंक यू गुड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोजगार कार्यक्रम लेकर आने का मौका जो आपने दिया। चलते हैं, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: अभी हमने के सुनत रहनीजा प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार। देखिए, खेती गृहस्थी में कुछ चर्चा रुआ सबसे कहल जाब कि हमने के देखिए खेती गृहस्थी में मतलब खेती बाड़ी तो करबे करीला, अनाज भइल, साग सब्जी भइल, सब कुछ करबे करीला, लेकिन आज हम बात करब कि अपन जीविका चुनबा खातिर हमने के पशु के पालन भी करीला, मतलब पशु पालन करीला। लेकिन देखिए, खाली पशु पालन करे से ना होखी, पशु के स्वास्थ्य कैसन रहे, स्वस्थ रहे खातिर ओकर खान पान और टीकाकरण अत्यंत जोन बा महत्वपूर्ण बाटे। पशु के संक्रमण से बचाए खातिर जरूरी बा कि हमनी के टीकाकरण जरूर करवाई। देखिए, जानलेवा बीमारी से बचावे खातिर, पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाए खातिर बहुत जरूरी बा कि हमनी के हर मौसम में जोन फैले वाला मौसम जनित, जेकरा के हम कह सकतनी रोग बा, ओकरा से बचाए खातिर मौसम के शुरुआत होखे से हम कहब कि 20-30 दिन पहले ही टीकाकरण करवा लेवे के चाही। जैसे कि हमनी के आम सुने में आवेला कि खुरपा मुहपका, ये जोन रोग बा आम तौर पे देखब कि पशु के हो जाला, तो ये वर्ष में 2 बार यानी महीना में हर 6 महीना के अंतराल में लगवावे के चाहिए एक टीका। साथे साथ देखी एगो औरी रोग बा गलघोटू, यानी कि ये रोग जे बा ये वर्ष में 1 बार, यानी कि देखिए मौसम आ गइल बा, यानी कि बरसात आए से पहले जोन बा एक टीका हमनी के लगावे के चाहिए। साथे साथ देखी एगो औरी बहुत हमनी के सुने में आवेला पशु से संबंधित ही रोग, लंगड़ी बुखार जेकरा के कहल जाला, वर्ष में 1 बार वर्षा ऋतु से पूर्ण यानी पहले लगवावे के चाहिए। और देखी हम तो ये कहब कि भाई ब्रुसोलिसिस एकरा के एक बीमारी ऐसन बा कि जेकरा में 4 से 5 महीना के उम्र में खाली मादा जोन बचिया जोन बाड़ी उनका के मतलब जीवन में एक ही हाली ये टीका रुआ सभे के लगवावे के बाद एकरा के दोहराए के नहीं के बस एक हाली। आदि की बहुत बार ऐसा देखे में आवेला कि माल

मवेशी के मतलब पेट खराब हो जाला, हमनी के भाई जोन भी खियाई ला चारा खिया रहल बनी, ओह चारा के मतलब हमनी के पता ना चले कि भाई कृमि बा या का बा, पेट में काहे ऐसन होता। तो एकरा से बचाव खातिर बा कृमि नाशक दवा जे बा ना टीका लगवाए के चाही, और लगभग 10 दिन पहले पशु के पेट के कीड़ा मारे के दवाई जरूर देवे के चाही। टीका के पूरा असर होखी जब हमनी के देखब जा कि भाई बीमार पशु के टीका अगर लगवावे आ दस्त बुखार होखे, अगर मतलब एमें 2-3 चीज के बड़ा ध्यान रखल जरूरी बा, मतलब ऐसा गलती हमनी से ना हो जाए कि जब पशु राउर जोन बानी बीमार बा या दस्त हो रहल बा, तो ऐसा में कोनो तरह के जोन बा टीका ना लगवाए के चाही। टीका के रख रखाव मतलब ऐसा ना कि टीका के जोन दवाई जोन बा जोन वैक्सीनेशन बा जे पड़े के बा, तो हम कहब कि वो खाती भी जरूरी बा कि ओकर जोन जहाँ पे रखल जा रहा बा वो जगह के निश्चित कर ली, यानी कि एकदम ठंडा जगह में रखे के चाहिए, यानी रुआ फ्रिज में रखी, कोनो गर्म जगह पे ए तरह के टीका के ना रखे के चाहिए। और हम कहब यही कि भाई टीकाकरण के जोन बा जानकारी खाती जोन आस पास के राउर पशु चिकित्सालय बा, अगर नहीं खे ऐसन बुझात, अपना कोनो बात समझ में नहीं खे आवत जहाँ कोनो तरह के द्वंद्व बा, तो रुआ संपर्क करी, और संपर्क करके जोन बा विशेष जानकारी ले सकते नहीं, सलाह लेके आ तब जे बा रुआ सब अपन पशु के देखभाल कर सकते नहीं। तो चलिए भाई गप सब तो होत रहेला, लेकिन अभी हमारा मन करता कि एगो काहे नहीं हमने के गीत सुनल जाओ आज के कलाकार श्याम सुंदर पासवान जी से, बरसाती झूमर मन करता सुने के, तो सुनी सब यहाँ से।

वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर बरसाती झूमर हमने के सुनत रही जा। बरस गए पानी बिना बदरी के, आप बाग भी भींगे बगीचा भी भींगे। का सुंदर बोल है, कोठवा भी भींगे कोठरिया भी भींगे, आप बरस गए पानी बिना बदरी के। बहुत सुंदर बोल, इतना ही सुंदर स्वर भी। तो भाई देखिए, गीत गवनई में वो जादू बा जो न जादू के हमने के सीधा जोन बा कह सकते नहीं कि दिल पे असर होकेला। कहीं भी रही मन कैसनो मतलब होके दुखाइल होके मायूस होके मन नहीं खे लागत, लेकिन गीत गवनई के जादू जोन बा वो कहल जाला कि सर चढ़ के बोलेला कोनो मन मिजाज में होके रहुआ सबे, लेकिन मन के जोन बा गीत गवनई प्रसन्न कर देवेला। तो भाई यही बात पर भाई हम कहे खाती और रुआ सभी के देर कर भाई, एगो औरी हमने के गीत यहाँ से सुनल जा श्याम सुंदर पासवान जी से, सुनी सभी।

बहुत ही सुंदर हमने के गीत बारहमासा सुनत रहिन जा। बहुत ही सुंदर बोल और स्वर भी उतना ही सुंदर। और अब ये सभी गीत खाती श्याम सुंदर पासवान जी के बहुत बहुत धन्यवाद कहतनी। और अब हमार समय जोन बा और आता रुआ सभी से विदा चाहतनी। तो संगीता के दी विदा सभी के हो के प्रणाम।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,88,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीवीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। पटना जिले की बाकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए

0: अधिसूचना कल जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने श्री किशोर के नाम का ऐलान किया है। पार्टी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है उसका सम्मान करते हैं।
1: बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन सुराज के विचार से इस प्रयास से जुड़े थे, तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं।
0: इधर भाजपा ने भी बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद थे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। अगले कार्य दिवस में इस पर सामान्य वाद विवाद होगा और मतदान के बाद मंजूरी दी जाएगी। इधर संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज 80वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोजपा आर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में आयोजित जयंती समारोह में कहा कि रामविलास पासवान समाज के वंचित और दलित वर्गों के हिमायती थे और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान की भावनाओं के अनुरूप पार्टी का विस्तार किया जा रहा है।
3: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया कि हमारी पार्टी के संस्थापक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह को इस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको मनाने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार की सोच से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की सोच रखती है। गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम फैसले राज्य इकाई को लेने हैं।
0: इधर पटना समेत प्रदेश भर में रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR न्यूज _ पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने सुनवाई करते हुए विधायक को इस मामले में दोषी करार देते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित राजू कुमार सिंह के भाई के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी की स्थापना गरीबों, शोषितों और अकलियतों के अधिकारों की लड़ाई के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने पार्टी की एकजुटता पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करने की अपील की है। श्री यादव ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और समर्पण की सराहना की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के दोइया में शांति मनी पेपर मिल के विस्तारीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर मिल परिसर का भ्रमण कर उत्पादन प्रक्रिया और अत्याधुनिक मशीनों का निरीक्षण भी किया। बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया जी और जमुई समेत प्रदेश के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में आधुनिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिपो में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैफेटेरिया, शॉपिंग क्षेत्र, होटल और अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से आज पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के बगहा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
2: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज निधन हो गया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में तीजन बाई के योगदान को देश श्रद्धापूर्वक याद रखेगा। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री चौधरी ने कहा

0: कि उनके निधन से भारतीय लोक कला और संस्कृति को अपूर्णीय क्षति हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंझोलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS गुरुप्रकाश ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक सिग्नल प्रणाली, इंटरलॉकिंग व्यवस्था और रेलवे क्रॉसिंग समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में CRS ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी किया। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही लाइन होटल के पास चार पहिया वाहन ने एक खरे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संचालित खनन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत TB मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी छिड़िंग वाई भूटिया ने कहा कि सरकार जिले को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर होंगे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से आज पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: शिवहर जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने इस मौसम में 26,000 हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। युवा रोजगार और कौशल विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, मानव तस्करी की रोकथाम और अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के पुनर्वास की समीक्षा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मंडल कारा में स्प्रिया योजना 2025 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बंदियों को उनके अधिकारों तथा सुरक्षात्मक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल केवल सजा काटने का स्थान नहीं बल्कि सुधार गृह है और बंदियों को पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को खरीफ फसलों के आधुनिक ढंग से खेती, उन्नत बीजों, वैज्ञानिक तकनीकों तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इधर बारिश और संभावित बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की सभी तैयारियां समय से पूरा करने, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण अपडेट करने और नए पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय बैंककार सलाहकार सह समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न बैंकों एवं ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित बैंक प्रबंधकों को शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने तथा पात्र उद्यमियों को रियायत दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

0: पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से जिला इकाई ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना की सांकेतिक चाबियां, जॉब कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज भी वितरित किए गए। जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। ग्राम विकास सभाओं में पंचायत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा कि जन भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया, जिसे ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सुना। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई जी राम जी योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय में जन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को योजनाओं के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की जानकारी दी गई। जिले में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में तजिया जुलूस निकाले गए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत विधिक सहायता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके संचालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कामगारों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता, आपको लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे फाइनल मैच का आंखों देखा हाल।
3: मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएसपुर सिटी से बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी
3: मैम, जितने भी अभी तक सब लॉर्ड्स में मैच हुए हैं, जैसे चाहे वो T20 हो, चाहे वो पुरुष हो, मतलब

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: अबे गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की, कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: फिर वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ बैठा।
2: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो?
2: साहब
1: क्या है?
2: साहब वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
2: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मेम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे

0: जी देशादे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मेम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है।
1: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, सो मेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रखो।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ। यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटर के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर, बहादुर।
4: आया साहब, आया साहब।
0: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
1: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
5: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
1: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
5: नहीं साहब,
1: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
5: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
1: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
5: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मैं शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
6: सलाम साहब।
1: सलाम।
6: सलाम मैम साहब।
7: सलाम।
6: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
1: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
5: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
3: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
5: होटल में साहब?
3: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
1: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
0: मैं अभी लाता हूँ साहब।
3: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
1: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
5: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
1: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
6: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा,
3: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
5: अच्छा शाम आप...

0: खुद मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे शाब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप शाब से शाब शाब बात कर लो।
2: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है। इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
0: नहीं शाह, नहीं, बहादुर के बारे में तो हम शाह शाह को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसका बाप हमारे गांव का है शाह।
2: तो फिर रुकावट किस बात की है? फौरन शादी कर डालिए। और हाँ, बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं शाह, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
2: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना, ना।
2: इसमें हर्ज ही क्या है? शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
0: अरे क्या बोलता है शाह, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था शाह।
2: वो तो नजर आ ही रहा।
0: क्या मतलब शाह?
2: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
0: कुछ अदला बदला नहीं शाह, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है शाह। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है शाह। हाँ। कोई नुकश नहीं। हाँ, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है शाह, घर का चूल्हा चक्की।
2: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
0: शादी की बात भी हो जाएगा शाह, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए शाह।
2: हाँ हाँ, क्या बात है?
0: तुम्हारी बात का शाह।
2: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
0: नहीं शाह, नहीं, बात ये शाह के, बात ये के
1: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है? अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो शाह को, शाह शाह शाह बात कर दो।
0: चल तू ही बोल दे शाह शाह।
2: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
0: नहीं शाह, नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थू थूक दे शाह। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है शाह।
2: मुझको?
0: जी
2: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: शाह? आप शादी कब करेंगे?
2: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
0: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा शाह।
2: मेरी शादी? क्या मतलब?
0: मतलब ये शाह कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफिक ही हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
2: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
0: ठीक कहती है तू, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह, माफी देना शाह, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
3: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
2: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
0: बात ये मेम साहब की, मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
4: बिल्कुल ठीक।
2: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
4: ये भी ठीक।
2: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
4: कभी नहीं हो सकता।
2: क्या नहीं हो सकता?
4: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
2: ये कोई जबरदस्ती है?
0: चलो लक्ष्मी, सलाम मेम साहब। सलाम साहब।
2: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
0: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
4: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
0: जरूर आएंगे मेम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मेम साहब।
4: सलाम
0: साहब।
4: सलाम
0: मेम साहब।
2: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
3: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
5: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
2: Good idea. मैं बस गया और आया।
3: मेम साहब जी, साहब किधर गया?
5: अंदर कमरे में तैयार होने।
3: अच्छा?
5: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
3: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था।

0: तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
1: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
0: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुलुक से बुलाए इनको।
1: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
0: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था। हाँ, हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
1: क्या बात है, वाह बहादुर वाह। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो।
0: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज़ में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।

0: अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।
1: Yeah.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।
1: हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए समाचार संध्या।
0: भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय

0: ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के

खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup Summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा।

0: पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाज़े और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी कौंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसभों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करना है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीक़ेकार के तहत अपने अज़्म को दोहराया, जिसमें मार्केट के हालात पर इनेसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा कि वो आलमी तेल मार्केट पर करीबी नज़र रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई है। ज़िराअत और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। जनाब चौहान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि रियासतों के पास खातिर खाह फंड मौजूद हों, ताकि उजरतें 15 दिन के अंदर अंदर अदा की जा सके। जनाब चौहान ने यह भी कहा कि इस एक्ट के तहत 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अगले 5 बरस में सरमायाकारी की जाएगी, ताकि विकसित भारत के तस्वुर को तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि वीबीजी रामजी एक्ट ने कामयाबी के साथ महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम की कायापलट कर दी है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटेरियल सी एस

SEAM पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वो इस तरह के मटेरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालिसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उरिया फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोस की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे पहले वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज़ वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के साथ जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वो इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। हुकूमत ने आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। ये बहाली मगरबी एशिया तनाज़े में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी अहकामात लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे, जब आबनाए हुरमुस के रास्ते LNG लाने ले जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वो अमरीका के बैन अलावामी नेवल रिव्यू 2250 और सेल 14th 250 तकरीबात में भारत की नुमाइंदगी करेगा। हडसन दरिया में कल कश्तियों की परेड के दौरान मशहूर जमाना 3 मस्तूल वाली कश्ती ने बड़े फखरी अंदाज में भारतीय तिरंगा लहराया, जो भारत की फरामा समंदरी सरहद की सकाफत और सदियों पुराने समंदरों के सफर की रिवायत का जश्न था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था यात्रा के अगले मरहले के लिए चंपावत जिले के टनकपुर इलाके से रवाना होगा। पहला जत्था 49 यात्रियों पर मुश्तमिल है, जिनमें 1 डॉक्टर, 34 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में मारूफ पांडों की दास्तान बयान करने वाली पद्म विभूषण एजाज याफ्ता डॉक्टर तीजन बाई की आज शाम दुर्ग जिले के उनके आबाई गांव गनियारी में सरकारी तौर पर आखिरी रसूम अदा कर दी गई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक सकाफत को आलमगीर मकबूलियत अदा की। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया के अहलकारों, फनकारों, अदीबों और हजारों सोगवारों ने आर्ट की इस शोरा आफाक शख्सियत को नम आंखों से खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी के उस वक्त बढ़ गई जब पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये वाक़या बुनियादी हुकूक, माशी राहत और सियासी आज़ादी पर जारी एहतजाज मुजाहिरों के दौरान पेश आया। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद के खिलाफ मुजाहिरों के बाद खत्ते में 600 से ज्यादा सिविल हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इंग्लैंड में मुकीम कश्मीरी बाशिंदों ने मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर में अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों के एहतजाज ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बकाया वजीफों की अदायगी, बेहतर सिक्योरिटी और अस्पताल में अच्छी सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मुतनब्बे किया है कि अगर उनके मुतालबात न माने गए तो वो खिदमात मुअत्तल कर देंगे। ईरान के सियासी, मिलिट्री और मजहबी कायदीन ने आज तेहरान में साबिक अजीम रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खामेनेई के की नमाज जनाजा में शिरकत की। सरकारी टेलीविजन की खबरों के मुताबिक अजीम रहनुमा के तीनों बेटों मसूद, मेसम और मुस्तफ़ा ने तेहरान के मुसल्ले आजम में जनाजे की क़यादत की। इस मौके पर सदर मसूद पेजिशकियां, पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और आला कमांडर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उनके मुल्क के तारीखी दौरे के 100 साल पूरे होने के मौके पर 2026 और 27 के दौरान 15 महीने तक जारी रहने वाले प्रोग्राम के जरिए इसकी याद मनाएगा। आकाशवाणी के खबरों के शोबे में खसूसी बातचीत करते हुए इंडोनेशिया के लिए भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि यादगारी तकरीबात का इफ्तिताह कल से शुरू होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में होगा। आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यू जर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए

0: प्री क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 एक गोल से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप फाइनल में अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। पूरे भारत में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपये है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोज़ा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तेफाक किया है। खबरें खत्म हुई।
1: की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी हैं। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। सेवा ब्रंट 52 रन बनाकर खेल रही है, 9वां शतक।
3: कैसी बना ये गाना?
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे,
3: संगीतकार रवि।
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
5: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
6: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के फिल्मफेयर कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

कार्यक्रम आज के फनकार, हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को है। आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वी को वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है। यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की

0: कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।
1: कभी

कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: भरोसा राजेंद्र कृष्ण रवि।
1: यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ।
0: जब जब फूल खिले, आनंद बख्शी, कल्याण जी आनंद जी।
2: रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा।
0: दो बदन, शकील बदायूनी रवि।

हमराही हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाया गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वी को बजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत। लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम ढलती जाए रात।

बस कुछ न पु...

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तेरे नाम फिल्म के इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया है। धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और बोल लिखे हैं समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात। हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम फिल्म संगीत का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं।

और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत का यहीं पे संपन्न होता है। हम विविध भारती के पटना केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं और अब संपन्न होती है आज की हमारी यह सभा। कल प्रातः 5:55 पे फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।